एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये एफएम शिमला है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: अब समाचार आप सुन पाएंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से।
1: समाचार के साथ मैं फरहत नाज।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur.

आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर। दोस्तों, जैसे सूर्य बिना थके पूरे संसार को ऊर्जा देता है, वैसे ही हमें भी निस्वार्थ कर्म करना चाहिए। तो आइए अब हिमांजलि में वंदन करें भगवान सूर्य नारायण को।

कर दिया है बेफिक्र तूने फिक्र अब मैं कैसे करूं, फिक्र तो ये है कि तेरा शुक्र अब मैं कैसे करूं। आप सुन रहे हैं हिमांजलि एफएम शिमला पर, सुनते

वो दिन कभी ना आए जब हद से ज़्यादा किसी को गुरूर हो जाए, बस इतना झुका कर रखना मेरे सदगुरु कि हर दिल दुआ देने को मजबूर हो जाए। इसी के साथ आज फिलहाल हिमांजलि में इतना ही, 6:40 हुए हैं और अब ये वक्त है मानस गान का। आवाज़ लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और साथी की सतीश भाटिया का संगीत है।

पक्षीराज गरुड़ को अपने पूर्व जन्मों का वृत्तांत सुनाते हुए काकभुशुंडी ने बताया कि शायद ही कोई ऐसी योनि होगी जिसमें उन्होंने जन्म नहीं पाया। अपने अनेक जन्मों में उन्होंने योग, जप, तप, दान, पुण्य सभी कुछ किया। कलयुग में उनका जन्म अयोध्या के एक शूद्र कुल में हुआ। उस जन्म में वे मन, वचन और कर्म से भगवान शिव के आराधक थे। शिव भक्त होने का उन्हें मात्र अभिमान ही नहीं था, बल्कि वे अन्य सभी देवताओं की निंदा भी करते। कलयुग में धर्म के विरुद्ध आचरण होता है। डींग मारने वाले पंडित और दंभी व्यक्ति संत कहलाते हैं। स्त्री वश में होकर व्यक्ति मदारी के बंदर की तरह नाचता है। काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये सब लोगों के गुण समझे जाते हैं। शिष्य गुरु के उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता। स्वयं गुरु भी ज्ञान दृष्टि रहित होता है। तनिक से लाभ के लिए लोग गुरु की हत्या तक कर डालते हैं। ये है कलयुग की विशेषता।

0: एफएम शिमला पर अभी आप सुन रहे थे देश गान। आइए करते हैं खुद को अपडेट न्यूज हेडलाइंस के साथ।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं कौशल्या शर्मा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश विश्वविद्यालय के आपदा अनुसंधान केंद्र को बादल फटने की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के निर्देश दिए हैं। शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं लगातार होने से मानव जीवन सहित संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि कोई भी विकास की मुख्यधारा से वंचित न रहे। वे कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में के शुभारंभ पर बोल रहे थे। दिल्ली से शिमला के लिए हवाई सेवाएं आज से दोबारा बहाल होने जा रही हैं। ये सेवाएं मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित की जाएगी। इसके अलावा शिमला से धर्मशाला के लिए भी कल 11 मई से हवाई सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम आज घोषित करेगा। बोर्ड के सचिव डॉ. विशाल शर्मा ने बताया कि परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा और इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह ने कहा है कि प्रदेश में विकास पूरी तरह ठप्प है और कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को आर्थिक रूप से दिवालिया

0: करने का काम किया है। मंडी में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हर मोर्चे पर विफल रही है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज सचिव सी पालरासू ने पंचायत चुनाव के चलते पालमपुर में स्ट्रांग रूम व मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने पंचायत चुनावों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। देश सहित प्रदेश में भी कल राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। ये थी अब तक की एफएम न्यूज हेडलाइंस। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एआईआर एफएम शिमला, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: अब समाचार आप सुन पाएंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिल गवित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्स्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों

और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनी

0: से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम शिमला सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और 7:05 हो गए हैं। तो अब वक्त हो चुका है चिंतन कार्यक्रम का। प्रस्तुति डॉक्टर हुकुम शर्मा की है।
2: सुनीता मृत्यु देवता यमराज की पुत्री थी। माता पिता के लाड़ प्यार में वो उद्दंड हो गई थी। वो पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, इसीलिए खेल खेल में किसी अच्छे कार्य में बाधा डालती, किसी को अकारण मारने लगती। ऐसे में उदंड कार्य करके वो बहुत खुश होती थी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठा था, उसे अकारण कोड़े से मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाता तो वो खुशी से उछल पड़ती, वो उसे खेल समझती। पिता उसकी इस उदंडता को बाल सुलभ खेल समझकर चुप रह जाते। एक दिन फिर उस गंधर्व कुमार को, जब वो पूजा पाठ कर रहा था, सुनीता ने मारना शुरू कर दिया। असहनीय हो गया तो उसने क्रोध से शाप दे दिया, तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा, तेरी एक योग्य संतान भी होगी, पर तेरे इन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें व्याप्त रहेगा। अब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भूल कर दी। संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान ना देकर उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं दिया। समय बीतता गया, कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसके शाप को जानकर कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता था। जब कोई उपाय ना रहा तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने अत्रि कुमार अंग को देखा। सुनीता अंग को देखते ही मोहित हो गई रंभा की माया, और अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंग को भी मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर आसक्त जानकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करा दिया। कुछ दिनों बाद उनके पुत्र हुआ, जिसका नाम वेन रखा गया। वेन अत्रिवंश के अनुरूप ही अपने पिता अंग के समान धार्मिक, सदाचारी और रजोचित गुणों से संपन्न था। आचार विचार और व्यवहार में सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते। अच्छे कुल में उत्पन्न होने के सभी लक्षण उसमें दिखते, पर माँ के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वो शापित हुई थी, धीरे धीरे वेन में वे दुर्गुण भी प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिकों और कुछ दुष्टों की संगति से वो नास्तिक भी हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि उसे झूठ लगने लगे। यज्ञ संध्या आदि वो पाखंड समझने लगा। वो वयस्क हो चुका था, अपने माता पिता का कहना अब वो नहीं मानता था। राजा तो अंग थे, पर आज्ञा वेन की चलती थी। उसके हठ तथा उद्दंडता पर किसी का वश नहीं चलता था, सब विवश थे। वेन के इन कर्मों से प्रजा दुखी रहने लगी। महाराज अंग को अपयश मिलने लगा। जब सब प्रकार से वेन को समझाकर हार गए, तो अपयश से बचने के लिए एक दिन निराश होकर अंग ने चुपके से घर ही त्याग दिया। राजा के बिना अराजकता और बढ़ी। ऋषियों ने अंग पुत्र वेन को राजा बनाया और समझाया, तुम्हारे दुष्कर्मों से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग दिया, अब तुम अपना राजकीय उत्तरदायित्व समझो और सत्कार्य कर प्रजा को सुख दो। पर वेन राजा बनकर तो और प्रमत्त और अहंकारी हो गया। बोला, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं बड़ा ज्ञानी हूं। ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेश से स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा धर्म होगा, शास्त्र वचन होगा। आप लोग अब मेरी आज्ञा के अनुसार चलिए और मुझ में ही ईश्वर, धर्म और शास्त्र की छाया देखिए। ऐसे विचारों वाले वेन के कार्यों से देश में अराजकता बढ़ी। सारे धार्मिक और सत्कार्य बंद हो गए। प्रजा की सुरक्षा नहीं रह गई। दुष्ट लोगों का बोलबाला हो गया। धार्मिक कार्य बंद हो गए। हर चीज का अंत होता है। पाप का घड़ा जब भर गया तो ऋषि मुनियों ने और प्रजाजनों ने विद्रोह कर दिया। वेन को पकड़ लिया और उसे प्रताड़ित कर राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने से वो असहाय हो गया। अब वो

0: दूसरों की दया पर निर्भर रहने लगा। ऋषियों ने प्रजा से परामर्श लेकर उसके पुत्र पृथु को राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। वेन जंगल में चला गया। निश्चय ही अच्छे कुल परिवार का व्यक्ति भी कुसंगति के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुमारगी हो जाता है, अपने कुल धर्म को भूलकर सबके दुख का कारण बनता है और अंत में अपने इसी आचरण के कारण वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंगति और कुसंस्कारों से बचना चाहिए।
1: FM शिमला पर अभी आप सुन रहे थे चिंतन।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 MHz FM शिमला।

FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 MHz पर, और आइए अब आपको अपडेट कर देते हैं आज FM शिमला से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से।

समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन पाएंगे सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 के मध्य, दिन में 12 बजे, 1 बजे से लेकर 1:10 के मध्य, दोपहर 2:15 पर, शाम 7:05 पर, रात 8:45 से 9:15 तक और आखिर में 11 बजे से लेकर 11:10 पर। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा सुबह 9:20 का, 11 बजे, दोपहर 3 बजे, शाम 6 बजे और 7:45 का। FM न्यूज एडलाइंस के साथ आप कर सकते हैं खुद को अपडेट। FM शिमला पर 6:57 पर, 7:57 पर, 8:30 पर और 9:57 पर। गुड मॉर्निंग शिमला, ये प्रोग्राम आपके लिए हम लेकर के आएंगे अब से थोड़ी ही देर बाद, यानी 7:15 पर। और अगर आप शौक रखते हैं ओल्ड हिट्स का तो ज़रूर आप लुत्फ उठा सकते हैं ओल्ड हिट्स का प्रोग्राम में सुबह 10 बजे, झनकार प्रोग्राम में 11:05 पर पुरानी फिल्मों से, में दोपहर 3:10 पर ओल्ड हिट्स में, रात 8 बजे और 10:30 पर एवरग्रीन सॉन्ग्स में। FM शिमला पर हम हर शख्स के लिए कुछ ना कुछ खास लेकर के आते हैं और इसी के चलते रात 10 बजे गजलों से सजा प्रोग्राम आपके लिए हम लेकर के आते हैं हर रोज। हर रोज हर रात आपके लिए कुछ खास हम लाते हैं FM शिमला 103.7 MHz पर, जिसके चलते महिला सम्मेलन आप सुन पाएंगे 12:20 पर और रोज की तरह आज भी, और 3:30 पर सुनिएगा जरूर युववाणी प्रोग्राम।

रात 9:15 पर सुनिएगा एक फिल्म से प्रोग्राम, और आपकी फरमाइश का सिलसिला यहाँ शुरू होता है रात 9:30 पर, और सुबह 9:30 पर वक्त होगा कुदरत के रंग का।

हिमाचली संगीत का लुत्फ आप उठा सकते हैं सुबह 8:32 पर, 11:30 पर, दोपहर 2:30 पर और हिमाचल के विभिन्न बोलियों के

0: इसके अलावा शाम 7:10 पर आपके लिए खास तौर पर हम लेकर आएंगे प्रोग्राम कृषि जगत। फिलहाल ये थी जानकारी उन तमाम प्रोग्राम्स की जो आप सुन सकते हैं FM शिमला 103.7 MHz पर।
1: शिमला की वादियों से आपके दिलों तक आ गया है आपका अपना भरोसेमंद साथी 103.7 MHz पर आकाशवाणी FM शिमला।
2: कहां ये यादियां थी तेरे मिलने से पहले।
1: खबरें, संगीत, संस्कृति और मनोरंजन का बेमिसाल संगम आकाशवाणी FM शिमला। शुभवाणी, लाभवाणी, ये है जन जन की वाणी आकाशवाणी।
0: तो चलिए अब आगाज करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला का 103.7 MHz पर। और आज गुड मॉर्निंग शिमला की शुरुआत करते हैं हम एक पॉजिटिव थॉट के साथ।
3: वो तो
4: क्यूट है ना।
3: अरे पहलवान है
4: पर तुमसे प्यार करती है।
3: हो नहीं सकता।
4: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
3: हो नहीं सकता।
4: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
3: ये हो नहीं सकता।
0: वैसे दोस्तों, अगर आप जिंदगी में इस किसी को भी झुकाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है खुद झुक जाइए। अगर आप खुद झुक सकते हैं तभी आप पूरी दुनिया को अपने आगे झुका सकते हैं। और इसी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल थॉट के साथ चलिए करते हैं आज के प्रोग्राम का आगाज़।

एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिरकार 10 मई जो है वो इतिहास के पन्नों में क्यों खास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ईयर 1503 से, जब इटली के खोजकर्ता और नाविक कोलंबस ने कायमान द्वीप की खोज की थी। 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद मुगल शासक देश की तत्कालीन राजधानी आगरा पहुंचे थे। और 1655 की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिश सेना ने जो है जमैका पर कब्जा किया था। 1796 में नेपोलियन ने लोदी ब्रिज के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराया था। और 1916 में नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में ऐतिहासिक शिपपोर्ट संग्रहालय खोला गया था। ১৯৪৫ में रूसी सेना ने चेक गणराज्य की राजधानी प्राग पर कब्जा किया। और 1959 में आज ही के दिन सोवियत सेना अफगानिस्तान पहुंची थी। 1972 में 10 मई को अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था।

ऑल राइट right, बात तो बिल्कुल सही है। जब हम नए हैं तो अंदाज़ पुराना क्यों हो, और वैसे भी ना खुद पर यकीन रखिए, क्योंकि जो आप जानते हैं ना वो कोई और नहीं जानता। जो अपनी लाइफ में आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ना, आपसे बेहतर वो कोई नहीं जानता है। हालांकि दुनिया के सामने जो है, मुझे ये लगता है कि हर इंसान हमेशा ही दो चेहरे या दो जिंदगियां जीता है, एक वो जो कि दुनिया जानती है, एक वो जो कि वो खुद जानता है कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो ऐसे में जो है, इस कश्मकश में जो है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ को, या मैं कहूँ एंग्जाइटी की तरफ को लेकर के जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, अगर आप फिट एंड फाइन हैं तो ऑटोमेटिकली चाहे जितने मर्जी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ जाएँ, आप हर उस एक चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। सो टुडे आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार कैसे आप टफ सिचुएशंस में भी जो है खुद को बिल्कुल तैयार रख के जो है वो सारी सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं। खैर, ऐसी कुछ खास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप रहिएगा मेरे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपके साथ आपके हमसफ़र भानुप्रिया वर्मा।

एफएम शिमला सुन रहे हैं जी आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और कोई भी आपसे कुछ भी कह ले, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, करें आप वो जो कि आपको सही लगे, जिसमें आपका दिल सहमत हो, आपका दिमाग सहमत हो, आप खुद सहमत हो। बाकी लोग क्या करते हैं, आके आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे चार बातें कह के, लेकिन बाद में अपनी लाइफ में उन बातों को आपको इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है, इट्स अप टू यू, बिकॉज लाइफ इज़ योर्स ओनली। कोई और आपकी ज़िंदगी नहीं जीता है, किसी और को नहीं पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, राइट? तो अभी हम बात कर रहे थे कि आखिरकार जब लाइफ चैलेंजेस में अगर कहीं आप खुद को स्टक फील करें, आपको लगे कि भैया बहुत ज्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी आ रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाए। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि लोग अपने आप को या अपनी चिंताओं को जो है दूसरों से शेयर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में दी बेस्ट क्या है? बेस्ट है कि आप अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को, अपने प्लान्स को आप डायरी में कहीं पर लिख करके रख दें। क्योंकि देखिए, आज के डेट में किसी को ट्रस्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आज जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, हो सकता है कल को वही दोस्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। आप अपने दोस्त को अपने सारे सीक्रेट्स बताएं और कल को वो सारे सीक्रेट्स जो है वो पूरे पब्लिक में जो है वो उसको फैला दें, अगर आपकी उसके साथ कभी भी ट्यूनिंग मिसमैच हो गई तो इसलिए ज़रूरी है कि अपनी सीक्रेट्स को अगर आप चाहते हैं कि वाकई वो सीक्रेट रहे, तो द बेस्ट थिंग इज कि आप उसको किसी से शेयर ही ना करें। और आपको फिर भी लगता है कि भैया कहीं तो किसी को तो बताना है, तो काइंडली अपना जो एक सीक्रेट फ्रेंड है वो अपनी डायरी को बना लें, उस पर लिखें, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस जो है वो बाहर आ रहा है। और सोशल मीडिया, फ़ोन टाइमिंग, स्क्रीन टाइमिंग का जो है इस्तेमाल आप कम कर दें, बजाय इसके खुद को बिज़ी रखने के लिए आप अपने लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए आप टाइम दे सकते हैं। और एंग्जाइटी और स्ट्रेस के मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो कहीं पर भी आप किसी भी एक्सपर्ट से बात करेंगे, कहीं पर भी कोई आप सर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके रेगुलर एक्सरसाइजेस और आपके रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटीज़ को जो है बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा गया है कि तकरीबन 30 से 40 मिनट जो है आपको बॉडी वर्कआउट करना है, जिसमें आप ब्रिस्क वॉकिंग आप कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, और जिससे जो है आप कोई भी इस तरीके की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं। नॉर्मली आप कुछ और नहीं भी कर सकते हैं, आप सिंपल एक वॉक भी

अपने रूटीन में अगर शामिल करते हैं मॉर्निंग और इवनिंग, जो भी आपको सही लगे, तो जो है आप काफ़ी हद तक आपके वो हॉर्मोन्स जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज़ करते हैं उसे कंट्रोल करने में आप हेल्प कर सकते हैं। और वैसे तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठ करके है जॉगिंग पर जाना चाहिए और फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, सो दैट कि आपका जो बॉडी भी फिट रहे, माइंड भी फिट रहे, फ्रेश एयर भी आप इनहेल कर सकें और देखिए प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों का आप लुत्फ़ उठा सकें।

जॉगर्स पार्क से आपने ये सॉन्ग एंजॉय किया उषा उत्तप की आवाज़ में 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम बात कर रहे थे कैसे आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी से जो है अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं। आप जहाँ तक मैंने पहले बात की थी इस सॉन्ग से पहले कि आप फिज़िकल एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, योग मेडिटेशन आप कर सकते हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज को ज़रूर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। सबसे ज़रूरी अपने खान पान और अपने नींद का पूरा ख्याल रखें, कैफीन से आपको बचना है और अगर आप चाहते हैं स्ट्रेस एंग्जाइटी से फाइट पैक करना तो सब उसके लिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए आज की डेट में देखा जाए तो मैक्सिमम लोग जो हैं सोने से पहले अपने स्मार्टफोन्स के साथ बिज़ी होते हैं, स्क्रॉलिंग में बिज़ी होते हैं, सोशल मीडिया पर जो है न्यूज़ स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, जिससे जो है उनका स्क्रीन टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और जो सोने का एग्जैक्ट टाइम है फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा बॉडी क्लॉक भी एक होता है जिसे कि प्रॉपर नींद चाहिए और अगर आप वो नहीं पूरी लेते हैं 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद तो फिर कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे बाकी की परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी, लाइक आपको डाइजेशन की दिक्कत हो जाएगी, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे क्योंकि स्ट्रेस जो है कुछ लोगों में ओबेसिटी को भी जन्म देता है, उन्हें भी बढ़ाता है। तो इसीलिए आप कोशिश करें हेल्दी लाइफस्टाइल रखें और जो चीज़ें हैं सोचने से कुछ नहीं होगा बल्कि कुछ करने से कुछ बनेगा और जो नशा है नशे से भी दूर रहें, अल्कोहल्स वगैरह को आप दूर रखें और जहाँ तक हो सके खुद को बिज़ी रखें ऐसी चीज़ों के साथ जो कि आपको खुशी देता हो। और थोड़ी देर आप धूप में टहल सकते हैं, शाम को बाहर जा सकते हैं। आप जब तक घर से बाहर नहीं जाएंगे आपके नए दोस्त नहीं बनेंगे, आप लोगों से नहीं मिलेंगे, तो बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपने खुद को बिल्कुल तन्हा कर लिया है तो ज़रूरी है खुद को बाहर ले जा कर के लोगों के साथ मिलना जुलना। FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसी तरीके से कुछ खास और भी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आएंगे और आप सुनते रहिए यूं ही गुड मॉर्निंग शिमला।

गुड मॉर्निंग शिमला सुन रहे जी आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और हम गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम में हो और यहाँ के मौसम की बात ना करें तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है। इन दिनों देखा जाए तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा सुहावना मौसम बना हुआ है, और जहाँ तक पर्यटकों की बात है तो उनका तो फेवरेट डेस्टिनेशन है ही शिमला शहर, तो हिल्स क्वीन शिमला में उनका आना जाना लगा हुआ है। बहुत सारी खूबसूरती जो है वो देखने को मिल रही है उन्हें लुभाने के लिए, और वैसे भी देखा जाए ना तो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के नज़ारे देखने के लिए, मैं कहूँ कि प्रकृति के बिल्कुल करीब आने के लिए। खैर अब चलते चलते आपके लिए एक सॉन्ग यहाँ से प्ले कर रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पे, यह प्रोग्राम का लास्ट म्यूजिकल नंबर, सुनते रहिए।

अल्लाह अल्लाह। इसी सॉन्ग के साथ गुड मॉर्निंग शिमला में इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला, और अब वक्त एक बार फिर से प्रोग्राम हाइलाइट्स का है। कुदरत के रंग प्रोग्राम आप सुन सकते हैं सुबह 9:30 पर, और इस प्रोग्राम में आपको हम ले चलेंगे एक खूबसूरत रेडियो जर्नी पर। 10:30 का समय रहेगा साहित्य प्रेमियों के लिए प्रोग्राम साहित्य दर्पण का। म्यूजिक लवर्स के लिए म्यूजिक मस्ती हम लेकर के आएंगे दोपहर 1:10 से लेकर 2 बजे तक।

0: और हिमाचली संगीत के दीवानों के लिए हम लेकर के आएंगे हिमाचल की विविध बोलियों के कार्यक्रम शाम 4:20 से। और आगाज आज हम करेंगे सिरमौरी कार्यक्रम के साथ 4:20 पर। पद्महाश्री कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 4:50 पर। किन्नौरी कार्यक्रम आपके लिए हम लाएंगे 5:20 पर। शाम 6:06 पर वक्त होगा बिलासपुरी कार्यक्रम का, जबकि लाहौली कार्यक्रम 6:35 पर आप सुन पाएंगे। फिलहाल ये थी जानकारी उन कुछ खास प्रोग्राम्स की जो आप सुन सकते हैं FM शिमला 103.7 MHz पर। 7:57 होने को हैं, आइए करते हैं खुद को अपडेट न्यूज हेडलाइंस के साथ।
1: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं कौशल्य शर्मा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश विश्वविद्यालय के आपदा अनुसंधान केंद्र को बादल फटने की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के निर्देश दिए हैं। शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं लगातार होने से मानव जीवन सहित संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है। दिल्ली से शिमला के लिए हवाई सेवाएं आज से दोबारा बहाल होने जा रही हैं। ये सेवाएं मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित की जाएगी। इसके अलावा शिमला से धर्मशाला के लिए भी कल 11 मई से हवाई सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम आज घोषित करेगा। बोर्ड के सचिव डॉ. विशाल शर्मा ने बताया कि परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा और इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते इस माह आयोजित होने वाली राजस्व लोक अदालतें स्थगित कर दी गई हैं। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जमीनों से संबंधित मामलों के निपटारों की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जनजातीय क्षेत्रों में आरक्षित सीट पर ST प्रमाण पत्र धारक भी चुनाव लड़ सकेंगे। ये व्यवस्था विशेष रूप से किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा जिला के पांगी और भरमौर के जनजातीय क्षेत्रों में लागू होगी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर परिसर की BTech, BPharmacy, MBA सहित अन्य विषयों की प्रवेश परीक्षा आज प्रदेश भर में 16 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। प्रदेश पर्यटन विभाग, वन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में किन्नौर जिला की प्राकृतिक विरासत, दुर्लभ पक्षी प्रजातियों के

0: और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। ये थी अब तक की एफएम न्यूज हेडलाइंस। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: अब समाचार आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
2: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
2: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा।

0: हूँ आकाशवाणी समाचार अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
2: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
3: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेक एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
7: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप

0: से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
2: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स

0: Boxers advanced to finals of Asian Boxing Under 15 and Under 17 Championships in Tashkent. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: FM शिमला सुन रहे हैं 103.7 MHz पर. आइए करते हैं खुद को अपडेट न्यूज हेडलाइंस के साथ.
2: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं कौशल्या शर्मा. राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि कोई भी विकास की मुख्य धारा से वंचित न रहे. वे कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन के शुभारंभ पर बोल रहे थे. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश विश्वविद्यालय के आपदा अनुसंधान केंद्र को बादल फटने की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के निर्देश दिए हैं. शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं लगातार होने से मानव जीवन सहित संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है. प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम आज घोषित करेगा. बोर्ड के सचिव ने बताया कि परीक्षा परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा और इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा. प्रदेश में स्थानीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया के चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि 31 मई तक केवल अत्यंत अपरिहार्य और चुनाव कार्य से सीधे जुड़े मामलों को छोड़कर किसी भी प्रकार की तबादला फाइल स्वीकृति के लिए न भेजी जाए. वहीं निर्वाचन आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के से संबंधित 145 स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने का आग्रह किया है. प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जनजातीय क्षेत्रों में आरक्षित सीट पर ST प्रमाण पत्र धारक भी चुनाव लड़ सकेंगे. ये व्यवस्था विशेष रूप से किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा जिला के पांगी व भरमौर के जनजातीय क्षेत्रों में लागू होगी. ग्रामीण विकास और पंचायती राज सचिव C.पाल रासू ने पंचायत चुनाव के चलते पालमपुर में स्ट्रांग रूम व मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया. उन्होंने पंचायत चुनावों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए. और अब मौसम. प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट लेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. इसके प्रभाव से प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 11 से 13 मई तक ओलावृष्टि, बारिश तथा तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. ये थी अब तक की FM न्यूज हेडलाइंस. नमस्कार.
1: FM शिमला सुन रहे हैं 103.7 MHz पर. 8:32 हुए हैं और ये वक्त है लोक संगीत का कार्यक्रम आपके लिए लेकर आने का. तो चलिए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं राजेश ठाकुर और सतपाल शांडल की आवाज़ में गाए इस लोकगीत के साथ.

रंजीत कुमार की आवाज़ में गाए इस नाटक के साथ अभी फिलहाल लोक संगीत में इतना ही सुन रहे हैं आप एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:45 हुए हैं और ये वक्त है फिल्म म्यूज़िक का।

FM शिमला सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है फिल्म म्यूजिक का और मैं हूं आपके साथ आपकी हम सफर भानुप्रिया वर्मा।

एफएम शिमला सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर फिल्म म्यूजिक आपके लिए, हम यहाँ से एकदम लाइव प्ले कर रहे हैं। एंड आई होप कि आपका जो आज संडे मॉर्निंग है वो ऑटोमेटिकली एकदम कूल है। जरूरी काम जो आपको निपटाने हैं और कुछ जरूरी वक्त जो आपको अपने अपनों के साथ बिताना है और साथ साथ में रहना है एफएम शिमला के साथ।

और इसी के साथ अब आपको ये अपडेट करने का वक्त आ गया है कि आप आकाशवाणी शिमला के मुख्य चैनल से कौन से प्रोग्राम किस टाइम सुन सकते हैं। नौ बजकर 30 मिनट पर वक्त होगा शास्त्रीय संगीत वाले कार्यक्रम सुरवेला का, जबकि 10 बजकर 30 मिनट पर वक्त होगा साहित्य दर्पण का। उससे पहले 10 बजे आप सुन पाएंगे प्रोग्राम रिमझिम। ग्यारह बजकर 5 मिनट पर वक्त होगा समूहगान शिक्षा पाठ का। 11:30 पर बाल सभा कार्यक्रम जरूर सुनिएगा। महिला सम्मेलन आप सुन पाएंगे 12:20 पर, और आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सैनिकों के लिए हम लेकर आएंगे 1:10 से लेकर 2 बजे तक। 2 बजे वक्त होगा सुनहरी किरणें प्रोग्राम का, जिसमें नींबू प्रजातीय फल और पौधों के रोग के बारे में आज आप सुन पाएंगे अधिक जानकारी।

शाम 4:20 से आप सुन पाएंगे हिमाचल के विभिन्न बोलियों के कार्यक्रम। और इस तहत 4:20 पर सबसे पहले आप सुन पाएंगे सिरमौरी कार्यक्रम। आसवी कार्यक्रम का समय रहेगा 4:50 का, जबकि 5:20 पर आपके लिए हम लाएंगे किन्नौरी कार्यक्रम। बिलासपुरी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आज 6:06 पर। लाहौली कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:35 का। इसके अलावा धारा रे गीत आप सुन पाएंगे रात 8:00 और इस प्रोग्राम में हिमाचल के लोक गीत आपके लिए हम लेकर के आते हैं। फिल्म संगीत 8:15 पर और सुगम संगीत का समय रहेगा रात 8:30 का। रात 9:15 पर वक्त होगा गुलदस्ता कार्यक्रम का, जिसमें आप सुन पाएंगे गजलें। 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। रात 10:00 रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो इन तमाम कार्यक्रमों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी शिमला के मुख्य चैनल पर।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। मस्ती म्यूजिक इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुना जा सकता है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज सुबह 11 बजे घोषित करेगा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम। दिल्ली से शिमला के लिए आज से हवाई सेवाएं बहाल, मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन की जाएंगी संचालित। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्पीति में लिख रहा विकास की नई इबारत। बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर शिमला में राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। और मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते कल से 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से।

0: है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज सुबह 11 बजे घोषित करेगा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम। दिल्ली से शिमला के लिए आज से हवाई सेवाएं बहाल, मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन की जाएंगी संचालित। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्पीति में लिख रहा विकास की नई इबारत। बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर शिमला में राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। और मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते कल से 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम आज घोषित करेगा। बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा और इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा। इस बार मार्च माह में 93,564 विद्यार्थियों ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। विद्यार्थी रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 10वीं की परीक्षाएं 3 से 29 मार्च तक आयोजित की गई थी। परीक्षा का आयोजन 384 केंद्रों पर हुआ था। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। दिल्ली से शिमला के लिए हवाई सेवाएं आज से दोबारा बहाल हो रही हैं। ये सेवाएं मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित की जाएंगी। इसके अलावा शिमला से धर्मशाला के लिए भी कल 11 मई से हवाई सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। इस रूट पर मंगलवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन हवाई सेवाएं होंगी। इन सेवाओं के शुरू होने से राज्य में हवाई सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि इससे राज्य में पर्यटन व व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अब लाहौल स्पीति के गांवों में विश्वास, आत्मनिर्भरता और समृद्धि की नई कहानी लिखता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चीन सीमा से सटे गांव तेजी से बदल रहे हैं। स्पीति घाटी के ग्यू, लालुंग और माने जैसे गांव अब मॉडल विलेज के रूप में उभर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ विकास नहीं बल्कि सीमावर्ती गांवों में नई उम्मीद देना है, ताकि समय पर बसे लोग खुद को देश की मुख्य धारा से और अधिक जुड़ा महसूस कर सकें। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
1: स्पीति घाटी के ग्यू, लालुंग और माने जैसे गाँव अब मॉडल विलेज के रूप में उभर रहे हैं। यहाँ सड़क, पानी, बिजली, इंटरनेट और रोजगार जैसी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। सीमा सड़क संगठन और लोक निर्माण विभाग दुर्गम गांवों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ रहे हैं। वहीं 5G टावर लगने से अब दूर दराज इलाकों में भी डिजिटल क्रांति पहुंच रही है। पर्यटन विभाग स्थानीय युवाओं को होमस्टे और टूरिस्ट गाइड का प्रशिक्षण दे रहा है। कालाजीरा, केसर और सेवक थॉन जैसे स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान दिलाने के लिए आधुनिक मशीनें और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ विकास नहीं बल्कि सीमावर्ती गाँव में नई उम्मीद जगाना है, ताकि सीमा पर बसे लोग खुद को देश की मुख्य धारा से और अधिक जुड़ा महसूस करें। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: समग्र बौद्धिक विकास पर आज नई दिल्ली में परामर्शदाता सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से यह आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। ये परियोजना इस वर्ष जुलाई से 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लागू की जाएगी। इसके तहत कल्याण मॉड्यूल, सहकर्मी सहायता गतिविधियाँ और अभिभावक सहभागिता कार्यशालाएं शामिल हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज शिमला में कल बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता व सूचना प्रौद्योगिकी के युग में बौद्धिक संपदा अधिकार विषय अत्यंत

0: महत्वपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों व युवा अधिवक्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसे अधिवक्ताओं की आवश्यकता होगी जो इन संवेदनशील व जटिल मुद्दों को प्रभावी रूप से समझ सके। इस संगोष्ठी में देश के विभिन्न राज्यों से आए 400 से अधिक शोधार्थियों, प्राध्यापकों, शिक्षकों व विद्यार्थियों ने भाग लिया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। किन्नौर जिला की प्राकृतिक विरासत, दुर्लभ पक्षी प्रजातियों के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आज समापन होगा। ये आयोजन 8 मई से हिमाचल पर्यटन विभाग, ओम किन्नौर स्थानीय शाखा, वन विभाग और जिला प्रशासन किन्नौर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
1: प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर गौली क्षेत्र में आयोजित इस फेस्टिवल में स्थानीय लोगों, पर्यावरण प्रेमियों, पक्षी विशेषज्ञों, फोटोग्राफरों, कलाकारों और पर्यटकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। फेस्टिवल के पहले दिन संगीत प्रस्तुतियां, पर्यावरण एवं पक्षी संरक्षण कार्यशालाएं, कविता पाठ, फोटो प्रदर्शनी, फन गेम्स, फूड स्टॉल, स्मृति चिन्ह स्टॉल और स्थानीय व्यंजनों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही पारंपरिक उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया, जिससे क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा मिला। आज फेस्टिवल के अंतिम दिन पक्षी अवलोकन, प्रकृति भ्रमण, विशेषज्ञ संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
0: प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम आमतौर पर साफ है, हालांकि प्रदेश में मई के दूसरे सप्ताह में भी ठंड बरकरार है और लोगों को सुबह व शाम गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार कल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का अनुमान है। विभाग के अनुसार मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 11 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए येलो, जबकि 12 और 13 मई को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए ऑरेंज व अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक कम होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से लिखता है, रिकॉर्ड गुम होने पर भू स्वामी का हक खत्म नहीं हो जाता। अदालत ने कहा, प्रशासनिक चूक की सजा नागरिकों को नहीं दे सकते। लैंड बहाली मामले में पुनर्विचार का आदेश। पंजाब केसरी की सुर्खी है, हिमाचल में बादल फटने की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के निर्देश। दैनिक जागरण की एक खबर है, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश, 31 मई तक तबादलों की फाइल ना भेजें, शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया भी टालने का आग्रह। मौसम पर दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, राज्य में कल से फिर झमाझम 12 व 13 को भारी बारिश के आसार, ओलावृष्टि तूफान का अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज सुबह 11 बजे घोषित करेगा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम। दिल्ली से शिमला के लिए आज से हवाई सेवाएं बहाल, मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन की जाएंगी संचालित। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्पीति में लिख रहा विकास की नई इबारत। बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर शिमला में राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन और मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते कल से 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:30 हुए हैं और ये वक्त है आपके अपने जाने पहचाने प्रोग्राम कुदरत के रंग का। तो चलिए हमारे साथ एक अनोखी रेडियो जर्नी पर 103.7 मेगाहर्ट्ज़ से।

होते हैं एक अनोखी रेडियो जर्नी पर। जी हाँ सिर्फ रेडियो के माध्यम से हम आपको लेकर के जाते हैं एक ट्रैवल डेस्टिनेशन पर, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर, जहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ जाकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कि अगर आप मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं बेहतरीन, आप अपने जीवन को खूबसूरत यादों से, रंगों से सजोना चाहते हैं, तो ऐसे में मैक्सिमम लोगों का यही प्लान होता है कि अपने फैमिली के साथ एक ट्रिप पर निकल जाए। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ प्लान कर रहे हैं और शिमला शहर से बाहर से खास तौर पर दोस्त हमें सुन रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम उनका अपना फेवरेट प्रोग्राम रहता है। तो जी आज का ट्रैवल डेस्टिनेशन जो है हमारा वो है खूबसूरत डलहौजी। डलहौजी देखकर क्या मन में विचार आते हैं वो सब आप इस सॉन्ग के साथ ही सुन लीजिए। आई मीन टू से कि जब भी आप डलहौजी जाएंगे ना, तो ऐसा ही कुछ गुनगुनाते हुए वापस आएंगे।

जी हाँ, ये तो मर्जी आपकी है कि आप डलहौजी आए या ना आए। ये हमारा काम है आपको ये बताना कि यहाँ पे कितने खूबसूरत नज़ारे हैं जिनके करीब आप पहुँच सकते हैं अगर आप वाकई नेचर लवर हैं, या फिर मैं कहूँ कि अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग से यादें संजोना चाहते हैं, कुछ ख़ास मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं और वाकई ये चाहते हैं कि किसी वक्त में पहुँच कर, किसी उम्र के किसी पड़ाव पर पहुंच कर, जब भी आप अपने पुराने दिनों को यादें ताज़ा करें तो आपके पास कुछ खूबसूरत यादें हों। वल डलहौजी की जहाँ तक बात है तो पांच पहाड़ियों पर ये बसा है। डलहौजी एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और जहाँ तक वेजिटेशन की बात है तो चीड़ देवदार के घने जंगल इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। वहाँ पर जो है, मैं कह सकती हूँ आपको एक ब्रिटिश राज की छाप दिखने को मिल सकती है। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ के बिल्डिंग्स या वहाँ के जो खूबसूरत चर्च है उन्हें देखकर आपको वो ब्रिटिश एरा ज़रूर याद आएगा।

जी हाँ, आप भी जब ये गाना गाएं तो वहाँ पर आपके पास उस गाने के साथ साथ कुछ खूबसूरत यादें होनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। और इसी के लिए हम ये प्रोग्राम अक्सर आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि ये प्रोग्राम सुनकर आपको जानकारी मिले हिमाचल प्रदेश में मौजूद कुछ खास टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में। बात कर रहे हैं हम डलहौजी की, और जहाँ तक देखा जाए तो अप्रैल से जून या नवंबर तक का जो टाइम होता है यहाँ पर घूमने के लिए, एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। यहाँ पर उन लोगों के लिए खास तौर पर परफेक्ट रिट्रीट है जहाँ जो कि नेचर लवर्स हैं और जो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में यकीन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, रॉक गार्डन यहाँ पर डलहौजी में मौजूद है, जहाँ पर जा करके आप गार्डन का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं, कुछ मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं, और इतने खूबसूरत यहाँ पर आपको आर्ट देखने को मिलेगा कि आपको लगेगा कि रिसाइकल किए हुए यहाँ पर जो है चीज़ों से खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं जो कि यहाँ जाते ही बनती हैं। खजियार की मैं बात करूँगी, जिसे कि मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। मार्च से अक्टूबर तक का बेस्ट पिकनिक स्पॉट ये है, और आप अगर सिर्फ एक सिंगल फैमिली ना आकर दो तीन फैमिलीज मिलकर के आती हैं तो एक पिकनिक भी हो जाएगी, आउटिंग भी हो जाएगी और आपकी मेमोरीज भी क्रिएट हो ही जाएंगी। यहाँ पर बहुत सारी मार्केट्स हैं जहाँ पर जा कर के आप बेहतरीन चीज़ें शॉपिंग कर सकते हैं। और क्या क्या है यहाँ पर बकरोटा हिल्स के अलावा आपको बताएंगे हम अब से थोड़ी ही देर बाद, लेकिन जहाँ तक बकरोटा हिल्स की बात है तो ये ट्रैकिंग ट्रेल्स के अंडर ये आता है कि अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो शायद आपको यहाँ का रुख करना चाहिए। मार्च से जून, सितंबर से दिसंबर यहाँ का एक आइडल टाइमिंग है जब लोग यहाँ पर आना प्रेफर करते हैं।

FM शिमला सुन रहे हैं 103.7 MHz पर, और हम बात कर रहे थे डलहौजी की, एक खूबसूरत जगह जहाँ पर आप खजियार जा सकते हैं, पंचबुला झरना देख सकते हैं जा करके, मॉल रोड है यहाँ पर, जहाँ पर जा करके आप खूबसूरत जो चीज़ें हैं उनको जाकर शॉप कर सकते हैं। और जहाँ तक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात है तो काला टॉप जो है वहाँ पर आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिल जाएगी। डेनकुंड पीक पर जा सकते हैं आप, चमेरा झील देख सकते हैं, और सतधरा झरना जो कि चंबा घाटी में मौजूद है, बर्फ से ढके पहाड़ों और ताज़े देवदार के पेड़ों के शानदार नज़ारों के लिए ये जगह जानी जाती है। जहाँ तक स्टेइंग की बात है तो आप इजीली वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, यानी कि रहने की कोई मशक्क़त आपको वहाँ नहीं करनी पड़ेगी। इजीली आप जा कर के वहाँ पर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस या होटल्स को बुक कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको वहाँ जा कर के मिलने वाली है मानसिक शांति, जिसके लिए दुनिया हर जगह पर जगह जगह जा करके सिर्फ और सिर्फ मानसिक शांति ढूंढने की कोशिश करती है।

0: तो इसी के साथ प्रोग्राम कुदरत के रंग में इतना ही। आइए करते हैं खुद को अपडेट न्यूज हेडलाइंस के साथ।
1: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं कौशल्या शर्मा। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालय, विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। प्रदेश उच्च न्यायालय ने भूमि सुधार और काश्तकारी से जुड़े एक मामले में स्पष्ट किया है कि यदि सरकारी रिकॉर्ड गुम हो जाता है तो इसके आधार पर भूस्वामी के अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने लैंड बहाली मामले में पुनर्विचार का आदेश दिया है। प्रदेश में स्थानीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया के चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि 31 मई तक केवल अत्यंत अपरिहार्य और चुनाव कार्य से सीधे जुड़े मामलों को छोड़कर किसी भी प्रकार की तबादला फाइल स्वीकृति के लिए न भेजी जाए। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से संबद्ध 145 स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने का आग्रह किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में जूनियर क्लर्क के 91 पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। अभ्यर्थी 29 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम आज घोषित करेगा। बोर्ड के सचिव ने बताया कि परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा और इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। किन्नौर जिला की प्राकृतिक विरासत, दुर्लभ पक्षी प्रजातियों के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आज समापन होगा। यह आयोजन 8 मई से हिमाचल पर्यटन विभाग ओम किन्नौर स्थानीय शाखा, वन विभाग और जिला प्रशासन किन्नौर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। और अब मौसम। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ है। प्रदेश में मई के दूसरे सप्ताह में भी ठंड बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार कल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का अनुमान है। ये थी अब तक की FM न्यूज हेडलाइंस। कल सुबह 6:57 पर हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।

और अब कार्यक्रम संबंधी आवश्यक सूचना सुनिए। 10:30 पर साहित्य दर्पण कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। 10:30 से लेकर 11 बजे तक कहानीकार राजेंद्र राजन और कहानी है हरी साड़ी। सूचना समाप्त हुई। FM शिमला सुन रहा 103.7 MHz पर 10 बज चुके हैं और ये वक्त है नए पुराने गीतों की खूबसूरत झनकार का।

आप सुन रहे हैं झनकार नए पुराने गीतों की। मैं आपके साथ भानुप्रिया वर्मा और मेरे साथ ये एंटरटेनिंग म्यूजिकल नंबर्स।

0: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
1: शशि वो मैनहट्टन है।
0: मैनहट्टन
2: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी।
1: टैन मतलब वो धूप की छाप।

इसी के साथ नए पुराने गीतों की झनकार में आज फिलहाल इतना ही। 10:30 हुए हैं तो अब ये वक्त है साहित्य प्रेमियों के जाने पहचाने कार्यक्रम साहित्य दर्पण का।

नमस्कार। साहित्य दर्पण कार्यक्रम के आज के संक में आप सभी का स्वागत है। आज के संक में आज आप सुनेंगे राजेंद्र राजन से कहानी हरी साड़ी। इसके बाद आप सुनेंगे सविता ठाकुर से उनकी रचनाएं। तो आइए सुनते हैं राजेंद्र राजन से उनकी कहानी हरी साड़ी।

वो जब भी कोलकाता की गलियों में साड़ियां बेचने निकलता, ये गीत सहसा ही उसके जबान पर तरन्नुम में मीठी सी तान छेड़ देता। वो अपनी ही धुन में कलकत्ता के मोहल्लों की संकरी गलियों में मीलों लंबा सफ़र तय करता रहता। यकायक उसे ख्याल आता कि वो तो साड़ियां बेचने निकला है, इस गीत ने तो उसे मानो दीवाना सा बना छोड़ा है, अपना पेशा ही भूल जाता है। साड़ी ले लो, साड़ी ले लो, बनारसी साड़ी ले लो, सूती साड़ी ले लो, शिफॉन की साड़ी ले लो, रंग बिरंगे डिज़ाइनों की साड़ियाँ ले लो, आया रे आया साड़ी वाला, आया आया साड़ी वाला।

कभी-कभी तो ये फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि वो लोगों का गीतों से मनोरंजन करने निकला है या साड़ियां बेचने। अक्सर लोग उसे रोककर बिन मांगे मशवरा देने लगते, वो साड़ी वाले बाबू, तू ये साड़ी बेचने का काम छोड़कर महफिल क्यों नहीं सजा लेता? तेरा गला तो खूब सुरीला है रे, सरस्वती का वास है तेरे कंठ में। बस ये आखिरी वाक्य आया रे, साड़ी वाला आया, मोहल्ले की औरतों के कानों में गूंजा नहीं कि रोजमर्रा के कामों में मुबतला औरतें, लड़कियां, यहां तक कि अधेड़ बूढ़ी औरतें भी साड़ी वाले को रोक लेती। अरे भैया रुको तो सही, बस फिर क्या, 20-22 साल का वो गबरू जवान किसी नुक्कड़ या चौबारे पर साड़ियों की बड़ी सी गठरी उतार कर बैठ जाता, उसके इर्द गिर्द औरतों का झुंड जुट जाता। बहन जी वही खोलना जो पसंद हो, साड़ी की तहें बार बार लगाना मुश्किल होता है, फिर सलवटें पड़ जाएं तो कोई औरत उसे देखना भी पसंद नहीं करती, खरीदना तो दूर की बात है। तू पंजाबी है रे क्या, बांग्ला नहीं जानता? एक अधेड़ औरत ने उसे टोका। तो क्या हुआ, पंजाबी कौम भी तो हिंदुस्तान में ही रहती है, पेट तो पालना है ना, फेरी लगाकर 4 पैसे कमा लेता हूँ, मेरा नाम तबस्सुम है, वो ईद आने वाली है ना, त्यौहार के लिए एक साड़ी खरीदनी है, तो ले ले ना, बता कौन सी पसंद है, वो लाल किनारी वाली, कितने में देगा रे तू? 10 रुपये। अरे 5 की साड़ी 10 में बेचता है तू? मेरे पास तो 5 ही हैं, 15 की है 10 में दे रहा हूँ, बनारसी सिल्क है, 5 तो इसकी खरीद भी नहीं है बहन। औरतों से माथा पच्ची, बहसबाजी, तुनक मिजाजी में ही वक्त जाया हो जाता है, दिन भर में बमुश्किल 2-3 साड़ियां बिक पाती हैं। बाबुल मोरा, एक लड़की ने उसे रोका, ए बाबू दिखा ना साड़ी मुझे भी। बदरंग कपड़ों में वह कमसिन सी आंखों से बताती लड़की उसके आगे आकर खड़ी हो गई। तू रोज रोज बीच रास्ते में आकर क्यों मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है? बाबू साड़ी लेनी है ना मुझे? अरे 6 बार मेरा रास्ता रुक चुकी है, साड़ी वाड़ी लेनी होती तो अब तक। तू रख तो सही नीचे अपना बोझा, कुंदन ने साड़ियों का भारी भरकम गठर थड़े पर सजा दिया। वो बीच में हरे वाली है ना, लाल किनारी वाली, लड़की ने हसरत भरी निगाहों से मनपसंद साड़ी की ओर उंगली से इशारा किया। पैसे हैं खीसे में? बाबू साड़ी निकाल तो सही। कुंदन ने गठर की गांठ खोलकर एहतियात से हरी साड़ी निकालकर उस लड़की के हाथों में थमा दी। वो नजमा थी। साड़ी की 2-3 तहें खोलकर उसने उसे अपने बाएं कंधे पर पल्लू की तरह गिरा लिया। दूसरा सिरा उसके पैरों को छूकर थड़े के पत्थर को स्पर्श कर रहा था। साड़ी देह से क्या सटाकर देखी, उसकी तो काया ही खिल उठी। यही पसंद है मुझे, कितने की है? 10 रुपये। बाबू इस साड़ी पर मेरा दिल आ गया है, तो ले लेना। सोच क्या रही है नजमा रानी? ले तो लूं पर मेरे पास 10 रुपये नहीं है, तो आज फिर तूने मेरा वक्त बर्बाद किया। बाबू क्यों नाराज होते हो, कुछ दिन की तो बात है, भाई बॉम्बे गया है पैसा कमाने, 1 महीने में आ जाएगा तब ले लूंगी, बस इसे किसी और को मत बेचना, संभाल कर रखना मेरे को। पता चला नजमा अनाथ है, बस एक भाई है, वो भी रोजी रोटी की तलाश में दूर देश बंबई गया हुआ है, झोंपड़ी में अकेली रहती है, आस पड़ोस के घरों में साफ सफाई मेहनत मजदूरी कर पेट पाल रही है किसी तरह, उस पर बीमार। तूने हरी साड़ी की रट लगा रखी है, 1 महीने से मैं परेशान हूं, इसे और भी कई लड़कियां पसंद कर चुकी हैं, लेकिन मैंने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि यह बिक चुकी है, गलती से गठर में आ गई, कई औरतें तो इसके 20-25 तक देने को तैयार हैं, तेरी भावनाओं की कदर करते हो, मैंने इसको मना कर दिया, सबको मना कर दिया। बाबू बस 1 हफ्ते की तो बात है, दादा आने वाला है ना, खूब पैसे कमाकर आ रहा है, तू 10 की बजाय 20 ले लेना, पर मेरी ये हरी साड़ी का दिल अटका हुआ है, एक बार मैं इसे पहनकर दादा के साथ बाजार जाऊंगी, वो ईद आ रही है ना, त्योहार का सामान भी तो खरीदना है। अरे ठीक है, अगले जुम्मे तक तूने नहीं खरीदा तो मैं किसी और को इसे बेच दूंगा। बाबू यकीन कर, दादा पक्का आने वाला है, यह कहते हुए नजमा का चेहरा लाल होने लगा, उसके माथे पर पसीने की बूंदें तिर आईं। अरे नजमा बेटी, तेरे माथे पर पसीना? कुछ नहीं बाबू, वो कभी कभी दिल में सुई सी चुभती है तो माथे पर पसीने की बूंद जम जाती हैं। अरे डॉक्टर को दिखा ना, दिल के मरीजों को आता है पसीना, तू तो 16-17 की है, अभी कहीं हार्ट अटैक वगैरह? कोई बात नहीं बाबू, दवा दारू के पैसे कहाँ हैं मेरे पास, तुम चलो अब। कुंदन चिंता में डूब गया, उसे नजमा को किसी अच्छे अनुभवी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अगर वो उसकी बहन होती तो। उसे नजमा की कहानी अपनी ही कहानी प्रतीत हुई, क्या सोचकर उसने जालंधर में अपना घर बार छोड़ा था, सैकड़ों मील दूर कलकत्ता में रेमिंगटन टाइपराइटर कंपनी में

सेल्समैन की नौकरी के वास्ते अपने दो छोटे बच्चों बीवी की परवरिश की खातिर हर महीने 20 रुपये का मनी ऑर्डर भेजता है। बतौर सेल्समैन उसकी तनख्वाह महज 10 रुपये है। छुट्टी के दिन या शाम के वक्त फेरी लगाकर वो साड़ियाँ बेचता है। कुल 40 या 50 रुपये कमा लेता है महीने भर में। अगर वो भावुक होकर नजमा को किसी डॉक्टर के पास ले भी जाए तो डॉक्टर 10 रुपये इससे कम नहीं मांगेगा। कलकत्ते के सरकारी अस्पतालों तो मुर्दा घरों में तब्दील हो चुके हैं। घंटों लंबी कतार में लगे रहने के बाद भी कोई डॉक्टर पूछता तक नहीं है। कुंदन नजमा के लिए फिक्रमंद तो जरूर था, लेकिन लाचारी बेबसी के जाल ने उसे बुरी तरह जकड़ रखा था। कभी कभी कुंदन को लगता कंपनी में सेल्समैनी साड़ियों का धंधा छोड़ छाड़ कर अपने शहर लौट जाए पंजाब, वहीं कोई मेहनत मजदूरी कर बच्चों का पेट पाल लेगा। उसकी सूरत हाल ने उसकी ज़िंदगी को नरक बनाकर छोड़ा है। कभी कभी उसे लगता नजमा और उसकी ज़िंदगी में भला क्या फ़र्क है। फिर नजमा जैसी कितनी ही बेशुमार लड़कियों का बचपन और जवानी 2 जून रोटी की आस में मजदूरी में ही बर्बाद हो जाती है। बार बार नजमा का सुंदर सलोना मासूम चेहरा कुंदन का पीछा करने लगता है। बाबू तुम बार बार ये गीत क्यों गुनगुनाते हो? बाबुल मोरा नहीं और छूटो जाए, ये गीत तो लड़कियाँ गाती हैं पीहर का घर छोड़ते वक्त। नजमा लखनऊ के एक नवाब थे, वाजिद अली शाह। गोरों ने उन्हें देश निकाला दे दिया, वो अवध के बादशाह थे। यूं कहने को तो नवाब थे। यह बात 1856 की है। गोरों ने उनका राजपाट छीन लिया, कलकत्ता भेज दिया पेंशन पर। शायर थे, उन्हें लगा कि जैसे वो अपना मायका छोड़कर ससुराल जा रहे हैं। खुद ही ये गीत लिखा जो 70 साल से घर घर में गाया जा रहा है। बस नवाब साहब को बरतानी हुकूमत का ये फरमान नागवार गुजरा। वो नवाब बेहद निराश, उदास, गमगीन होकर जब लखनऊ छोड़ने लगे तो खुद का ही रचा हुआ गीत गाने लगे अपनी पीड़ा को कम करने के वास्ते, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए। मगर वो नवाब का नैहर थोड़े ही था, वो तो उसकी सल्तनत थी ना बाबू। नवाब के लिए तो नैहर ही था ना। वाजिद अली शाह ने भी वहाँ जो पीड़ा भोगी जो लड़की बाबुल का घर छोड़कर ससुराल जाते वक्त महसूस करती है। बाबू तुम तो भी नवाब ही लगते हो, गीतों के नवाब, साड़ियों के नवाब। हाँ नवाब ही तो हूँ, शायद एक रोज़ नवाब की हैसियत को भी बौना कर कोई बादशाह बन जाऊँ। बाबू तुम कैसे कैसे झूठे ख्वाब देखते रहते हो, सपने वो देखने चाहिए जो सच हो सके। नजमा ने कुंदन की दुखती रग पर उंगली रख दी थी। वो कहीं भीतर ही भीतर तिलमिला उठा। तू ठीक कहती है नजमा, मेरे दोस्त यारों का मशवरा है, मुझे सिंगर बनना चाहिए। वो मेरी आवाज़ को खुदा की नेमत मानते हैं। ग्रामोफोन कंपनियों में अपना गीत रिकॉर्ड कराने चाहिए मुझे। अरे वाह, ठीक फरमाते हैं बाबू तुम्हारे दोस्त, कोशिश करो ना। कलकत्ता में तो सुने गानों के काले तवे बनते हैं, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, सब उन्हें रिकॉर्ड बोलते हैं। बस एक बार कंपनी वालों को मेरी आवाज पसंद आ जाए तो साड़ी की इस गठरी को मैं हुगली नदी में बहा दूंगा। नजमा खिलखिलाकर हंस पड़ी, उसके मोतियों से सफेद दांत चमक उठे। शायद उस रोज कुंदन ने नजमा को पहली बार निश्चल हंसी में डूबे हुए देखा था। रूह से निकली खुशियों के तबस्सुम उसके चेहरे पर मोतियों से झिलमिला उठे थे। कुंदन का वहम यकीन में बदलने लगा था। उसे ग्रामोफोन कंपनी के दफ्तर में जल्द ही दस्तक देनी होगी। नजमा तो खुद को अनपढ़ गंवार कहती है, दुनियादारी से दूर है, पर तू तो बड़ी इंटेलेक्चुअल है रे। तू क्या बोला बाबू, बुद्धिजीवी? ये तो समझ नहीं आया। अरे ऊंची सोच वाली क्यों फेंकता है बाबू खाली पीली। सुनो, अगर मैं सिंगर बन गया, फिल्मों में गाने लगा, तो मैं तेरे को झोंपड़ पट्टी से निकालकर फिल्मी दुनिया में कोई अच्छा सा काम दिला दूंगा। फोकट में काहे को झूठ बोलता है बाबू, जब लोगों के दिन फिरते हैं वो दिल भी फेर लेते हैं। बाबू तू बड़ा आदमी बन गया ना, तो क्यों रुख करेगा मेरी झोंपड़ी का? मैं तेरी क्या लगती हूँ? बस हरी साड़ी पर ही तो टिका है मेरा दिल। जब मैं उसे खरीद लूंगी तब तो इस बस्ती को भी भूल जाएगा। फिर कहाँ नजमा और कहाँ कुंदन बाबू। नजमा तू मेरी छोटी बहन जैसी है, पंजाबी जान दे देते हैं कॉल ते करार नू जिंदा रखने वास्ते। बाबू तेरी बोली मेरे समझ में नहीं आती। आएगी कैसे, झोंपड़ियों के मॉल से बाहर निकलेगी तब ना। तू कहे तो हरी साड़ी रख ले, जब तेरा दादा आएगा चुका देना कीमत। ना बाबा ना, हम लोग गरीब जरूर हैं मगर बेईमान नहीं। अगर पैसे ना दे पाई तो ठीक है, राजा हरिश्चंद्र की औलाद, चलता हूँ अब, आज फिर तू मेरा भेजा चाट गई। कुंदन ने साड़ियों की गठरी पुनः बांधी, उसे सिर पर रखा। उसे लगा लौटने से पहले एक बार नजमा को जी भर कर देख ले, निर्लिप्त निर्दोष मोम की गुड़िया, हर पल पिघलने को आतुर। उसकी आंखों में न

पलम कितने ही बेशुमार ख्वाब टिमटिमा रहे हैं। कुंदन ने देखा, नजमा वही टूटी फूटी बाण की चारपाई पर बैठी है, चुपचाप गुम सुम सी। बाबू को लौटते हुए देखने के लिए शायद कुंदन आंखों से ओझल हो जाए तो दिन भर के रोज काम निपटाने के लिए उठे। कुंदन और नजमा इस बात से कतई बेखबर थे कि आखिर वो कौन सी तार, धागा या डोर है जो दोनों की भावनाओं के धरातल पर जुड़े हुए है। कोई रिश्ता नहीं, फिर भी एक दूसरे के लिए फिक्रमंद। कुंदन को लगा शायद नजमा ठीक ही कह रही है, उसे ग्रामोफोन कंपनी में ऑडिशन देना चाहिए। अल्लाह के फजल से मुमकिन है कंपनी को उसकी आवाज पसंद आ जाए, फिर कोशिश करने में भला हर्जी क्या है। हिम्मते मर्दा मदद खुदा। एक दिन कुंदन सुबह सवेरे हिंदुस्तान ग्रामोफोन कंपनी के दफ्तर पहुंच गया। गेट पर तैनात नेपाली चौकीदार ने पूछा, अरे कौन हो तुम, किससे मिलना है? ऑडिशन के लिए आया हूं, सिंगर हूं। सुबह से शाम तक 100 लोग चक्कर लगाते हैं यहां सिंगर बनने के लिए। जब तक बड़े साहब का हुक्म नहीं होगा हम तुमको अंदर नहीं जाने दे सकता। कुंदन तैश में आ गया। उनसे कहो जालंधर से मेहर बांशे ने भेजा है, तुम जाओ यहां से। कुंदन ने आओ देखना ताव, चौकीदार को धक्का देकर फुर्ती से जबरन भीतर घुस गया। 2 घंटे बाद दफ्तर से बाहर निकला तो उसके हाथ में अनुबंध पत्र था। रिहर्सल के बाद 1 महीने के अंदर उसके 2 गाने रिकॉर्ड होंगे। चौकीदार ने कुंदन को सलाम किया, अदब से बोला, फिर तशरीफ लाइएगा हुजूर। कुंदन को अल्लाह दीन का चिराग हाथ लग चुका था, जिसे घिसते ही कामयाबी का जिन उसके कदम चूमने लगेगा। उसे पूरा यकीन था कि आने वाले वक्त में वो हिंदुस्तान का हर दिल अजीज गुलूकार बनकर ही रहेगा। बस एक बार ग्रामोफोन कंपनी ने उसके गानों का रिकॉर्ड रिलीज किया नहीं कि फिल्म वाले कलकत्ता में उसके घर की तलाश में कतारबद्ध होने लगेंगे। वो खुशफहमी का शिकार था या फिर दृढ़ आत्मविश्वास का असर, उसे खुद पता नहीं था। कुंदन को उसके दोस्तों ने सलाह दी कि अब वो अपनी बची खुची साड़ियों के गट्ठर को या तो गरीबों में बांट दे या फिर इसे हुगली नदी में बहा डाले। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर वे ग्रामोफोन कंपनी से गीत रिकॉर्ड करने का अनुबंध पत्र प्राप्त करने के बाद भी साड़ियां बेचता रहेगा तो कंपनी उसका इकरारनामा रद्द कर सकती है। आवाज के साथ छवि का साफ सुथरा होना भी लाजमी है। उसके फेरी वाले होने की खबर कंपनी के कानों में कभी भी कोई दुश्मन पहुंचा सकता है। लेकिन कुंदन पसोपेश में था, नजमा से मिलना जरूरी था। वायदे के मुताबिक उसे हरी साड़ी देना लाजमी था। तू क्यों कूड़ा कबाड़ बीन कर अपनी पेट पालने वाली छोरी के लिए पागल हुए जा रहा है? उसके दोस्त मेहर ने उसे लताड़ा। नहीं मेहर, मैनू अपना कॉल निभाण दे। अगर मैं उसे हरी साड़ी नहीं दे गया तो ताम्र मेरे दिल में खलिश रहेगी। बस इतने ही मार खा गया हिंदुस्तान। यार कुंदन, तू क्यों उस 2 टके की लड़की के लिए सेंटी हो रहा है? शट अप, गरीब आदमी की भी इज्जत होती है। उसके बारे में ऐसी घटिया अल्फाज के इस्तेमाल का मैं कतई कायल नहीं हूं। ओ तो हुजूर का दिल आ गया है झोंपड़े वाली पर, तभी मैं कहूं बार बार उसके यहां जाकर बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए क्यों गुनगुनाता था तू? अरे शर्म कर यार, मैं उसे अपनी छोटी बहन मानता हूं। धर्म बहन, तुझे बेहुदा मजाक सूझ रहा है, मैं जा रहा हूं उसे हरी साड़ी गिफ्ट करने। कुंदन माफ करना दोस्त, मैंने तेरा दिल दुखाया। मेयर ने उसे बाहों में भर लिया। यार वेली, तू सचमुच हीरा है, मैं भी चलना तेरे नाल। तू क्यों जाएगा दुर्गंध भरी बस्ती में? तू तो नवाब है ना, नाक भौं सिकोड़ेगा वहां जाकर। यार कुंदन बस कर, चलता हूं, मैं भी मिलना चाहता हूं नजमानू। इस बार कुंदन के हाथों में साड़ियों का गट्ठर नहीं था, ना ही वो वाजिद अली शाह का दर्द भरा गीत गुनगुना रहा था, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए। वो अपने दोस्त मेहर के साथ उस झोंपड़पट्टी में पहुंच रहा था जहां बैठकर वो प्यार दुलार आत्मीयता से नजमा से मीठी मीठी बातें करता था। उन लम्हों में उसे लगता था कलकत्ता जैसे बेदर्द मुरव्वत खुदगर्ज लोगों के शहर में अगर कोई उसकी सच्ची दोस्त है, हम सफर है, तो केवल नजमा है। चंद हफ्तों में ही मासूमियत भोलेपन से लबरेज उस लड़की में उसने अपनी छोटी बहन का प्रतिबिंब देखा था। काश वह उसे गला लगा पाता और उसे कह पाता, नजमा मैं तुझे कलकत्ता के सबसे मशहूर किसी बड़े डॉक्टर के पास ले चलूंगा, तेरा चेकअप कराऊंगा, बेहतर दवा दारू का प्रबंध करूंगा। बस इस बार वह यह सब सोचकर आया था जो वे नजमा के लिए दिल से करने के लिए बेताब था। खुद को गिरवी रखकर भी नजमा का इलाज कर रहेगा। उसके हाथ में शानदार लिफाफा था, लक दक करता हुआ। उसके भीतर उसने खूब करीने से तहकर वही हरी साड़ी रखी हुई थी जिसके बारे में कई बार नजमा उससे कह चुकी थी, बाबू हरी साड़ी पर मेरा दिल आ गया है, इसे संभाल कर रखना, जुम्मे के रोज मेरा भाई आ रहा है बॉम्बे से, तब मैं इसे पैसे देकर तुझसे खरीद लूंगी।
जब कुंदन और उसका दोस्त राजा बाजार की उस झोंपड़पट्टी इलाके में पहुंचे

0: तो आम दिनों की तरह वहां चहल पहल गायब थी। उसे याद आया, नजमा की झोंपड़ी के बाहर जामुन का पेड़ है। अक्सर उसके नीचे बैठकर वो अपना मजमा लगाता था। जब वहीं दूर दूर तक साड़ियों की खुशबू बिखेरने लगती तो आसपास के लोगों का सैलाब सा उमड़ पड़ता था जामुन के दरख्त के नीचे। आज उसकी छांव में 15-20 लोग बैठे थे और वे भी गुमसुम। कुंदन ने नजमा की झोंपड़ी के करीब पहुंचकर उसे आवाज दी, नजमा, ओ नजमा बहन, कहाँ है तू? देख तेरी हरी साड़ी लाया हूं। कुंदन को लगा नजमा तुरंत अपनी झोंपड़ी से निकलकर आएगी, उसके हाथों में हरी साड़ी देखकर खुशी के मारे झूम उठेगी, बाबू से लिपट कर कहेगी, बाबू तुम आगे, आखिर ले ही आए ना मेरी मनपसंद हरी साड़ी, रुको अभी 10 रुपए लेकर आती हूँ दादा से। झोंपड़ी के बाहर एक युवक निकला, कहिए मैं नजमा का भाई हूँ। वो सिसक रहा था, हम लोग नजमा को मिलने आए हैं। नजमा का भाई दहाड़ दहाड़ कर रोने लगा, कल शाम नजमा के दिल में दर्द उठा तो चीखने चिल्लाने लगी। कल सुबह की रेल से ही मैं बॉम्बे से यहाँ पहुँचा था, डॉक्टर को बुलाया, नजमा की आखिरी सांसें चल रही थी, डॉक्टर उसे बचा नहीं पाया, 10 रुपये भी ले गया फीस के। 10 रुपये? हाँ, वो मैंने उसकी साड़ी के लिए बचा कर रखे थे, बार बार मुझे खत लिखती थी, दादा तुम जल्दी आ जाओ बम्बई से, मुझे बाबू से हरी साड़ी खरीदनी है। कुंदन का रोना फूट गया, उसने गले से लगाकर नजमा के भाई को बाहों में भींच लिया, आंसुओं से दोनों के कुर्ते भीग गए। मेरे भाई, मैं ही हूँ वो बाबू, फेरी वाला, कुंदन साड़ी वाला। बाबू, मेरा नाम इरशाद है, नजमा मुझे अकेले छोड़कर चली गई है, माँ बाप का साया तो पहले ही उठ गया था, अकेला रह गया हूँ मैं। भाई तो फिक्र न कर इरशाद, मैं हूँ ना तेरा भाई, क्या करूँ मैं तो लुट गया, नजमा के कफन के लिए एक भी पैसा नहीं है मेरे पास, अब उसकी मैयत भला कैसे उठेगी। कुंदन इरशाद के साथ उस स्याह घने जालों से दर बदर झोंपड़ी में दाखिल हुआ। इरशाद ने खिड़की से पर्दा हटाया तो भीतर रोशनी शहतीर की तरह बाण की उस टूटी फूटी चारपेर बिच गई जहां नजमा की देह निश्चेष्ट निर्विकार शांत थी। कुंदन नजमा की मृत देह से लिपट कर रोने लगा, हे ईश्वर, ये तूने क्या कर डाला, मेरी नजमा बहन, उठ देख, तेरी हरी साड़ी लेकर आया हूँ, 1 महीने तक इसे संभाल कर रखा था मैंने तेरे लिए, मैंने तो साड़ी बेचने का धंधा भी छोड़ दिया, तेरे लिए तोहफे के तौर पर संभाले रखा था मैंने इसे। याद है तूने ही तो मुझे कहा था, बाबू तू एक दिन बड़ा सिंगर बनेगा, तेरी जिद ने मुझे गुलकार बनने का मौका दिया, काश तू मेरे पहले रिकॉर्ड के गीत सुन पाती। कुंदन ने लिफाफे से साड़ी को निकाल कर खोला और उसे फैलाकर नजमा की मृत देह पर उड़ा दिया। इरशाद एकटक जड़वत सा बाबू को देखता रहा।
1: अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र राजन से उनकी लिखी कहानी हरी साड़ी। आइए अब सुनते हैं सविता ठाकुर से उनकी रचनाएं।
2: आपके समक्ष 2 कविताएं, मेरी बादलों के लेके और 2 है नारी सुलभ मन के लिए। तो मेरी पहली कविता का शीर्षक है बादल। बादलों का क्या है, आ जाते हैं कभी भी कहीं से भी और छा जाते हैं आनंदित उन्मुक्त आकाश पर, मन पंछी घबरा जाता है। बादलों का क्या है, आ जाते हैं कभी भी कहीं से भी, छा जाते हैं आनंदित उन्मुक्त आकाश पर, मन पंछी घबरा जाता है। ढूंढने लगता है कोई छोर, जहां न पहुंचे काली बदली, ना चले पानी का जोर। बादल बादल कुछ होते हैं क्षणिक, बादल कुछ बादल तो होते हैं क्षणिक, उमड़े घूमड़े और चले गए। कुछ बादल कुछ देर रुके, कुछ पल बरसे और पिघल गए। कभी कभी छा जाती हैं काली घनघोर घटाएं, ढक लेती हैं सूरज को, लगा देती हैं छड़ी, मन पंछी घबरा जाता है। चलती हैं जब घोर आंधियां, बना बनाया नीड़ हिल जाता है। कहीं न मिलता ठोर ठिकाना, सुखद नब तब याद आता है। सुन मन पंछी, कितनी भी हो काली बदली, एक दिन बरस कर चली जाएगी। 4 दिन का है अंधियारा, फिर से धूप खिलेगी सुख की, फिर से निकलेगा सूरज, फिर से गगन फिर नीला होगा, फिर उड़ेगा पंछी तू उन्मुक्त आकाश में, फिर से होगा निर्माण नीड़ का, फिर से होगा निर्माण नीर का। दूसरी कविता का शीर्षक भी बादल ही है, पर एक दूसरे संदर्भ में, कि मन भर आया बादल देखकर, मन भर आया बादल देख, कोई तो रो रहा होगा, बादल देख मन भर आया, कोई तो रो रहा होगा। किस बिरहन की आह से पिघली होगी बिजली नब की, किसकी खामोशी लाई होगी बादल में गर्जन, किसकी स्थिरता लाई होगी हवा में गति, किसकी उदासी ने छेड़ी होगी रिमझिम की सरगम, मन भर आया बादल देख, कोई तो रो रहा होगा। किसकी सूनी आंखों में झलका होगा मेघ पानी बनकर, किसकी तपन फिर भाप बन उबली।

होगी। किसकी गहनता से चली घोर आंधियां, किसकी प्यास पपीहे सी उभरी होगी। मन भर आया बादल देख कोई तो रो रहा होगा। किसकी हुक सुन कुकी होगी कोयल उपवन में, किसकी हुक सुन कुकी होगी कोयल उपवन में। किसकी तड़फ देख नाचा होगा मोर वन में, किसकी शालीनता देख लांगी होगी सीमा नदी ने। किसकी सहनशीलता देख तोड़ी होगी शाख वृक्ष ने। मन भर आया बादल देख कोई तो रो रहा होगा। ढाई आखर प्रेम का पढ़कर कौन बेचैन हुआ होगा। ढाई आखर प्रेम का पढ़कर कौन बेचैन हुआ होगा। कौन सा अंकुर ना उभरा जो जमी में बुआ होगा। किस पहाड़ का छलनी सीना टूट कर बहा होगा। किसका कुंठित यौवन देख झरना झरझर जर फूटा होगा। मन भर आया बादल देख कोई तो रो रहा होगा। बादल देख मन भर आया कोई तो रो रहा होगा। मेरी अगली कविता है एक नारी सुलभ मन की छोटी छोटी बातें, उन्हीं को लेकर के। कि बातें कर लेती हूँ मैं चिड़िया से भी, बातें कर लेती हूँ मैं चिड़िया से भी। जो मेरे मुंडेर पर आकर चहक चहक कर कुछ कह जाती, बतिया लेती हूँ कबूतरों से भी। बतिया लेती हूँ कबूतरों से भी दाना चोगा डालते हुए छत पर। बातें कर लेती हूँ मैं चिड़िया से भी। जो मेरे मुंडेर पर आकर चहक चहक कर कुछ कह जाती, बतिया लेती हूँ कबूतरों से भी दाना चोगा डालते हुए छत पर। पूछ लेती हूँ हाल चाल, पूछ लेती हूँ हाल चाल राह चलते कुत्ते का भी। कहाँ कहाँ घूम कर आया इतने दिन कहाँ रहा तू। पूछ लेती हूँ हाल चाल राह चलते कुत्ते का भी। कहाँ कहाँ घूम कर आया इतने दिन कहाँ रहा तू। डांट लेती हूँ उस बिल्ली को भी जो फूटी आँख मुझे नहीं सुहाती। उसकी मक्कारी भरी म्याऊ म्याऊ मुझको बिल्कुल नहीं भाती। कर लेती हूँ सवाल, कर लेती हूँ सवाल काले कौओं से भी, किसका संदेशा लाया है तू। कर लेती हूँ सवाल काले कौए से भी, किसका संदेशा लाया है तू। कौन गौन से कौन आएगा, आने वाला क्या मन भाएगा। कभी कभी मकड़ी तो कभी छिपकली, कभी कभी मकड़ी तो कभी छिपकली भी। फंस जाते हैं मेरे प्रश्नों के घेरे में, क्यों आए घर के भीतर कौन जतन से जाओगे तुम। मक्खी मच्छर तो अक्सर आ ही जाते हैं मेरे चपेटे में। कभी कह उठता बगिया का फूल प्यासा हूँ माँ पानी दो। कभी कह देती कोई टहनी सूख रही हूँ ध्यान धरो। कभी कह देता बगिया का फूल प्यासा हूँ माँ पानी दो। कभी कह देती कोई टहनी सूख रही हूँ ध्यान धरो। दिन भर बातों का सिलसिला चलता ही रहता है घर के काम काज के साथ। सांझ ढले फिर घंटी बजाकर बोलती हूँ तू खोल द्वार। इतनी बड़ी दुनिया को बनाकर भूल गया तू उसका हाल। बच्चे पूछा करते हैं अक्सर माँ क्या करती हो अकेले तुम। भला कहाँ अकेली में बच्चों। इस दुनिया के अलावा एक अपनी दुनिया है मेरी जिसमें घिरी रहती हूँ मैं सवालों और जवाबों में। मेरी अगली कविता है अम्मा। सबको बारी बारी भेज सबका सामान समेटती अम्मा। सबको खाना खिला लंच बॉक्स में भर भर कर कढ़ाई की खुरचिन खुरेद खुद को परोसती अम्मा। सबको बारी बारी भेज सबका सामान समेटती अम्मा। सबको खाना खिला लंच बॉक्स में भर भर कर कढ़ाई की खुरचिन खुरेद खुद को परोसती अम्मा। उम्र की इस लंबी कड़ी से अपने दुखों को कुरेदती अम्मा। कब जी पाई अपनी जिंदगी सदा दूसरों का जीवन झेलती अम्मा। उम्र की इस लंबी कड़ी से अपने दुखों को कुरेदती अम्मा। कब जी पाई अपनी जिंदगी सदा दूसरों का जीवन झेलती अम्मा। जिसने ने पूछा हाल बीमारी में भी, जिसने ने पूछा कभी हाल बीमारी में भी, उसकी आयु के लिए निर्जल रह चांद को पूछती अम्मा। दो हो या चार हैं तो उसके अंग ही अंग अंग कटने का दुख अकेले झेलती अम्मा। ससुराल हो या अपने ही बेटे का घर एक कोने में पड़ी सब कुछ घटता देखती अम्मा। खुद पर तो न कर सकी एक पैसा भी खर्च। संदूक ची में रखी पोटली बार बार टटोलती अम्मा। सोचती हूँ वरदान है या शाप माँ बनना। सुख में रही कोसों दूर हर पीड़ा संग झेलती अम्मा। सबको बारी बारी भेज सबका सामान समेटती अम्मा। कढ़ाई में पड़ी खुरचन खुरेद खुद को परोसती अम्मा। क्यों नहीं उभर पाता मन।

0: अंतर मन की गहराइयों से। क्यों नहीं उभर पाता मन अंतः मन की गहराइयों से, क्यों दब जाती है ज्योति अंतःकरण के घोर तिमिर में। सहमा सहमा दबा दबा सा एहसास, सहमा सहमा दबा दबा सा एहसास कटोच जाता है कहीं गहरे, रोक लेता है उठते उठते कदम जो छूने चलते हैं पर्वत शिखर को। क्यों छिन भिन हो जाती हैं उमंगे पर्वत श्रृंखलाओं जैसी, क्यों गहरे दबी कोई पीड़ा मेरी अपनी ही कमजोरी जीर्ण क्षीण करती है मेरी हिम्मत। क्यों नहीं निकल पाते शब्द घूम घूम कर हृदय में छिलनी कर देते हैं मुझे। क्यों नहीं उभर पाता मन अंता मन की गहराइयों से, क्यों दब जाती है ज्योति अंतःकरण के घोर तिमिर में। सहमा सहमा दबा दबा सा एहसास कटोच जाता है कहीं गहरे, रोक लेता है मेरे उठते कदम जो छूने चलते हैं किसी पर्वत शिखर को। क्यों छिन भिन हो जाती हैं उमंगे पर्वत श्रृंखलाओं जैसे, कहीं गहरे दबी कोई पीड़ा मेरी अपनी ही कमजोरी जर जर क्षीण करती है मेरी हिम्मत। क्यों नहीं निकल पाते शब्द घूम घूम कर हृदय में छलनी कर देते हैं मुझे। आखिर क्यों, आखिर क्यों और कब तक जलना होगा आत्म जलन में और ढोना होगा बोझ इस अंधे युग के अंधेपन का, इस अंधे युग के अंधेपन का। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे सविता ठाकुर से उनकी रचनाएं। इसी के साथ साहित्य दर्पण कार्यक्रम का आज का अंक यहीं संपन्न होता है। आगे लेते हैं नमस्कार।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एआईआर एफएम शिमला, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
2: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला, डीटीएस सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुना जा सकता है।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोयस ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम आज सुबह 11 बजे घोषित कर रहा है। बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा। इस बार मार्च माह में 93,564 विद्यार्थियों ने प्रदेश स्कूल

0: शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। विद्यार्थी रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 10वीं की परीक्षाएं 3 से 29 मार्च तक आयोजित की गई थी। परीक्षा का आयोजन 384 केंद्रों पर हुआ था। दिल्ली से शिमला के लिए हवाई सेवाएं आज से दोबारा बहाल हो रही हैं। ये सेवाएं मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित की जाएंगी। इसके अलावा शिमला से धर्मशाला के लिए भी कल 11 मई से हवाई सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। इस रूट पर मंगलवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन हवाई सेवाएँ होंगी। इन सेवाओं के शुरू होने से राज्य में हवाई सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि इससे राज्य में पर्यटन व व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अब लाहौल स्पीति के गांवों में विश्वास, आत्मनिर्भरता और समृद्धि की नई कहानी लिखता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चीन सीमा से सटे गांव तेजी से बदल रहे हैं। स्पीति घाटी के ग्यू, लालुंग और माने जैसे गांव अब मॉडल विलेज के रूप में उभर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ विकास नहीं बल्कि सीमावर्ती गांवों में नई उम्मीद देना है, ताकि सीमा पर बसे लोग खुद को देश की मुख्य धारा से और अधिक जुड़ा महसूस कर सकें। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: स्पीति घाटी के ग्यू, लालुंग और मानी जैसे गांव अब मॉडल विलेज के रूप में उभर रहे हैं। यहां सड़क, पानी, बिजली, इंटरनेट और रोजगार जैसी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। सीमा सड़क संगठन और लोक निर्माण विभाग दुर्गम गांवों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ रहे हैं। वहीं 5G टावर लगने से अब दूर दराज इलाकों में भी डिजिटल क्रांति पहुंच रही है। पर्यटन विभाग स्थानीय युवाओं को होमस्टे और टूरिस्ट गाइड का प्रशिक्षण दे रहा है। कालाजीरा, केसर और सेवक थॉन जैसे स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान दिलाने के लिए आधुनिक मशीनें और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ विकास नहीं बल्कि सीमावर्ती गाँव में नई उम्मीद जगाना है, ताकि सीमा पर बसे लोग खुद को देश की मुख्य धारा से और अधिक जुड़ा महसूस करें। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: किन्नौर जिला की प्राकृतिक विरासत, दुर्लभ पक्षी प्रजातियों के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आज समापन होगा। ये आयोजन 8 मई से हिमाचल पर्यटन विभाग, ओम किन्नौर स्थानीय शाखा, वन विभाग और जिला प्रशासन किन्नौर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। फेस्टिवल के अंतिम दिन आज भी पक्षी अवलोकन, प्रकृति भ्रमण, विशेषज्ञ संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएंगी। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्की धूप के बीच बादल छाए हुए हैं। प्रदेश में मई के दूसरे सप्ताह में भी ठंड बरकरार है और लोगों को सुबह व शाम गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का अनुमान है। विभाग के अनुसार मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 11 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए येलो, जबकि 12 और 13 मई को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए ऑरेंज व अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 PM। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: 103.7 MHz पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ, और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं नितिका शर्मा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, हमारे प्रोग्राम्स इन्जॉय कर रहे हैं। आज मदर्स डे है, तो सभी माताओं को आकाशवाणी परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और उन पिताओं को भी जो मदर्स की तरह ही अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक दिन काफ़ी नहीं होता है मदर्स डे और फादर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए। हमें लगता है कि हर रोज़ ही ये सेलिब्रेशंस होनी चाहिए, हर रोज़ आपको प्यार दिखाना चाहिए और रिस्पेक्ट हर दिन, हर समय, हर घड़ी होनी चाहिए। 11:06 हुए हैं, ये वक्त रहता है कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। पुरानी फिल्मों में आप इन्जॉय करेंगे ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म राजा और रंक। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए FM शिमला के साथ।

ट्यून इन है आप एफएम शिमला के साथ, सुन रहे हैं प्रोग्राम पुरानी फिल्मों से। अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म चाचा भतीजा से। गीतकार हैं लक्ष्मी आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और ये गीत सुनेंगे आप शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में।

फिल्म प्रेम पुजारी का गीत सुनेंगे आप लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं नीरज और संगीतकार एसडी बर्मन।

प्रोग्राम पुरानी फिल्मों में ये आखिरी गीत आप सुनेंगे फिल्म द ट्रेन से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन।

सुन रहे हैं आप FM शिमला 103.7 MHz पर। 11:30 हुए हैं, आप सुनेंगे लोक संगीत। पेश है रमा सिंह की आवाज़ में ये लोकगीत।

ये लोकगीत आपने सुना कमला मेकटा की आवाज़ में। लोक संगीत में अगला लोकगीत लीजिए पेश है भुवनेश कुमार की आवाज़ में। सुन रहे हैं FM शिमला, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ये लोकगीत आपने सुना नीरू चांदनी की आवाज़ में। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं FM शिमला के साथ। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: सी जोसेफ विजय यनमनान तमिल

0: மாநாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ नौ अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है। राज्य में अब तक 2,16,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। IPL क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: स्वागत अभिनंदन आप सभी का कार्यक्रम महिला सम्मेलन में। मैं हूं आपकी सखी उमा ठाकुर
1: और मैं सीमा ठाकुर।
0: आप सभी को हमारा नमस्कार। माँ की ममता की छाया में हर दुख छोटा लग जाता है। माँ के हाथों का स्पर्श मिले तो मन फिर से जीना सीख जाता है।
1: जी बिल्कुल, माँ कोई शब्द नहीं, जीवन का पहला गीत है। जब दुनिया ठुकरा दे हमको, माँ ही पहला गीत है।
0: जी बहनों, देखिए आज है मदर्स डे यानी मातृत्व दिवस। आप सभी को मातृत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: बहनों, माँ केवल एक शब्द नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का सबसे मधुर संगीत है। ये एक ऐसा एहसास है जो जन्म लेने से पहले ही हमें अपनी धड़कनों में ऐसे समा लेता है मानो कोई जैसे एक सहज सा परिंदे को संजो कर रख।

0: लगता है। कहते भी हैं कि माँ वहाँ भी उपस्थित हो जाती है जहाँ ईश्वर उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया, इसमें अतिशोक्ति भी नहीं है।
1: बिल्कुल सीमा, देखिए बहुत ही बढ़िया आपने कहा, जहाँ ईश्वर नहीं वहाँ माँ हमारे आसपास हमेशा हमारी ढाल बनकर रहती है। और कहते भी है ना, मातृ देवो भव, अर्थात माता जो है देवता के समान है। और हमारी संस्कृति में तो देखिए धरती माँ को भी धरती माँ कहा गया है और नदियों को गंगा माँ कहा गया है और भाषा को यहाँ तक देखिए मातृभाषा कहा गया है और जन्मभूमि को मातृभूमि, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि माँ केवल जन्म देने वाली ही नहीं होती, पालन करने वाली हर शक्ति भी माँ होती है। माँ का अपने बच्चों के साथ अनमोल रिश्ता होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ ही उनकी पहली दुनिया होती है। चलना सीखना हो, गिरकर उठना हो, या फिर पहला शब्द बोलना हो, माँ हमेशा ढाल बनकर खड़ी रहती है।
1: जी हाँ, मैंने देखी माँ केवल जन्म देने

0: वाली हर शक्ति भी माँ होती है। माँ का अपने बच्चों के साथ अनमोल रिश्ता होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ ही उनकी पहली दुनिया होती है। चलना सीखना हो, गिरकर उठना हो, या फिर पहला शब्द बोलना हो, माँ हमेशा ढाल बनकर खड़ी रहती है।
1: जी हाँ, मैंने देखिए, माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती है बल्कि जीवन को कैसे संवारना है ये माँ ही बखूबी जानती है। और अगर आपके पास माता पिता है ना, तो आप दुनिया के सबसे खुश नसीब लोग हैं। और आप उन्हें, ये भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं, कि समय समय पर उन्हें ये एहसास कराएं कि वे आपके जीवन में कितनी खास है।
0: जी बहनों, सच तो यही है कि माँ के रहते घर केवल घर नहीं होता, वो मंदिर, दुआ और घर का आंगन होता है। बहनों, माँ केवल हमें जन्म नहीं देती, अभी तो वो हमें हर दिन गढ़ती है, हमारी गलतियों को सुधारती है और आंसुओं को छुपाती है।
1: बिल्कुल सीमा, देखिए, मातृत्व दिवस केवल उपहार देने का, कई बार होता है ना कि हम माँ को सिर्फ उपहार दे देते हैं और
0: जी
1: उन्हें खुश करने में लग जाते हैं, लेकिन ये वो समय है जहाँ पर हमें थोड़ा सा रुककर ये आत्ममंथन करना है कि आपने पहले कभी उन्हें धन्यवाद कहा है किसी चीज़ के लिए, या फिर जो उनकी चुप्पियाँ हैं, कई बार वो चुप सी रहती है, उन अपने दुख किसी से जाहिर नहीं करती है, तो आप उनके साथ खड़े रहे हैं क्या, इस चीज़ को भी हमें जानना है, समझना है।
0: जी बहनों, माँ जीवन की वो किताब है जिसे पूरा पढ़ लेने के बाद भी हम उनका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पाते। माँ बिना शर्त के असीम प्रेम करती है, हमारी छोटी सी मुस्कान के लिए वो अपने बड़े बड़े दुखों को छुपा लेती है।
1: बिल्कुल, वे खुद कभी, देखिए, थकती नहीं है और हमें हमेशा ये कोशिश करती हैं कि हम हमेशा उनके आसपास रहें, हमेशा खुश रहें, और खुद चाहे वो कम खाएं लेकिन हमारी थाली में जो है खाना भरपूर होना चाहिए।
0: जी
1: और जो प्यार की अगर हम बात करें तो वो तो है ही अनमोल, और हम कह सकते हैं कि जो माँ जो शब्द है वो कहीं ना कहीं शब्दों में उसे बयान नहीं किया जा सकता है, ये सिर्फ एहसास है जो हमेशा हमारे आसपास रहता है। माँ अगर नहीं भी है तो उनका जो एहसास है, उनकी जो छुअन है, उनके साथ जो बिताए पल है, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और ढाल बनकर जीवन में जब भी हम आगे कुछ बढ़ना चाहते हैं, या कहीं हम सोचते हैं कि हम जो है थोड़ा सा थक गए हैं, रुक गए हैं, या फिर हम कोशिश करना अगर छोड़ देते हैं, तो माँ की ये जो सीख है, जो नैतिक मूल्य है, हमेशा हमारे साथ रहते हैं।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि कहा भी गया है कि माँ की दुआ साथ हो तो सफ़र आसान लगता है, उसके बिना हर अपना भी अनजान लगता है।
1: जी, तो चलिए, बातचीत का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। बहनों को सुनाते हैं ये गीत।
0: जी

0: देखिए बहनों, शब्द तीर भी बनते हैं, मरहम भी बन जाते हैं। कुछ रिश्ते सुन लेने भर से फिर मुस्कुराते हैं। जो कम बोलकर सबकी बातें दिल से सुन ले, वही लोग अक्सर अपने कहलाते हैं। क्यों सीमा
1: जी? बिल्कुल, लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें तो बहनों, हर कोई बोलना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन एक प्रश्न मन में ये भी उठता है कि क्या हम सचमुच दूसरों को सुनना चाहते हैं?
0: जी, हम अक्सर ये कहते हैं ना कि कोई मुझे समझता नहीं, मेरी बात को सुनता नहीं, लेकिन क्या हमने ये कभी गौर किया है कि क्या हम दूसरों की बात को भी उतनी ही शिद्दत से सुनते हैं?
1: क्योंकि आज का जो डिजिटल युग है, इसमें भाग दौड़ और तनाव भरी जिंदगी में लोगों के पास बोलने का समय तो है, लेकिन सुनने का जो धैर्य है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है।
0: जी, तो बहनों देखिए, सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि सुनना और सुनाई देना एक जैसी बात नहीं होती है। वास्तव में सही तरीके से दूसरों की बात को सुनना वही है जब हम पूरे मन से, बिना उसे टोके, बिना निर्णय किए, सामने वाले को बहुत अच्छे से सुनते हैं, धैर्य से सुनते हैं और उसे समझते हैं।
1: जब कोई व्यक्ति या सामने वाला जिससे आप बातचीत कर रहे होते हैं, ये महसूस करता है कि उसे सचमुच सुना जा रहा है, तो उसका जो अपना दुख है तो वो वैसे ही कम हो जाता है। क्योंकि देखिए उमा, आज के समय में अगर हम बात करते हैं ना, तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अंदर से टूटा हुआ सा

0: महसूस
1: जी
0: करता है, और वो चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा स्थान मिले जहाँ पर वो अपने मन के भावों को कह सके। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जब भी कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो हम सहज नहीं होते हैं और हम उसकी बातों को उस भाव से सुन नहीं पाते हैं, जिसका कि सामने वाले पर कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ता है।
1: जी और कई बार हम सोचते हैं कि जो ज़्यादा बोलता है ना वही प्रभावशाली होता है, लेकिन मैंने देखिए सच तो यही है कि कम बोलने वाला व्यक्ति भी अधिक समझदार हो सकता है। और कम बोलने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति जो है डरपोक है या उसमें फिर आत्मविश्वास की कमी है, बल्कि इसका अर्थ यही है कि हमें सोच समझकर शब्दों के महत्व को समझते हुए जो अनावश्यक प्रतिक्रिया हम कई बार कर देते हैं ना उनसे बचना चाहिए।
0: जी बहनों, आपने सुना भी होगा कि शब्दों में शक्ति होती है। एक कठोर शब्द जहाँ रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है, वहीं अगर मधुर वाणी का इस्तेमाल करते हैं तो मधुर वाणी से निकले शब्द टूटे हुए मन और रिश्तों की डोर को और भी ज़्यादा मजबूत बना देते हैं।
1: जी और आज के दौर की अगर हम बात करें तो रिश्तों में दरार की वजह कहीं ना कहीं संवाद की कमी भी हो सकता है,
0: जी
1: क्योंकि एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हुए भी हम सब जो है अपने आप में खोए रहते हैं या फिर मोबाइल स्क्रीन में बिजी रहते हैं। और बहनों देखिए परिवार तभी मजबूत बनता है जब लोग जो है एक दूसरे को सुनेंगे। यदि आपका बच्चा उदास है तो उसे डांटने से पहले उसको ज़रूर सुने, और अगर पति पत्नी में तनाव है तो सलाह देने से पहले जो है उनकी भावनाओं को आप ज़रूर समझें। साथ ही अगर घर में आपके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना उन्हें बार बार एक ही बार बात कई बार वो कहते रहते हैं, तो आपको ये करना है कि झुंझलाने के बजाय या फिर उनकी बात को अनसुना करने के बजाय जो है आप उन्हें धैर्य के साथ सुने।
0: जी बहनों, देखिए इसके साथ ही ये भी समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुनना ज़रूरी है, मगर साथ ही ये भी समझना ज़रूरी है कि जहां आपको लगे कि सामने से कुछ गलत बात हो रही है या किसी तरह का किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो वहां पर हिम्मत और हौसले के साथ आवाज़ उठाना भी ज़रूरी होता है।
1: जी और कुछ छोटी छोटी आदतें अपनाकर जो है हम अच्छे श्रोता बन सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपको यही करना है कि कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उसकी बात को बीच में ना काटें। और साथ ही कई बार हम होते हैं ना कि हम मोबाइल देखते हुए दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं, तो इन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए।
0: जी, ये आज के समय की बहुत ही बड़ी चुनौती जो है हमारे सामने है, क्योंकि अक्सर आपने भी महसूस किया
1: जी
0: होगा कि जब हम किसी के साथ कोई बात कर रहे होते हैं ना, तो वो अक्सर अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो
1: बिल्कुल
0: बहनों देखिए, ऐसा जब हम करते हैं ना, तो सामने वाला हमसे किस भाव से मिलने आया है हम उसके उस भाव को समझ ही नहीं पाते। और एक गलती जो हम और करते हैं कि अगर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे पास आया है तो हम उसको तुरंत सलाह देने की जल्दबाजी करने लगते हैं। तो बहनों ऐसा बिल्कुल ना करें, बल्कि पहले बात को समझने की कोशिश करें, उसके बाद ही सामने वाले की भावनाओं की कद्र करते हुए धैर्यपूर्वक समाधान निकालने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी ये छोटी सी पहल किसी की जिंदगी संवार सकती है।
1: जी और देखिए इस जो सुनना सीख जाता है ना वो कहीं ना कहीं रिश्तों को समझना भी सीख जाता है। तो कभी अपने घर में अपने रिश्तों में अपने मित्रों के बीच ये छोटा सा प्रयोग आप ज़रूर करें, थोड़ा कम बोलें और ज़्यादा सुनें। यकीन मानिए आप पाएंगे कि बहुत सी जो समस्याएं होती है वे बिना बहस के ही हल होने लगती है, और साथ ही जो रिश्तों की डोर जो है अपने आप ही मजबूत हो जाती है।
0: जी बिल्कुल।

बहनों, वर्तमान में यूपीआई भुगतान हमारी जीवन शैली का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्यूआर इंजेक्शन जैसे नए स्कैम ने सुरक्षा में सेंध लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। इसमें कई लोग अनजाने में नकली स्टिकर स्कैन करके अपनी मेहनत की कमाई गंवा भी रहे हैं। आज हम यही बात करेंगे कि आप किस प्रकार खुद को इस तरह की

0: समस्या से बचा सकती हैं।
1: जी बहनों, तो देखिए चलते हैं, जानते हैं कि QR इंजेक्शन का जाल है क्या। बहनों देखिए, ये स्कैम तकनीक से ज़्यादा मनोवैज्ञानिक है और किसी व्यस्त कैफ़े या दुकान पर असली QR कोड के ऊपर अपना नकली QR कोड स्टिकर जो है, जो स्कैमर होते हैं, ठग होते हैं, वो चिपका देते हैं और जब आप इसे स्कैन करते हैं तो फ़ोन का इंटरफेस बदल जाता है। ये आपको एक फर्जी पेमेंट पेज पर ले जाता है जो देखने में बिल्कुल असली ऐप जैसा लगता है।
0: जैसे ही आप अपना गोपनीय UPI पिन दर्ज करते हैं, आपके बैंक खाते का नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप से इससे ठगों के पास चला जाता है और जानकारी मिलते ही ठग बड़ी रकम साफ कर देते हैं।
1: जी तो बहनों देखिए, ऐसे में आपको सतर्कता ही सबसे बड़ा जो आपका हथियार है, वो आपको सतर्क रहना है ऐसे समय में। इसलिए भुगतान से पहले कुछ बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। QR कोड को छूकर आपको देखना है कि कहीं उसके ऊपर कोई स्टिकर तो चिपका नहीं है, या इसके अलावा जो है आप रोज़ ये जांच, सुबह जो है जब भी आप दुकान में आते हैं तो आप ये ज़रूर देखें कि QR कोड के मालिक को भी इस QR कोड की जांच ज़रूर करनी चाहिए समय समय पर, ताकि ऐसी कोई ठगी से बचा जा सके।
0: जी बिल्कुल, मैंने QR कोड को स्कैन करने के बाद ऐप पर आने वाले नाम को देखें और जब भी आप पेमेंट करें तो दुकानदार को उसका नाम बताकर उसकी पुष्टि करें, तभी पेमेंट करें। यदि पेमेंट स्क्रीन सामान्य से अलग दिख रही है तो तुरंत रुक जाएं और QR कोड के मालिक को इसके बारे में सूचित करें।
1: जी, और एक और चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पेमेंट आप जब रिसीव कर रही हैं तो इसके लिए आपको कभी भी पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ध्यान रखें बहनों कि आपको पिन तभी डालना होता है जब आप जो है पैसे भेज रही होती हैं।
0: बहनों, अगर आप किसी को कोई बड़ी पेमेंट भेज रही हैं या फिर अपने अकाउंट में किसी से रिसीव कर रही हैं तो QR कोड की बजाय आप मोबाइल नंबर या फिर जो आपकी UPI ID है उसका उपयोग करें, ये ज़्यादा सुरक्षित होता है।
1: जी, और फिर भी अगर आप कभी जो है किसी ठगी का शिकार हो जाते हैं तो इसमें जो है पहले जो 1-2 घंटे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इस समय में जो आपको काम करना है, सबसे पहले तो आपको साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत जो है कॉल करना है, ताकि वे जो है ट्रांजैक्शन को फ्रीज कर सकें।
0: जी, इसके तुरंत बाद आपको अपने बैंक, जहां आपका बैंक अकाउंट है, वहां आपको कॉल करके खाते और UPI को ब्लॉक करवाना है। जैसे ही आपका बैंक आपके UPI अकाउंट और अकाउंट को ब्लॉक कर देता है, आपके अकाउंट से होने वाली डेबिट जो भी ट्रांजैक्शन है वो रुक जाती है। और यदि ठग आपके पिन या पासवर्ड का उपयोग करके और पैसे निकालने की कोशिश कर भी रहा होगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा।
1: जी, और साथ ही ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स के हेल्प सेक्शन में जाकर भी आप रिपोर्ट जो है दर्ज करवा सकते हैं। तुरंत अपना UPI पिन ज़रूर बदलें और बैंक अकाउंट का जो पासवर्ड है उसे भी समय समय पर अपडेट करते रहें। SMS और ईमेल अलर्ट जो है आप चालू रखें, ताकि आप हर गतिविधि पर जो है ध्यान रख सकें।
0: जी, तो बहनों इस प्रकार आप छोटी सी, अगर आप अपने आप को सतर्क रखती हैं, आप ये छोटी छोटी सी सावधानियां रखती हैं, तो आप किसी भी होने वाली ऑनलाइन ठगी से खुद को बचा सकती हैं और इसके बारे में अपने आस पड़ोस वालों को भी जागरूक कर सकती हैं।
1: जी।

0: कि आकाशवाणी के 90 वर्षों का सफर केवल तकनीक की कहानी नहीं, बल्कि भावनाओं, संस्कृति, संवाद और विश्वास की कहानी है।
1: बहनों, आकाशवाणी ने केवल मनोरंजन नहीं दिया, बल्कि समाज को एक नई दिशा दी। आकाशवाणी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण का संदेश मिला। युवाओं को रोजगार, साहित्य और संगीत की जानकारी मिली।
0: जी, विशेष रूप से लोक संस्कृति के संरक्षण में आकाशवाणी की भूमिका जो है अतुलनीय है, और आज के डिजिटल युग में भी आकाशवाणी की प्रासंगिकता बनी हुई है।
1: आज श्रोता केवल रेडियो सेट तक ही सीमित नहीं, बल्कि वे मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आकाशवाणी से जुड़ रहे हैं। ये परिवर्तन केवल तकनीक का नहीं, बल्कि समय के साथ आगे बढ़ने का प्रमाण है।
0: जी, आकाशवाणी के 90 वर्षों का सफर केवल समय का पड़ाव नहीं, बल्कि विश्वास, संस्कृति और संवाद की अमूल्य धरोहर है।
1: जी,

0: तो बहनों देखिए, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है समय समाप्ति का। बहनों से लेते हैं अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सम्मेलन कार्यक्रम मीडियम वेव पर। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आप ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: कौन से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है? कांग्रेस महिला आरक्षण का

0: वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru this morning. He also inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation. He also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building.
0: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
2: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. He will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. The state-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit hospital. Earlier, Prime Minister Modi emphasized that the BJP victory in West Bengal, Assam and Puducherry is a testament of public support for the national policy implemented by his government. He said that the election outcomes reflect the

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एआईआर एफएम शिमला, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। 1:10 हुए हैं और आप इंजॉय करेंगे म्यूजिक मस्ती। जी हाँ, एक से बढ़कर एक फिल्मों के, एक से बढ़कर एक गीत लेकर शामिल हैं हम। और आपको क्या करना है, बस आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ, इंजॉय कीजिए प्रोग्राम का पहला गीत कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम है करीब, गीतकार हैं राहत इंदौरी और संगीतकार अनु मलिक।

सुन रहे हैं आप म्यूजिक मस्ती 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला के साथ। अगला गीत इंजॉय कीजिए सुखविंदर सिंह की आवाज में फिल्म तेरे नाम से। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ, इसी फिल्म का गीत सुनेंगे आप इकबाल अफजल और अनुपमा देशपांडे की आवाज़ों में। बोल हैं समीर के और म्यूज़िक दिया है जतिन ललित ने। आप सुन रहे हैं म्यूज़िक मस्ती, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार मदन मोहन, फिल्म का नाम वीर ज़ारा और गीत सुनेंगे आप उदित नारायण की आवाज़ में। सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर।

अनुराधा पौडवाल, सुखविंदर सिंह, जसपिंदर नरूला और अनमोल मलिक की आवाज़ों में आप सुनेंगे फिल्म बादल का गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार अनु मलिक।

ये गीत आपने सुना विनोद राठौर की आवाज़ में फिल्म बाजीगर से, और कार्यक्रम में ये आखिरी गीत आप इंजॉय करेंगे सोनू निगम, आफ्ताब सबरी और हासिम सबरी की आवाज़ों में, फिल्म का नाम मैं हूं ना। बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत दिया है अनु मलिक ने। आप सुन रहे हैं म्यूज़िक मस्ती, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे थे म्यूजिक मस्ती 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला के साथ।
1: शिमला की वादियों से आपके दिलों तक आ गया है आपका अपना भरोसेमंद साथी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी एफएम शिमला। खबरें, संगीत, संस्कृति और मनोरंजन का बेमिसाल

पर्यटन की बात हो या संस्कृति की, हर मुसाफिर की जो आवाज बनता है, जुड़िए उस आवाज से जो हिमालय की गूंज जैसी है। आकाशवाणी FM शिमला, शुभवाणी लाभवाणी, ये है जन जन की वाणी, आकाशवाणी।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। 2:01 हुए हैं और आप सुनेंगे सबरंग। इंजॉय कीजिए नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ में ये गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रहे थे सबरंग 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप ट्यून इन हैं FM शिमला के साथ। दोपहर हिंदी समाचार सुनेंगे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए

0: स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
0: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय नान तमिलनाडु முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गुजरात में

0: इस सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
1: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाई जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और

0: ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा।

0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। 2:30 हुए हैं और आप सुनेंगे शिखरों के स्वर। पेश है मनोज कुमार की आवाज में ये लोकगीत।

ये लोकगीत आपने सुना संतोष की आवाज में, शिखरों के स्वर में। अगला लोकगीत लीजिए पेश है घमीर चंद कौशल की आवाज में।

आप सुन रहे थे शिखरों के स्वर 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर. आप ट्यून इन हैं FM शिमला के साथ. कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें.

0: ये आकाशवाणी शिमला है। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला, DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष 93,176 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी, जिनमें से 78,150 उत्तीर्ण हुए हैं। 8,433 विद्यार्थियों के कंपार्टमेंट आई है, जबकि 6,559 असफल घोषित किए गए हैं। इसी तरह परीक्षा परिणाम 83.87% रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर माना जा रहा है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा के अनुसार परीक्षा प्रणाली में इस बार कई बड़े बदलाव किए गए थे, जिसके चलते परिणाम में सुधार देखने को मिला है।
2: इस बार जो बोर्ड की पास परसेंटेज है वो है 83.87%, जो पिछले वर्षों के मुकाबले ग्रेजुअल इंक्रीज है। ये दर्शाता है कि बोर्ड पिछले कुछ वर्षों से लगातार एफर्ट कर रहा है, जिसके रिजल्ट आज देखने को मिल रहे हैं। ये अचानक नहीं है। बोर्ड की जो कार्यशैली है, कार्यशाला लगाने, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, बच्चों के पेपर का स्टाइल CBSE के मुताबिक करने के लिए, साथ के साथ जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाले, जैसे बच्चों को नीट में चाहिए होते हैं, JEE में चाहिए होते हैं, UPSC में चाहिए होते हैं, वैसे हमने पैटर्न भी चेंज करा। और कुछ उनके मस्तिष्क में था, मानसिक तौर पर तैयार थे कि हमारे हक को चुराया नहीं जाएगा, नकल पे रोक लगेगी, इसलिए वो बेटर परफॉर्म कर पाए।
1: इस बार 10वीं कक्षा की मेरिट सूची में 107 विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। इनमें 83 छात्राएं और 24 छात्र शामिल हैं। कांगड़ा जिला के निजी स्कूल पहरा की छात्रा अनमोल ने 700 में से 699 अंक लेकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। 7 और 8 मई को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान प्रदेश भर में 42,562 उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन भरे। अभी तक कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 7,396 नामांकन भरे गए हैं। नामांकन पत्रों की जाँच 15 मई को की जाएगी और इसी दिन चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। पंचायत चुनावों के लिए मतदान 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में करवाया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा। प्रदेश के शहरी निकायों में 17 मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो रहा है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पालमपुर में नगर निगम चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। एक जनसभा में उन्होंने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र से मिल रही सहायता को भी सही ढंग से खर्च नहीं कर पा रही है।
3: विधायक यहाँ वर्षों से कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन पालमपुर जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, लेकिन हट करके कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, बड़ी सोच के साथ करना चाहिए। वो स्थिति 15 वर्षों में आ नहीं सकी। हमारा विधायक ना तो यहाँ नहीं था, हमारी सरकार थी। हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का जो है हमारा कोर्ट होना चाहिए, हमने वो कोर्ट आपको दिया। पालमपुर में आकर के आप लोगों ने कहा कि BDO का ऑफिस यहाँ पर खुलना चाहिए, BDO का दफ्तर आपको पालमपुर में हमने खोला, लेकिन कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने के बाद उसको भी डीनोटिफाई करके चलेगी।
1: ऊना जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 3,79,459 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि ऊना जिले की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिले में 1,88,945 पुरुष जबकि 1,84,724 महिला मतदाता हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूल में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप समावेशी और स्मार्ट शिक्षा के दृष्टिकोण को

0: बढ़ावा देना है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्की धूप के बीच बादल छाए हैं। राज्य में मई के दूसरे सप्ताह में भी ठंड बरकरार है और लोगों को सुबह शाम गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का अनुमान है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार के बाद अब पेश है सामयिक चर्चा। विषय हैं सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। वाचक स्वर नविता चौहान।
0: भारत में वर्षा आधारित कृषि, जो कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 60% है, देश की कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार बनी हुई है और कुल खाद्य उत्पादन में लगभग 40% का योगदान देती है। इसकी अहम भूमिका को देखते हुए खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और साथ ही मजबूत वर्षा आधारित कृषि प्रणालियों का व्यवस्थित विकास बेहद जरूरी है। इसी के चलते सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की। इस मिशन को कृषि पर जलवायु में आ रहे बदलावों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और दीर्घकालिक खाद्य और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक पहल के रूप में परिकल्पित किया गया था। इसके बाद वर्ष 2018-19 से NMSA को हरित क्रांति कृषोन्नति योजना के व्यापक योजना के तहत एक उपमिशन के रूप में संचालित किया गया। वर्ष 2022-23 के बाद संस्थागत पुनर्गठन के नतीजतन इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के दायरे में शामिल किया गया, जो टिकाऊ जलवायु अनुकूलित कृषि विकास के लिए एक समेकित दृष्टिकोण को दर्शाता है। NMSA के तहत जलवायु अनुकूल कृषि के लिए एकीकृत नीतिगत हस्तक्षेप राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के जरिए जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देता है। ये जल उपयोग दक्षता बढ़ाकर, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करके और जलवायु अनुकूल कृषि को सुदृढ़ बनाकर सतत कृषि विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देती है। इन प्रयासों को मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन घटक द्वारा और भी बल मिलता है, जिसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना द्वारा समर्थित किया जाता है, जो संतुलित पोषक तत्वों को बढ़ावा देता है और दीर्घकालिक मृदा उर्वरता को बनाए रखता है। वर्षा आधारित कृषि विकास मॉडलों के जरिए सतत कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। ये किसानों की आय और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे संबंधी गतिविधियों के साथ बहुफसली, चक्रीय, अंतरफसली और मिश्रित फसल प्रणालियों को एकीकृत करके एक समग्र दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण देश के शुष्क भूमि और वर्षा आधारित कृषि के व्यवस्थित उन्नयन और प्रबंधन पर ज्ञान प्रदान करने वाले एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान आधारित हस्तक्षेपों को सक्षम बनाकर और विभिन्न एजेंसियों के साथ कुशल समन्वय स्थापित करके वर्षा आधारित कृषि को बढ़ावा देना है। प्रति बूंद अधिक फसल पहल का मकसद स्टीक सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देकर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के कवरेज का विस्तार करने के लिए लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान भी की जाती है। सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों, विशेष रूप से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर पानी के कुशल उपयोग को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। ड्रिप सिंचाई में पार्श्व पाइपों से जुड़े उत्सर्जकों के जरिए जड़ क्षेत्र में लक्षित जल का छिड़काव किया जाता है, जिससे नुकसान कम होता है और संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है। इसके विपरीत स्प्रिंकलर सिंचाई पाइपों और नोजलों के नेटवर्क के जरिए दबाव के साथ पानी वितरित करती है, जिससे वर्षा का अनुकरण होता है और पूरे खेत में एक समान वितरण सुनिश्चित होता है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन स्थान और फसल विशिष्ट टिकाऊ मृदा प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देता है, जिसमें अवशेष प्रबंधन और जैविक खेती शामिल है। मृदा अपरदन और भूमि क्षरण को क्षम करने के उपायों के कार्यान्वयन पर जोर देता है, जिससे दीर्घकालिक मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता सुनिश्चित होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में अनुसंधान प्रणालियों के जरिए कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। NICRA ने जलवायु

0: परिवर्तन अनुकूलन और शमन उपाय क्षेत्रों में किसानों और हितधारकों की क्षमता विकसित करने में एनएमसीए में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लिए स्थान विशिष्ट आशाजनक जलवायु अनुकूलित प्रौद्योगिकियों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम और प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। ये पहल कृषि प्रणालियों की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के मकसद से अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के अनुसंधान का समर्थन करती है ताकि वे सूखे बाढ़ और लू जैसे मौसम की गंभीर घटनाओं का सामना कर सके।
1: अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। 3:10 हुए हैं और आप सुनेंगे फिल्म संगीत। लीजिए पेश है आशा भोसले और शमशद बेगम की आवाज़ों में फिल्म 14वीं का चांद का ये गीत।

फिल्म संगीत में अगला गीत लीजिए पेश है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म सिंगापुर से। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

ये गीत आपने सुना मुगले आजम फिल्म से। आवाजें थी लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की। अगला गीत फिल्म संगीत में आप सुनेंगे

ये गीत आपने सुना मुगले आजम फिल्म से। आवाजें थी लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की। अगला गीत फिल्म संगीत में आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दिल अपना प्रीत पराई। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए FM शिमला के साथ।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ। 3:30 हुए हैं, आप सुनेंगे युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं युववाणी शिमला और मैं हूं आपकी होस्ट आकृति ठाकुर। युववाणी के कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है। आज है 10 मई 2026 रविवार और आज पूरी दुनिया मना रही है मदर्स डे, यानी माँ का दिन। पर क्या सच में माँ के लिए सिर्फ एक ही दिन काफ़ी है? क्या हम साल के 365 डेज उनके एहसानों का बदला चुका सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन आज का दिन हम सब के लिए एक मौका है, एक मौका उन्हें ये बताने का कि वो हमारे लिए कितनी कीमती है, उनके बिना हमारी दुनिया अधूरी है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे माँ के बारे में, उनकी खामोश कुर्बानियों के बारे में, उन आंसुओं के बारे में जो उन्होंने हमारी खातिर बहाए, और उन हाथों के बारे में जिन्होंने हमें थामा और चलना सिखाया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले गीत के साथ।

माँ वो व्यक्ति है जो रात को देर तक जागकर हमारे इम्तहान की तैयारी के लिए चाय लाती है, सुबह जल्दी उठकर हमारे लिए टिफ़िन बनाती है भले ही खुद भूखी रह जाए, हमारी बीमारी में अपनी नींद कुर्बान कर देती है, हमारी हर छोटी सफलता पर निःसंकोच आंसू बहाती है, हमारी हर असफलता पर कहती है कोई बात नहीं बेटा अगली बार। लेकिन दोस्तों ज़माना बदल गया है, आज की माँ अब नौकरी करती है, सपने देखती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है। एक तरफ ऑफिस का प्रेशर, दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियाँ। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो परफेक्ट हो, परफेक्ट प्रोफेशनल, परफेक्ट होममेकर, परफेक्ट वाइफ और परफेक्ट माँ। पर क्या हमने कभी एक बार भी उनसे ये पूछा कि माँ आप थक तो नहीं गए? आज के युवा की माँ उनके साथ कॉफ़ी पीने बैठती है, उनके करियर के बारे में बात करती है, सोशल मीडिया के बारे में सीखना चाहती है, वो बदलना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है। पर क्या हम उन्हें वो समय दे पाते हैं फ़ोन की स्क्रीन से ऊपर देखकर? अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, मदर्स डे सिर्फ गिफ्ट देने का दिन नहीं है, केक काटने का और फ़ोटो लेने का दिन नहीं है। ये दिन है एहसास दिखाने का, उन्हें ये बताने का कि वो आपके लिए क्या मायने रखती हैं। तो आज आप क्या कर सकते हैं? पहला, उनके लिए समय निकालें। बस 15 मिनट ही सही, फ़ोन दूर रखें, टीवी बंद करें, उनके पास बैठें, उनसे बातें करें, उनकी कहानी सुने, उनके बचपन के बारे में पूछें, उनके सपनों के बारे में पूछें जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिए। दूसरा, उन्हें बताएं कि वो परफेक्ट है, उन्हें बताएं कि आप उनकी कद्र करते हैं, उनकी कमियों को नहीं उनकी कोशिशों को देखें, वो हर दिन आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देती है। भले ही कभी खाना ज़्यादा नमक का हो जाए या कपड़े सही से प्रेस ना हो, परंतु ये काम सिर्फ एक माँ का नहीं, घर के हर सदस्य का होता है। तीसरा, उनकी मदद करें। आज आप काम खुद करें, खाना बनाएं, बर्तन साफ करें, घर की सफाई करें, उन्हें आराम करने दें। आपको अंदाज़ा नहीं

कि छोटी सी मदद से उनके चेहरे पर कितनी बड़ी मुस्कान आ सकती है। चौथा, उनके संघर्षों को पहचानें। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, आज हम में से कुछ लोगों के लिए ये दिन बहुत मुश्किल भी हो सकता है, जिनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, जो उन्हें गले नहीं लगा सकते, जो उन्हें कॉल नहीं कर सकते। प्रिय दोस्त, अगर आपकी माँ आज आपके साथ नहीं है तो याद रखिए, वो आपके दिल में है, आपकी हर अच्छी आदत में है, आपकी मुस्कान में है, वो उस खाने के स्वाद में है जो उन्होंने आपको खिलाया था, वो उस बात में है जो उन्होंने आपको सिखाई थी। माँ तू है तो लगता है सब कुछ है आसा, तेरी ही वजह से जीवन में है खासा। तेरे हाथों का खाना, तेरी बातों का प्यार, तेरे आंचल की छाँव में बीता हर दिन है प्यार। ना थकती है कभी तू, ना करती है शिकवा, बस देती है सब कुछ बिना कुछ कहे धीरा। है मदर्स डे आज, पर हर दिन है तेरा, तू है तो मेरी दुनिया, है रोशन हर घर मेरा। बस एक वादा है आज तुझसे, हर जन्म में तेरी बेटी रहूं, तू रहे मेरी माँ बनके। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: एक माँ वो होती है जिसने आपकी पहली मुस्कान के लिए 9 महीने इंतज़ार किया, जिसने आपके पहले कदम के लिए रातें जगी, जिसने आपके पहले शब्द के लिए बार बार वही अक्षर दोहराए। और आज आप बड़े हो गए हैं, आपके पास दुनिया है, दोस्त है, सपने हैं, भागदौड़ है, लेकिन उस माँ के पास बस आपकी एक झलक पाने की चाह है। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

तो युववाणी के प्यारे श्रोताओं, माँ वो पहला शब्द है जो हम बोलते हैं और वो आखिरी नाम है जो हम अपनी मौत से पहले लेते हैं। आज उठिए, उनके पास जाइए, अगर दूर है तो वीडियो कॉल कीजिए, उनका हाथ पकड़िए, आशीर्वाद लीजिए और कहिए थैंक यू माँ सब कुछ के लिए। और हाँ, आज सिर्फ अपनी माँ का ही नहीं, हर उस महिला का सम्मान कीजिए जो किसी की माँ है, चाहे वो आपकी नानी हो, टीचर हो या कोई बुज़ुर्ग महिला। माँ कोई रिश्ता नहीं, पूरी दुनिया है। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल दी वंडरफुल मदर्स। मैं थी आकृति ठाकुर और अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। 4 बजे का समय है और आप सुनेंगे फिल्म संगीत। इंजॉय कीजिए उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में फिल्म विरासत का गीत। बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

करसन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में आप सुनेंगे फिल्म हम दे हम दिल दे चुके सनम का ये गीत। बोल हैं महबूब के और म्यूज़िक दिया है इस्माइल दरबार ने। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

फिल्म संगीत में ये आखिरी गीत आपकी रेडियो सेट्स पर सपना अवस्थी और सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में फिल्म दिल से। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार ए आर रहमान।

ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म चाइना गेट से अलका याग्निक और सपना अवस्थी की आवाजों में। गीतकार हैं अनु मलिक। इंजॉय कीजिए एफएम शिमला के साथ।

इसी के साथ समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अपनी रेडियो दोस्त नितिका शर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप कीजिए हमारी अगली उद्घोषणा का इंतजार। नमस्कार।

हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में आइए सबसे पहले सुनते हैं सिरमौरी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ FM शिमला पर भी सुन सकते हैं।

सो भी सुनने वालों के राम राम। तुम सो आकाशवाणी के शिमला केंद्र साथी और सुन दला गिर सिरमौरी कार्यक्रम।

ਸਿਰਮੌਰੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਤੂੰ ਸੋ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਕਾ ਸਵਾਗਤ ਉਸੋ। ਹਮਾਰਾ ਐਜ਼ਾ ਬੈਗੇ ਬਠੀਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸਪਤਾਹ ਦਾ ਚੀਂ ਦੇ ਸੋ ਓਇਤਵਾਰੇ ਮੁੰਗਲੇ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰੇ ਬਿਆਲੁਕੇ ਚੌਬਾਜਿਓ ਵਿਸ ਮਿੰਟ ਸਾਪੁੰਡਾ ਚੌਬਾਜਿਓ ਪਚਾਸ ਮਿੰਟ ਤੋੜੀ ਤੁਏ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 774 ਕਿਲੋਹਰਟਸ और FM बैंड 106.7 मेगाहर्ट्ज साथ ही DTH और मोबाइल ऐप का शी भी सुने सको। गीत और बातों के यो बेगे बठिया कार्यक्रम दे एतलो मारे बात लाने गर्मी शा करना अपना बचाओ गेरे कुछ देश दुनिया की खबरसार सुन बे और बात लाऊं बे संयुक्त परिवारों के महत्व गाशी और लोकगीतों और नाट्य भी सुन बे पर गाया गया साये कार्यक्रम की शुरुआत करू बे यो विश्व के गीतों साथी ऐसे तो भाई हमारे सिर मोर दे बोईशालों के साजिशे पुंडे ही विशु के मेले शुरू हुआ पर जेठों का भी न लगा और विशु मनाने का सिलसिला ये भी रोके न रोई। जो जो खोंद खोश अपने जुए जी देवकारी जातो रसो से अपने पुराने रीति रिवाज पुरानी परंपरा पुरानी मान्यताएं और तिनकी जुगो बारिशी पुंडे आए जो देव कार्य सतींदे के अनुसार जब खेपी थो ठाटे थो मनाए थो और बनाए थो तींदे के अनुसार विशु मना दे लागे रुए विशु मुझी लिम्बोर देव के नाव का होजुलो देव के नाव को विशु मेलो देव के नाव को और

के साथ ही साथ साठ व्हील और पांच व्हील। शोरी और धुंटी साथी थोड़े खेलो, सोथने और चामड़े के जूते लायो, देव के साजे जोबड़ो दे। कौरव और पांडु महाभारत के जुद्ध दा, जिन्हें धर्मराज युधिष्ठिर का साथ दिया, पांडवाने का पक्ष लुआ, से पाशविल वाले जाने जाओ, और जिन्हें कौरव थोड़ो का साथ दिया, दुर्योधन के पक्ष ता लड़ियो, महाभारत का युद्ध लड़ा, और जो तिनके साथी लड़ने वाले राजे थे सैनिक

एतलो भी महाभारत के युद्ध के चेतावनी तई साठी और पाशी अपमुजी विश्वमुजी धुंटी सोरी सोथण लाइ थोड़े का खेल ठोडे का खेल खेलो थोड़े के निश्चित नियम सो और ठोडा एक ऐसा खेल सो जिंदा नृत्य भी अस क्रीड़ा भी अस और नाट्य भी अस त्रिविध आयाम वाला ऐसा अनूठा जो खेल है से हमारे शिमला सोलन सिरमौर और उत्तराखंड के बाबर जॉन सारदा बहुत ही लोकप्रिय ऐतिहासिक और पौराणिक खेलों से जो खास कर विश्व के मेले था खेला जाओ। हालांकि एबे नए रीतो देखियो नए जमाने दा लोग मनोरंजन ते विशेष मेले मनायो भी थोड़ा खेलो है और विशेष दल बोय दियो थोड़े के जुए से प्रतियोगिता भी थो है पर जो इंदे का मूल संबंध है थोड़े का से तो विश्व मुझे ही अस ऐसे ही धर्मपाल चौहान को गाऊं दो हमारे इस एक गीत सुनो।

विशु की सभी के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सुन बे समाचार, पहली खबर सौ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखवे लगातार बढ़ दी बादल फाटने की जो घटनाएं सौ तिंदा की वैज्ञानिक अध्ययन करियो जांच करने के निर्देश दिए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ताए समाज का जो कमजोर वर्ग सो तिनी मजबूत और सशक्त बनाने तई मिले जुले कोशिश प्रयास करने पांदी जोर दिया। जबकि भाजपा वाले कांग्रेस सरकार गशी झूठी गारंटी देनो और प्रदेशों की माली हालत खराब करियो आर्थिक संकट खड़ा करने का आरोप लाया। राष्ट्रीय लोक अदालतों दा आपसी सहमति शेजुए से 65,000 मामलों का निपटारा हुआ जो एक अच्छे चिनानी उस दिल्ली से शिमला के हवाई सेवाएं एतलोशी पुंडी शुरू हुई। मंगलवार छोड़िया छोई देशों एजीजू सेवाएं से जारी रोंदी, जबकि दोती यानी कि 11 मई से शिमला से धर्मशाला की हवाई सेवाएं भी तीन के भी शुरुआत होंगी। मंगलवार और आतवार छोड़ियो 5 ही देशों एजी हवाई सेवा शिमला से धर्मशाला के भी सुचारू रूप से जारी रहती। अगली खबर सो जे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड है एतलो 10वीं का सालाना परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। यूं बसो 10वीं दे इम्तिहान देंदे 93,176 स्कूलिया बैठे थे, जिनमें से 78,150 स्कूलिया पास हुए, 8,433 स्कूलिया के कंपार्टमेंट आए रहे और 6,559 स्कूलिया 10वीं के इम्तिहान दे फेल हुए रहे। यूं वर्षों का कुल परीक्षा परिणाम 83.77% रुआ जो पछले वर्षों सा बहुत बढ़िया असो। 10वीं की मेरिट सूची दे 107 स्कूलिया जो ऐसे अपना ठाव बनाए थवा इंदी 83 ध्यानटी असो और 24 टोंडकोटे शामिल असो। कांगड़ा जिले के निजी स्कूलों के पहारा स्कूलों के जो छात्र आए जियारो नाव अनमोल असो तीय 10वीं के यो वर्षों के इम्तिहान दे 7699 अंक लयो पहला जो ठाव ऐसे बढ़ाया। अनमोल साथी ही सौ भी स्कूलिया के पास होने की बहुत बहुत बधाई और आने वाले समय दी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और जोन जे कंपार्टमेंट आए रहे जोन जे फॉइल वो रहे तिनी भी हिम्मत ने आननी चाहिए और अपनी जो पढ़ाई ऐसे ज़्यादा मेहनत साथी सुचारू रूप से जारी थोनी चाहिए। अगली खबर सौ प्रदेश का पंच

पंचायत चुनाव ते नामांकन दाखिल करने का दोती यानी कि 11 मई का आखिरी दिन सो नामांकन पत्रों की जांच 15 मई दी आँदे और तुदी ही जो चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार सो तीन के चुनाव चिन्ह भी दिए जाते। पंचायत चुनाव ते मतदान ची चरणों का 26 मई 28 मई और 30 मई का आंदा। मतदान जीशो 7 बजे शुरू होंदा और ब्याल के 6 बजे तोड़ी चलता। जबकि शहरी निकायों दे जो चुनाव से 17 मई दे आंदे और इन्हीं चुनाव ते ही प्रचार अभियान जो ऐसे तेज होयरुआ। ये थी खबर सार और एबे सुनो बे जोगिंदर सिंह हब्बी और साथी को गाउंदे जो बेगे बठिया गीत।

गांव रा जीवना बड़ा बांका, यानी कि गांव का जीवना बेगे बाठिया उस। कारण गांव दे बिशूटे कुड़बे हो, सब रिश्ते इक्की कुड़बे दे पड़ो, और ना केवल एक कुड़बे दे बल्कि पूरा गांव ही एक कुड़बा उस। गांव दो तो ऐसे भी रीतोस ऐसे भी रिवाजोस जे फिरे सौंदवारी नंडिया जो बे खेलो एक थी तो अप मुझे से ऐसे चर्चा चलाओ जब इतरे गोरो दो कारो सोई दो बणीरो तो जैसे सुबह सुबड़िया खाने को बण नंडिया बद्दे झुने ते थड़ियो भी और एक की कागे बैठो भी और गोरो के जियो गोरो के दे नंडिया से डिए त्यो गोरो के स्याणे रोटियारे सब नंडिया खे अपने नंडिये जानिया जुए से ब्याले दुपारिया चैले जो भी ससे क्या हुआ। यानी कि गांव दो एक ही को नंडिया सभी को नंडिया, गांव दा अपने बिगाने का ज्यादा भेद अर्थी ने, कारण रिश्ते के पछाण ओस। इंदा सभी बड़ा कारण सो बिशोंटे कोड़बे गांव दे देखने सुनने के एतलो भी भेटो है, मतलब संयुक्त परिवारों का गांव दा एतलो भी महत्व समझो। जहाँ मैं शहरी ठोड़ो ते जाऊँ जिंदे बड़ी बड़ी आवासीय कॉलोनी बनियो दियोस, बड़ी बड़ी मोहल्ले बने दियोस, एक एक मकान दे तीस तीस चालीस चालीस कमरे हो सो सब किराएदारों से बरें दे और अड़ोसी का पड़ोसी कोई ना थी पता जाए कौन कैथे का हो सो ना तिसकी किए गीण झीख थी और ना ही कुछ की किए परवाह थी। जिस अपने काम में जानो मैं फिर अपनी टोलिए पछुआणो रात बिछाओ करना और रोजोम का ऐसे ही जीवन गाणी उस पापी पेटो के सवाल होते ही नौकरी पेशा करना और जखड़ों किए ऐसे गीण बाण बरतान चेत्या तखड़ों पछु अपने गांव के जन्मभूमि की याद आओ। गांव गड़ो दे सब रिश्ते एक ही छापरो था ही पड़ो जिंदे नाना नानी है एवे तो खैर दादा दादी बोलो ताई चाची ओसो बुआ जी बाईटी दादे भाई ओसो, यानी कि हंसी मजाक जीणा मरना बाण बर्तान सब जो ऐसी एक ही कोड़ बह दियो। आगोड़े तो शोभित थियो क्योंकि हमारे जो संस्कृति है से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी तो एक गौरव का झुणा खुमली माननी खे नाते रिश्तेदारी दा बाण बरतान खे एक भाई बेड़ाला हुआ एक भाई बकराला हुआ एक भाई बुईचाला हुआ एक ही गौरव का जिमदारा देखा एक बायरी पुणा कमादा दो मादा डिया जेने कुड़बे का आए चलाए चलाने ते टोका पैसा कमाए ले आया।

गौरे की सब तिरो ही अपना अपना जिम्मेदारा देखो थी गौरव की नंडिया का पालन पोषण देखो थी। और जुंजा गौरव दे टोंट कोटे होती है सजे बाड़ो दे पाठे पाड़े नवा सूट बांबा और एक भी खड़ा मेला के थी पूरे इलाके का छुन्नी ने। जब तीन की समय दिशा दियो थी तो जो गौरव की तीन की ध्यनटियों से बोणियों थी तो से तीन का सी टोटकिलो लाओ थी क्योंकि जब जाजड़ा बोने जा तब तो जिम्मेदारियाँ जीशो सुत ब्यूजो जोड़ी के बारे खे जानो आंगणा दा जोड़ी का बारा भी छोड़ना और तंगो का छी बैठियो बहणी जो ऐसी टोटकिलो भी लाओ थी बोलो दादे आनी बोटी ठेसरी गई चोटी यानी कि जुन जे नोई है बेपरवाह हो बिशो उठे कोड़बे दे हर खेले मेले ते जाओ थी है जाजड़े बाणियों से भी जिम्मेदार बने गौरव के टोल सांडनी पड़ी। तबे जो तेनी नौजवानों के धनड़िया थी और से जी ध्याणी तब अपने बोई चिटू खेलाऊ थी और जब तिनके जाजड़े बनाया से शौरी दे जाऊँ थी तो से जे बोई चिटू तिनके तैयार हो लोई तिनके शौरी दे जाऊँ तो से जे भी तिनके बोलू थे बोलो बुआ जी तबे लागो पता जब अपने गौरव दियो कथा तो ऐसा बाता एक आपसी प्रेम आपसी सम्मान और रिश्तों के जो महत्व सब से संयुक्त परिवारों दी देखने के बैठो और गाँव दे एतलो भी ऐशमात के बिशोंटे कोड़बे देखने के बैठो जिंदे एक ही कोड़बे दे एक ही छापरो थाई 20-25-30 झुणे रो बस हो और सब रिश्ते तेनिया निभाए भी लुए ननड़िए पौड़े बॉडी भी लागे पढ़ाए भी लुए ब्याह भी लुए और ओके जो समाज के सब नाते रिश्ते से भी निभाए लुए। शहर के जीवन गाणी हमेश में बोल दे जब बुरी हो पर कुछ अच्छी बातों आमो गांव के समाज सी कश्मात कैसे रो बुसो बसो सो से सब सीखने चाहिए। गांव की अर्थव्यवस्था सी असो जे अपनी खेची दे नाज पानी कुटो पिशो अपनो दीव दिन चो अपनो बल दो अपनो गाय अपनी जिमदारा अपना और सभी साथी जो ऐसे दाई बाई साथी भी खेड़े मेले दी सुआ मुई दी हिठो मित्री दी शापुछ भी करनी और बाण बर्तान भी करनी। तो संयुक्त परिवार ईशो ने समझना चाहिए जे जब अपना कुशा तो दूर का बुशा अच्छे देश भी आले रोजगार पैसे भी बन ले पर कुड़बे के पहचान रिश्तों के पहचान तो संयुक्त परिवारों दी ही देखने के बैठो बड़े कुड़बे दा ठाण भी भोईताओ और तेंदे जो ऐसे मौज भी कुछ अपनी ही हो एतलो के समाज के संयुक्त परिवार जरूरत सो जब लोग एकले दुकले रोयो अवसाद के शिकार होए लागे तो आमो संयुक्त परिवारों की कीमत समझनी चाहिए और एक वो यजो अपने जो पुराने रिवाज है से अपनाने चाहिए। सुन बैजे आरु।

आकाशवाणी शिमला वक्त होगा 24:50 और ऐसा वक्त श्रोता तुम्हारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम रा नाव सुधी देरा महास्वी कार्यक्रम।

बोडा मिना असो बर्षोरा रङ ढङ्ग निराला सर्दी गर्मी दुनिरा एहसास कराओ इन्देखे मानना जाला बारिश होली तो शिलो जान्दो बिजे दे गर्मिए मर जाओ एसे एसे कर्तव खेलो एजा मिनाओ बुसाओ ज्यां श्रोताओं बुसाओरा मिनाओं और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं के सब दुपोले देविंदर शर्मा दी पोली शिलुरी दांदू हाथ जोड़ी और ढाल और हमें उम्मीद करो कि तुम जो श्रोता कार्यक्रम सुनते लाग रहे बाद देने ठीक होले और कार्यक्रम रा इंतजार करते लाग रहे होले। श्रोताओं आज 10 तारीख सो और हमारे देशहरी परंपराओं सो जे इथी हर देश कोई ना कोई खासियत हो है कोई ना कोई विशेषता हो है। 10 तारीख और देश भारतीय तो ही दुनिया रे इतिहास सदा हद महत्वपूर्ण असो 10 मई 1857 दी मेरठदु अंग्रेजी हुकूमत रे खिलाफ भारतरा पोल का स्वतंत्रता संग्राम शुरुआत था। एंदु अलावा विश्व स्तर गाए 10 मई 1894 दी नेल्सन मंडेले दक्षिण अफ्रीका रे पोल के अश्वेत राष्ट्रपति रे रूप दी शपथ लोए थी। एंदु अलावा आज यानी 2026 दा आज का देश मदर्स डे रे रूप दा भी मनाया जा लगाओ जो माताओं रे निस्वार्थ प्रेम तोई बलिदानों के समर्पित असो है। आमे जानो जे मारी जिंदगी दा मारे माँ बापोरा सभी दू बुरा योगदान रो माँ सेजी शक्तियो जो आमो के जलम देओ अजो जिंदगी रे हर कदमों दा मारा मार्गदर्शन करो तेनोरा प्रेम निस्वार्थ हो तेनोरी ममता असीम हो माँ ही मारी पोल की गुरु हो जो आमो बोलनो चालनो तोय जीवन रे संस्कार सिखाओ माँ अपने छोटूरी खुशी के अपना सब कुछ निछावर कर दे से त्यागोरी मूर्ति हो धैर्योरी प्रतिमूर्ति हो तोय प्रेरणा रा स्रोत है। महाभारत दा भी बोला गुआओ जे मारे माँ बापोरे योगदानो कदी नहीं भूले जा सकते। महाभारतरो एक श्लोक भी एरी प्रेरणा देओ बोलो गो जे माता गुरु तरा भूमे खात पिताश्च तरस तथा मन शीघ्र तरम वाताश्च चिंता बहुतरी त्रिनाथ यानी कि जो माँ हो से दोत्री दुबी भारी हो है और जो तो पिता हो से स्वर्ग दूते संस्थान ऊँचा हो यानी कि जो मारे माँ बाप हो तेनोरी जो तेनोरा त्याग अपने छोटरी ताई अपनी संतान री ताई तई आमें कदी भी नहीं भूल सकते। श्रोताओं ऐसी थोड़ी सी शुरुआत बातचीत थी शुरू दी और कार्यक्रम रे रूपरेखा तुम को पता ही सो है कि आमें तुम सभी श्रोताओं रा लोकगीत करे तो खूब मनोरंजन कराओ कराओ खबरसार कार्यक्रम रे मुख्य करी रहो एंदु अलावा में कुछ विषय गाए खास विषय गाए बातचीत भी करो और शुरुआत जो करनी हो आज ख्याली राम दीवान तो तेनोरे साथी रे गाए इं प्यारी नाटी साथ है करनी हो।

ख्याली राम दीवाना रे एदा खूबसूरत जे तुए श्रोता लोक गीत सुनो और एबे जुम्हारे बातचीत करने से आज का जो वक्त हो बड़ा नाजुक वक्त सो है, क्योंकि माछ जैसा जेरा जेरा आगु बढ़ता लाग रहा हो, जैसा जैसे से आगु बढ़ लगाओ तेने अपनी जिंदगी दे बहुत सारे नए नए आयाम भी स्थापित

कर ले। लेकिन ऐसी विकासों साथ है तेने कुछ एक ऐसी ऐसी चीजों कर ली हो ना जो आईने वाले पीढ़ी के प्रश्न चिन्ह खड़े कर दे। पर्यावरण प्रदूषण आमे जानो आज के वक्त दा एक गंभीर विषय बन गया हो। इन दो अलावा जो पानी रे बारे दी मारामारी चल रही हो ना से भी कसी दू छुपी नहीं थी। तो श्रोताओं आज हमारे जो कार्यक्रम में बातचीत करने से जल रा भंडारण तो इन संरक्षण हमें कैसा कैसा कर सकूँ इंद्र बारे थोड़ी बातचीत करने हो। श्रोताओं बोलो जाओ जे जल ई जीवन सो है। यो दो तरीका है मौजूद हर जीवो के पानी हद जरूरी हो। यो पृथ्वी रा 71% हिस्सा पानी को रो ढोकान दास हो। परंतु पीने जोगा जो मीठा पानी से सिर्फ 2.5% ही असो है। तिंदा भी ज्यादातर ग्लेशियर अजो दिए रे रूपों दा जमा असो है। जनसंख्या दी बढ़ोतरी शहरीकरण तो जलवायु दे होने वाले बदलाव को रो एजे जो सीमित जल भंडार असो से तेजी साथे घट दे लाग रो। तबे तो जल संरक्षण तो ही भंडारण आज के वक्त दी सबिदू बोड़ी जरूरत भी बन गई हो। जल संरक्षण रा मतलब हो पानी रा समझदारी साथे उपयोग करना अजो तई बर्बाद होने दू बचाना। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि हर नागरिक रा कर्तव्य असो है। अगर हमें आज पानी नहीं बचावले तो आईने वाली पीढ़ी गंभीर संकटों का सामना भी करना पड़ता हो। श्रोताओं एज बात तो है जल संरक्षण कहीं जरूरी हो। अब जो बात करनी हो ये जल रा यानी पानी रा भंडारण कैसा करना हो और कौन से तरीके हमें अपनाए सको। तो जल भंडारणों के कुछ पारंपरिक यानी पुराने तो ही आधुनिक उपाय सो जैसे कि बारिश हो रहे पानी रा संचयन करना हो। छोटो दू गिरने वाले जो बारिश हो रहे पानी हो सी पाइप और जरिए टैंको या जमीनों थाए चाणे हों दे टैंको दू कोठो कियो जा सको है। कोठो कियो दो ये जो पानी सूखो पड़ने रे बोक्ते या पानी री कमी होने रे बोक्ते उपयोग दो लाओ जा सको है। अगला जो बिंदुओं में ध्यान दछाड़ सको से हो तालाबो जोड़ी तो ही बावड़ी रा रख रखाव। गाँव दे आज भी तालाबो जोड़ी तो ही बावड़ी पानी जमा करने रे मुख्य स्रोत सो। एनो साफ छाड़ने हद जरूरी हो। इनो साफ सुथरे छाड़ने साथे इनोरा रख रखाव यानी मेंटेनेंस छाड़नी भी बड़ी जरूरी हो सो है। चेक डैमो चाड़ना भी एक जरूरी बिंदु हो। छोटी छोटी नो तो ही नाले दे चेक डैमो या बांधो चाण्यो ना सिर्फ पानी रोको जा सको बल्कि नोटो या नाले रे किनारे दो माटा भी कटने दो रोको जा सको है। साथ ही जमीनों भीतरा पानी का स्तर भी बढ़ाया जा सको। अगला बिंदु सो ड्रिप तो ही स्प्रिंकलर सिंचाई रा इस्तेमाल। खेचो दी पारंपरिक बाढ़ सिंचाई री जागे ड्रिप सिस्टम लायो 40-60% पानी बचो तो आमो ड्रिप सिस्टम जरूर अपनाना चाहिए। इन अलावा पानी रा पुनः चक्रण गौरव तो ही फैक्ट्री दू निकलने वाले गंदे पानी ट्रीट करो बागवानी फ्लशो तो निर्माण रे कामों दा तो यो इस्तेमाल कर सको। पानी रे संरक्षण के आमे अपने स्तर दो का कर सको कुछ बिंदु ऐसे भी सोए। नल का जरूरत ना होने रे बोक्ते बंद छाड़ना चाहिए। टपकने वाले नल के तुरंत ठीक कराने चाहिए। ब्रश या शेव कर दी बेई मोगरा प्रयोग करना चाहिए। नल का खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कपड़े या बांडे मांजने री मशीनों पूरी क्षमता साथ चलानी चाहिए। आर ओ दू निकलने वाला जो खराब पानी से फूलो दो पौधे दो पानो चाहिए या पोछे लाने के इस्तेमाल करना चाहिए। खूब पेड़ों लाने चाहिए क्योंकि पेड़ों भूमि रे जल स्तर बनाए छाड़ने दी मदद करो। स्कूलों दे पंचायतों दे तो ही मोहल्ले दे जल जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। संक्षेप तो बोलो जा सको जे जल संरक्षण तो ही भंडारण केवल सरकार और ही जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि ये हर नागरिक का कर्तव्य असो। जल संकट सिर्फ आईने आए वक्त री नहीं बल्कि हेवी की भी समस्या असो है।
कई शेरो तो जीरो डेरे कगारो गाय हो जेथा नौ के दू पानी

आईना भी बंद हो सको। अगर प्रत्येक माछ रोज का सिर्फ एक लीटर पानी भी बचावला तो भारत दा साल दा 1400 अरब लीटर पानी बचाया जा सको है। आम याद छाड़ना चाहिए जे बूंदे बूंदे सागर भरियो। अगर आमे आज दुई पानी बचाने रा संकल्प लौले तो आईने आई पीढ़ी जल संकट रा सामना नहीं करना पड़ला। जल है तो कल है ऐसा वाक्य आम हमेशा याद छाड़ना चाहिए। आज की छोटी छोटी सावधानी दूतरे बूढ़े बूढ़े संकट टाल सको तो आमो आज ही संकल्प लोना चाहिए जे जल बचाओ आईने आ कल।

नाई खानी रे हो मेरे संगिया बीजरे काकड़े नहीं खानी रे। ये जी आवाज़ तो हे भी तुम्हें सुने गाने वाली थी शारदा शर्मा। इन्या ठीक बोलो जे बीजरे जो काकड़े हो से नहीं खाने चाहिए, क्योंकि जब बीजरे काकड़े पूरे खाओले तो अजोखे का बोन दो किसी किसी तो वागू काकड़ी जम दियो। और आजकल तो काकड़ी बोने रा टाइम लाग रहा हो, तो अमो बिल्कुल भी बीजरे काकड़े नहीं खाने चाहिए। और श्रोता हूँ एवं जो बातचीत हमारे कार्यक्रम में करने हो से करने हो, जुंजे माछ दुपहिया वाहन चलाओ तेनो कुंजे कुंजे सावधानी बरतनी चाहिए। दुपहिया वाहन चलाने रा अपना ही मजा हो है। गोणे बादलो थोड़ी थोड़ी शेले बागूर और जो 50-60 स्पीड अपना मन पसंद गीत गुनगुना दी भई अपनी मंजिल और इधा आगू बढ़ने का हो बुढ़ो अथु लागू लगो ना। दुपहिया वाहन जट्टा आसान ओसो तेटी ज्यादा ये सावधानी भी मांगो है। श्रोताओं अपने सुइनेरा दुपहिया वाहन गिनना तुम्हारी जिंदगी रा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हो सको है। और तुम्हें कमाई शुरू होंदे ही यही गिनने जो से जी जान दू कोशिश भी करो, लेकिन कोई प्रकार की रोमांचक यात्रा रा आनंद लौना कैटाई भी रोमांचक कहीं नहीं होला, अपनी सुरक्षा के प्राथमिकता देनी जरूरी हो। आजकल कोई युवा लापरवाही दा वाहन चलाने करो सड़क दुर्घटने रिजू अपनी जानों से गंवा दे है। तो भाई तो सुखद सवारी रा आनंद लौने के तू सड़क सुरक्षा विदेशो तो ही रे के बाइक सुरक्षा नियमों दू ठीक ढंग साथ वाकिफ भी होने चाहिए। अगर सेफ रोने हो तो ऐसी कुछ बातों ध्यान दी छाड़नी जाली। गाड़ी स्टार्ट करने दू पोल की कुछ बातों जो आम हमेशा अपनानी चाहिए। हेलमेट जरूर पहनना चाहिए से भी ISI मार के आवा। तीन देरी भी स्ट्रेप बने लानो चाहिए। पाछूधा बोठने आए भी वाहन जरूर चलाने दू पोल हेलमेट लाना चाहिए। और जो दुपहिया वाहन होते ही जरूर चेक करना चाहिए ब्रेक हॉर्न लाइट इंडिकेटर टायर दी जो हवा हो 2 मिनटरी चेकिंग जान बचा सको है। RC लाइसेंस इंश्योरेंस पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी चेक करने चाहिए। और गाड़ी चलाने रे वक्त तरी कुछ सावधानी हो से कुंजी हो जो स्पीड कंट्रोल दे होनी चाहिए। शहरों दी 40-50 जबकि हाईवे दी भी 60 ज़्यादा स्पीड नहीं छाड़नी चाहिए। हिमाचल और पहाड़ी सड़क दी तो और भी कम स्पीड छाड़नी चाहिए। अगला बिंदु जे दुनिया ब्रेकर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तुम्हें सिर्फ पाछली ब्रेक लाओले तो स्कीड भी ओ सको 70% अगली ब्रेक जबकि 30% पाछली ब्रेक लानी चाहिए। साइड मिरर भी देखने रहने चाहिए। हर 8-10 स्किंटो दे बाई धाओ दाई धा लागे दे जो शीशे हो से देख दे रोने चाहिए। ओवरटेक करने दू पोली इंडिकेटर देना चाहिए। मोबाइल जेबोदा छाड़ना चाहिए। कॉल या मैसेज अगर जरूरी हो ले तो रुके करने चाहिए। अगर 2 स्किंटोरी नजर ओटोली तो मानो जे 300 मीटर आंधा सफर पूरा कर पाते तुम्हें। सेफ डिस्टेंस भी छाड़नी चाहिए, यानी कि अगली गाड़ी दू कम से कम 3 स्किंटोरी दूरी होनी चाहिए। अगर अचानक ब्रेक लानी तो टक्कर नहीं होनी चाहिए। श्रोता कुछ ऐसी चीज हो जिन्हरा सख्त परहेज किया जाना चाहिए, जैसे कि नशा करे तो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, शराब भांग दवाई जे ये नीज आ जाए यदि रिएक्शन टाइम अदा कर दे होए। स्टंट तो ही रेसिंग बिल्कुल भी नहीं। शोड़ की गाय हीरो बोनने रे चक्र दे विलेन नहीं बोने हो। ट्रिपलिंग नहीं करनी चाहिए। दुपहियेरा मतलब दू सवारी चीजी सवारी बैलेंस बिगाड़ो है। ईयरफोन हेडफोन वाला प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हॉर्न तो ही एम्बुलेंस वाला सायरन सुनना जरूरी हो है। जो ईयरफोन या हेडफोन लाने करो नहीं सुनीदा। थोड़ी सावधानी जे बारिश और वक्त रोड फिसलन आई हो जाओ जो स्पीड आधी छाननी चाहिए। ध्यान छाड़ना होला जे बारिश अधी ब्रेक को भी कम लागो है। रात्रे वक्त हेडलाइट लो बीम दी छाननी चाहिए। हाई बीमे करो सामने आया के दिक्कत भी हो सको है। रिफ्लेक्टर आए कपड़े पहनने चाहिए। पहाड़ी रास्ते दे हर मोड़ दा हॉर्न बजाना चाहिए। उतर दी भई इंजन ब्रेकिंग यूज करनी चाहिए। क्लच दबाया न्यूट्रल दे नहीं उतरने चाहिए।

स्कूलो निडे बजारो दे हॉस्पिटलो कोए बिशो पोछरे स्पीड छाने चाहिए छोटू कोबे भी भाग्यो आज सो कोए बूढ़े वाहनों दू दूरी बनाया छाने चाहिए ट्रको बसरे ड्राइवर दू ओ सो कोए तो तुम्हें साइड मिरर दू नाई दिश दे हमेशा ये जो मान्य चालने चाहिए जो सामने वाला गलती करता हो तो डिफेंसिव ड्राइविंग ही बचाए सको है सभी दू बोड़ी बात एजियो जो लाइसेंस चलाने दू बचाने के नहीं होंदो चलानो बचाने के नहीं होंदो ए स्किल प्रूफ हो हेलमेट पुल से दू बसने के नहीं होंदो ए मुंडो बचाने के हो सोई चालो ले तो मंजिल भी मिल दियो और जो गौरव वाले भी मुस्कुरांदी भी मिल दियो सुतो ये थोड़ी बातचीत थी और एबे कार्यक्रम रे आखिरी पड़ाव गए पहुँच गए खबर सार भी रो गयो तो पोल की खबर हो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज दसवीं री वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर पाओ इं भई 93,176 छोट हुए एजी परीक्षा दीती थी जैन मुझे 78,150 पास हो 8,433 छोट हुई कंपार्टमेंट आजी जबकि 6,559 फेल हो ऐसा ऐसा परीक्षा परिणाम 83.87% रहा हो जो पिछली सालों की तुलने का अच्छा माना जा लगा हो इं भी दसवीं री मेरिट सूची दे 107 विद्यार्थी अपनी जगह चाणी हो इन मुझे 83 छोटी और जो 24 छोटू शामिल हो सो एक खबर तो ही प्रदेश दे पंचायत चुनाव के नामांकन दाखिल करने का दूत आखिरी दे सो 7-8 मई नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान पूरे प्रदेश के 42,562 उम्मीदवार भिन्न भिन्न पदों के नामांकन बोरे हो हे भी तई कांग्रेस जे सभी ज्यादा 7,396 नामांकन बोरे गए नामांकन पत्र बोलने की जाँच 15 मई दी की जाती हो अजो एसी देश चुनाव चिन्ह भी बांटे जाले पंचायत चुनाव के मतदान 26-28-34 तारीख को दे चिन्ह चलने का कराया जाता हो तो श्रोताओं डेंदे डेंदे एक श्रोता तो ही

ख्यास नहीं हो तो वहाँ कहीं हुजू ही सफलता नहीं चाह वैसे ही तो को हुजू पर ही सफलता मालोच नहीं हो। सफलताओ मतलब ख्याचता जू का कई बोधी तेग रंग गहरा नीच नहीं हो। सफलताओ सही मतलब नीच की मराओ जीवन कुमो संतोष नीमा खुशी गानी मा या तो उद्देश्य गनु पूरा लन्नू हलेआमी ख्याचता ईमानदारीस मेहनत लन्ना मराओ पेरंग रंग समाजू सम्मान लन्ना मुनाऊ संतुष्टता मा दोगी कशा वाकई सफला जितनी हो। वैसे हर म्यू तंगे सफलता खिंची नीज नहीं हो हाले यहाँ ख्याचता खुशी छांगनु तंगेस दम नंबर करनी दो सफलता नीच किसाने नु तंगेस दम फसल बनना दोली सफलता नर्शित आई अमा बोनु तंगेस छांगनु दम भविष्य दोली सफलता नीज नहीं हो। वैसे जीवन कुमो इबरंग असफल ली हाचिम बजनी हो मगर दे रंग मव्यंग व्यंग गलती गानोच सीखे क्या ओम त्वन्ना दो असली सफलता नीचनी हो। कशा म्यू ख्याचता आई देनु ख्या ख्या दो तुलना मला निम्ग्यामिक खासकर मराव छंगानु कभी ली आई दू छंगा रंग तुलना मला निगनी हो। इदें की अमा बोवा ख्याचता छंगानु ग्याला रंस नू छंगा ता वाल दाम दू दाम हुशु दू रिंगो जुस छंगानु कुमो ख्याचता आत्म विश्वास खत्म माचित नहीं हो। दोगा दोक दम हुशु मुका बजाय आए डिप्रेशन ओली बीच नहीं हो। दो बजाय ख्याचता मराओ मेहनत रंग दम कमानो ध्यान छन ग्यामिक सच्चा सफलता ता होदई नीज नहीं हो। दोर मेहनत नीमा ईमानदारी नीमा आई दो मोनाओ खुश नीमा दोपंगी कशा सफलता लोचनी हो। वैसे ही सफलता सिर्फ ईद्यारोई मापोरेस नहीं हो दो तंगेस मेहनत धैर्य रंग लगनु जरूरत नीचनी हो। चाहे ता खुशी में वो दियो बाग बिका रंग किमारी मा जुरियामु मेहनत दियो मेहनत लड़ना दोगी फोलंग पोरेस नहीं हो। हथियामी मुश्किलें दंग मव्यंग तो हो दो गई ओम सोदा सफला चितनी हो। वैसे तोरक चू साम्यो ख्याचता कई मी एको दोखुन हसल सफला चिम ग्याजनी हो। हुजुई वाजे स्तोगा दोक वामंग ओम्पो चितनी हो मगर जू वामंग तरीका सुरुपया सफल हचिमीगु जू दंदोलत बोधी वक्सतंग मटकेजनी हो। कशानु ख्याचता मराओ जगीज जगीज खुशी गानुई सफल मनोयाम ग्यामिक हत जरूरत मंदेनु मदद लनी हथे दुखंगस्या मीनू वन शनिक मराओ अमा बोआनु सम्मान लनिक हुजी जीवाणु चेकुतेक सफलता निज नियो। सफल मी होदई निज नियो अनुली खुश नीमा दोग आई देनुली खुश रन्ना हत्या मनाऊ कुमो ख्याचता गमंड मनी तो आई सोदई ठद म ठद सीखेनु कोशिश लनोनी तो होदई मी दोक सफला चितनी हो। वैसे ख्याचता मराओ जीवन कुमो तेक तेक सपनगा जरूर ख्याम ग्याम गिनी हो लेकिन साथी दम संस्कार रंग दम विचार ली ताम ग्यामी जरूरी निजनी हो। थूलो न सिर्फ धन दौलत कमामी कमयामी जीवनु उद्देश्य मनिजनी हो दम मी हाचिमी गी चेकुतेक सफलता निज मदे। वैसे ख्याचता सफल हाचुमु मतलब सिर्फ नामंग रंग रुपया मानिज नहीं हो बल्कि मोनंग कुमो शांति नीमा पेरंग रंग बेन्नंग मेहनत ईमानदारी रंग संतोष नीज गैमिंग नहीं हो। सफल हचमु रंग एक मराओ रिश्ता गा दियो मराओ स्वास्थ्य दियो दोपंगली ध्यानतामिक जरूरी नीज नहीं हो। वैसे ही होय मनी की रुपया पैसा कमयामू तंगेस मराओ डेंगस्या इजागो माता गैमिंग नहीं हो मोनंग अशांत नीमा डेयांग स्वस्थ मनीमा दोली जो ख्याचता जुसली तेक तेक उपलब्धि गाली अधूरा तक चिन्नी हो। वैसे सफलता ओम हमेशा आसान मनीजनी हो ई बिरंग मेहनत बोधी लन्नी ग्याज

वैसे किनाज की थंग धारों जी से कलाकार तो कुछ चंद्र जमुना नेगी जी कश्ता वैसे सांदा बत्याशे सफल हचुमू यानी सफलताओ मतलब धनी चरिंगो वैसे अक्सर मीगा ख्याचता सफलता पंग सिर्फ हुन दंदोलत ते की मारी मा थ्वा नौकरी गा या तो आई मशहूरी गंद

बस ही कि नाच की थर रोजिशेज कलाकार तो केश गुलवंशी नेगी जी कच्चा दिमा परदेशु खबर सारे लिखी नु रिंग तो परदेशु कुमो पंचायत चुनाव नु तंगे नामांकन दाखिल लनु नसुम आखिरी तैयार दुय तीस रंग राय मायू नामांकन दाखिल लनु प्रक्रिया दौरान प्रदेश भर कुमो निश निज और निश हजार गारो शुमनिज और निश उम्मीदवार खेच खेची पदे नु तंगे नामांकन पंशी तोरुकस्तान कांगड़ा जिलाओ चुकुबोदी तीस हजार सुमराव पनीज सोरुक नामांकन पंक्षित नामांकन पत्रेनु जांच सोमाई मैं हजोय आई हुजुई देर मैं चुनाव चिन्ह आवंटित लंतीश पंचायत चुनावेनु तांगेस मतदान निजो टूक निजो राय रंग निजो साय मई मैं सुम चरणेनु हजोय मतदान सोम तीस बजे शुरू हजिस युमलाय सुम बजे तंग चलया तो आई खबर तो प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड स्तरो साय जमातु वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित लैसित जुबोसंग पनीजाओ सोरुम हजारस इराव सुमनीजाओ सोरुम छांगास जु परीक्षा रैसित जु कुमो सुमनीजाओ साराय हजारस इराव निशनीजाओ साय छांगा दोक पास आचिशित राय हजार पराव निजो शोरूम विद्यार्थी गानु कंपार्टमेंट बसित तंगची ख्याचता टू हजार गाराव निशनीजो सोसगुई छंगा असफल्ली हचिशित होजे परिणाम परीक्षा परिणाम पनीजो शुम दशमलव राय तीस प्रतिशत दक्षिशित युम बोशाऊ तुलनाओ कुमो बेहतर परिणाम बसित बोर्डो अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा अनुसार परीक्षा प्रणाली कुमो हुना कई तेक बदलाव लाइसेद जू परिणाम कुमो सुधारु ताइम बसेद जु कुमो ख्याचता जू दसवीं कक्षाओ मेरिट सूचियो इराव तीस विद्यार्थी गानु जागा जुरियाशिनियो जोर पनीजो सुमरंग निजो पज छांगा शामिल तोच नियो कांगड़ा जिलो ख्याचा इत निजी स्कूलु छेचाच ख्याचता अनमोलस तीसराव कुमो टुकराव पनीजो सोसुई नंबर का प्रदेश कुमो पहला स्थान हासिल लाइसित आई खबर तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 विजेता गानु घोषणा लाइसित देशभर ख्याता चुनियाशित निशनीज और निश पंचायतें जू पुरस्कार पूरा तो पंचायती राज मंत्रालय लोशित की पुरस्कार वितरण समारोह शुम जून में नई दिल्ली दोक आयोजित हजो मंत्रालय कोचंग जू पुरस्कार रंशित जू उद्देश्य पंचायतेनु स्थानीय शासन सेवा वितरण गुमो सुधार कानूरंग सामुदायिक नेतृत्व से पहलुअनु माध्यम विकासु दिशो कुमो प्रगति लनु तंगेस प्रोत्साहित ली लंतिश वैसे जुदा तो के प्रदेशों खास खास खबर सार उन बीमिंग लिखा मुदोनियो यूम सुबेरंग आई की थंग रोंचे रोंची।

भाई सही देशन ने क्यों गिथांग देन ची तो रोक्तु किनो रिंग प्रोग्राम वक्ता हुन हाचे हुन आयदो स्यांग मा हे छुक्षे देसा आऊं इजाजत के किना चेनू नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जाएगा।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष 93,176 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी, जिनमें से 78,150 उत्तीर्ण हुए हैं। 8,433 विद्यार्थियों के कंपार्टमेंट आई है, जबकि 6,559 असफल घोषित किए गए हैं। परीक्षा परिणाम 83.87% रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट।
7: प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की मेरिट सूची में एक बार फिर छात्राओं का दबदबा देखने को मिला है। मेरिट सूची में कुल 107 विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है, जिनमें 83 छात्राएं जबकि 24 छात्र शामिल हैं। कांगड़ा जिले के निजी स्कूल पहारा की छात्रा अनमोल ने 700 में से 699 अंक लेकर प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि परीक्षा प्रणाली में इस बार कई

0: बड़े बदलाव किए गए थे जिसके चलते परिणाम में सुधार देखने को मिला है।
1: इस बार जो बोर्ड की पास परसेंटेज है वो है 83.87%, जो पिछले वर्षों के मुकाबले ग्रेजुअल इंक्रीज है। ये दर्शाता है कि बोर्ड पिछले कुछ वर्षों से लगातार एफर्ट कर रहा है, जिसके रिजल्ट आज देखने को मिल रहे हैं। ये अचानक नहीं है। बोर्ड की जो कार्यशैली है, कार्यशाला लगाने, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, बच्चों के पेपर का स्टाइल CBSE के मुताबिक करने के लिए, साथ के साथ जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाले, जैसे बच्चों को नीट में चाहिए होते हैं, JEE में चाहिए होते हैं, UPSC में चाहिए होते हैं, वैसे हमने पैटर्न भी चेंज करा। और कुछ उनके मस्तिष्क में था, मानसिक तौर पर तैयार थे कि हमारे हक को चुराया नहीं जाएगा, नकल पे रोक लगेगी, इसलिए वो बेटर परफॉर्म कर पाए।
0: स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रदेश भर में 2384 केंद्र बनाए थे। पहली बार परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग भी की गई। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि आगामी सत्र से परीक्षा केंद्रों में ऑडियो वीडियो कैमरों के माध्यम से निगरानी रखने की भी योजना है। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं सुरेश शर्मा।
2: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10वीं की परीक्षा में सफल होने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। मेधावी विद्यार्थियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये परिणाम उनकी कड़ी मेहनत और पढ़ाई के प्रति समर्पण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने इस परीक्षा में असफल विद्यार्थियों को निराश न होने और नए संकल्प व कड़ी मेहनत के साथ दोबारा तैयारी करने के लिए प्रेरित भी किया। प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार जनता में अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनावी वायदों को पूरा नहीं किया है और केवल झूठे आश्वासन दिए हैं। पालमपुर में आज कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भाजपा पालमपुर नगर निगम के लिए स्पष्ट विजन लेकर आई है और इसे आदर्श नगर निगम बनाया जाएगा। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पालमपुर को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर बेसहारा पशुओं, पार्किंग और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पालमपुर में आज चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से पालमपुर शहर का विकास ठप पड़ा है और केंद्र द्वारा स्वीकृत सीवरेज योजना में भी बड़ा घोटाला किया गया है।
3: विधायक यहाँ वर्षों से कांग्रेस पार्टी के, लेकिन पालमपुर जैसा चल रहा है वैसा चल, लेकिन हट करके कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, बड़ी सोच के साथ करना चाहिए। वो स्थिति 15 वर्षों में आ नहीं सकी। हमारा विधायक ना तो यहाँ नहीं था, हमारी सरकार थी। हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का जो है हमारा कोर्ट होना चाहिए, हमने वो कोर्ट आपको दिया। पालमपुर में आकर के आप लोगों ने कहा कि BDO का ऑफिस यहाँ पर खुलना चाहिए, BDO का दफ्तर आपको पालमपुर में हमने खोला, लेकिन कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने के बाद उसको भी डिनोटिफाई करके चले गई।
2: जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार आने पर जनभावनाओं का सम्मान करते हुए ग्रामीण इलाकों को उनकी इच्छा के अनुसार निगम से बाहर रखा जाएगा और शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी व गवर्नेंस विभाग को ई गवर्नेंस की दिशा में किए गए नवाचारों और नागरिक केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। विभाग के सचिव आशीष सिंघमार और निदेशक निपुण जिंदल ने शिमला में मुख्यमंत्री को ये पुरस्कार भेंट किए। मुख्यमंत्री ने लोगों को पारदर्शी, त्वरित और सुरक्षित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए विभाग की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तकनीक और नवाचार का उपयोग कर लोगों को प्रभावी, पारदर्शी व सुलभ सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
4: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के
5: यात्रियों तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
6: दिमाग चार्ज कर अपना।
7: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
6: देखा
5: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
7: अब क्या करोगे?
5: फ्री वाईफाई है ना।
6: बुद्धू सुधर जा।
7: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
5: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
7: RBI कहता है
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए गए, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ FM शिमला पर भी रिले किया गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी शिमला है, लीजिए प्रस्तुत है बिलासपुरी कार्यक्रम।

सभी सुनणर जो बलवान ठाकुर नमस्कार राम राम। तमारा वक्ता संजय ने छः महीने छः मिनट और ये कार्यक्रम बिलासपुरी का जरा वक्त हुआ से ये हुआ छः महीने छः मिनट हर त्वारा जो बुध जो कने शुक्र जो आज जी ऐसे कार्यक्रम जहाँ गलबात करनी कि हैं जी ऐसे अपना रोजगार स्वरोजगार बनाए अपनाई ने जी ऐसे अपना करियर जी ऐसे बनाए सकते हैं और सोगी सोगी गल करनी गर्मी रा मौसम आता इस चाह जो जैसे पानी रा सदुपयोग जैसे करना चाहिदा। जिहड़ी नवीनता जी खबरें से भी लगानी है लोग गीत में लगाई है। देखा अज जे ऐसे पूरी दुनिया च मातृ दिवस यानी मदर डे जी ऐसे मनाया जाए करा हर साल जी ऐसे जिहड़ा मई महीने का दूजा त्यौहार हुआ तो इस चों जैसे पूरी दुनिया च मदर डे यानी मातृ दिवस रूप च मनाया जा। इस दिन जी ऐसे माता जी अपनी हरी माता हुई मौ हुई ती हरी ममता ती हरी करुणा ती हरी त्याग जो याद करने ती है जो है जी ऐसे एक आदर भाव श्रद्धा भाव जी ऐसे प्रदर्शित करें। देखा मावा मेरे बराबर जी ऐसे करुणामयी प्रेम प्यार देने वाला चाहने वाला तो जो दुनिया जी ऐसे कोई नहीं हुंदा या ता एक दिन रखी रहा भी चलो अज के दिन जी ऐसे अहें जड़ा हरी माता का त्याग आ प्रेम आ करुणा है तिसो है जे याद करिए और अपनी माता के प्रति जी असं एक अपना जी आभार जी असं व्यक्त करिए। तो सभी जी असं इस दिहाड़े की जी असं बधाई कार्यक्रम की शुरुआत हाँ लोग दसोगे करनी तिस के बाद जी असं अगली गलबात।

इस ते अलावा भी अगर हाँ जो कोई बड़ा मतलब अगर लोन नहीं लेना हो, ऋण नहीं लेना हो, तो आप यहाँ जी ऐसे अपना छोटे काम करने जी शुरुआत जैसे कर सकते हैं। और जो हमारे हिमाचल प्रदेश आ इस देखा स्वरोजगार जो काफ़ी जो है ज़्यादा लोग जैसे कर रहे हैं, देखा हमारे ऊपरी हिमाचल जैसे बागवानी एक बहुत बड़ा जी ऐसी व्यवसाय है। और हजारा जो नौजवान ऐसे इसने जी ऐसे बड़े गर्व सोगी जी ऐसे जुड़ी रहे और मतलब काफ़ी अच्छा जी ऐसे कमाई दिश कर रहे हैं। सालाना जी ऐसे 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया जी ऐसे कमाए और बड़ी इज्जत ना जी ऐसे इस जो ऐसे कमाए। इस सोगी सोगी इससे जुड़ रहे हैं और भी जी ऐसे काम है कर सकते हैं। जो हमारे नौजवान है सीजे हमारे प्रदेशा जो फल पैदा हुआ है, चाहे ऐसे सेब हुआ, चाहे फिर से नाशपाती वगैरह या नींबू वगैरह जो फल हुए, तेना राहें प्रसंस्करण कर सकते हैं। इन्हें जूस जैम बनाई सकते हैं या इन्हें चिप्स जैसे इन्हें जो स्कूल जैसे बनाई सकते हैं। इसके अलावा देख हमारे प्रदेश जी ऐसे पर्यटन एक बहुत बड़ा जैसे व्यवसाय है और हजारों लोग जैसे इसने जैसे जुड़ रहे भी है। तो आज का जो नौजवान ऐसे पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी ने, यानी होम स्टे वगैरह चलाई ने या इको टूरिज्म चलाई ने या फिर अपना जैसे ट्रांसपोर्टर बिजनेस करने जी ऐसे इस अच्छा खासा जी ऐसे नाम कने पैसा दोनों जी ऐसे कमाई सकते हैं। और जोड़ा पहाड़ी प्रदेश है ना जी ऐसे होम स्टे एक बड़ा अच्छा जैसे विकल्प बनी करा। बड़े बड़े शहरों के जी ऐसे लोग जैसे थी एक अपना एकांत समय व्यतीत करने खातर जी ऐसे आना चाहें। और हमारे प्रदेश काफ़ी ज़्यादा होम स्टे जैसे खुले रहे भी है और सरकार भी जी इस जो जैसे बढ़ावा दे करें। पर्यटन के अलावा ऑर्गेनिक खेती या जड़ी बूटियां की खेती जैसे ये भी एक अच्छा स्वरोजगार आ। ऑर्गेनिक खेती के अलावा जी ऐसे मशरूम वगैरह या सब्जियां वगैरह जिड़ा उगाए ने भी जी ऐसे जिड़े हमारे किसान है किसान नौजवान है से अच्छी खासी जी ऐसे कमाई कर सकते हैं। एक आजकल ये देखा नया और एक बाजार खुली रहा ऑनलाइन मार्केट जी ऐसे तो हैंडीक्राफ्ट या फिर ऑनलाइन मार्केट के माध्यम से हैं जिड़े हिमाचल च बना, चाहे ऐसे सॉल आ, चाहे ऐसे चंबे रुमाल आ, इस तरह के जो ऐसे चीज़ा जी ऐसे ऑनलाइन माध्यम से अपनी बेच सकते हैं और अच्छी जी ऐसी कमाई हमारे नौजवान जी ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा खेती बाड़ी जो जुड़े व्यवसाय चाहे ऐसे डेयरी हुई या चाहे मुर्गी पालन हुई या इस भी जी ऐसे नौजवान काफ़ी ज़्यादा जुड़ी भी कराएँ और अच्छी खासी जी आमदनी से कमाई भी जी ऐसे करी कराएँ। देखा ये जो स्वरोजगार आ ये आज के जो वक्तर इसे जरूरत थी, ये ना सिर्फ हाँ जो जी ऐसे ये आर्थिक रूप से आज़ादी दे हाँ बल्कि हाँ जो अपने फैसले खुद लेने खातर भी जैसे प्रेरित करा और इस खातर जैसे ताकत भी जी ऐसे हाँ जो दे हाँ। अगर हाँ ले को अच्छा हुनर आ या फिर अच्छे हाले आइडिए ता तीसरी बदौलत जी ऐसे अच्छे अच्छी खासी जी ऐसे ही आमदनी जैसे कमाई सकें और अच्छा एक सफल जी ऐसे कैरियर बनाई सकते हैं। स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनना ये सिर्फ हमारे अपने खातर ही नहीं अपने परिवार के खातर नहीं बल्कि जो हमारा समाज है इस खातर भी जो ऐसे एक गर्व की गल हुई और आए जो ऐसे इस माध्यम से जो ऐसे अपने समाज जो भी अगे बढ़ने जैसे एक मौका जो ऐसे दे। तो ये छोटी गलबात थी एक लोकगीत हाँ और लगाना सुनाए लोकगीत।

लोकगीत गायक रहे हैं बसंत लाल ठाकुर होरी। गल हाँ करनी जेडे गर्मी मौसम आ इस चाह जो जैसे पानी की बचत करनी चाहिए, इसो जी असें प्रदूषण से बचाना चाहिए कि इस तरह सदुपयोग जी असें करना चाहिए। देखो गर्मी का मौसम जैसे शुरू हो ही गया और साल हुआ कि इस मौसम जो असें पानी की किल्लत हो जाए गाँव भी शहर च भी हर जगह जो असें जेड़े हरे प्राकृतिक जल स्रोत है जिन्हों पर जो असें ज़्यादा दबाव पवान कने उत्थे तो पानी जो असें तिना पहले घटियाँ और फिर जो सप्लाई उत्थे जो ज़्यादा होंगी रही इस तरह जो असें पानी की कमी होने जो असं खतरा रहे हैं तो हाँ चाहता भी जो गर्मी का मौसम है इस चाहे पानी का सदुपयोग करिए इस जो असें थोड़ा ढंग ने जो अं बरतीए हर प्रदेश नदियाँ ही झरने या जो पहाड़ियाँ ही इतने काफ़ी जो असें पानी आवा लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा भाई गर्मी ज़्यादा हो रही बरखा तजे हुई तो बड़ी पर हुई है या फिर होंगी नहीं जंगल जो ऐसे विकास की वजह से कटाई हो रही और जोड़ा जनसंख्या दबाव आ इस वजह से जो ऐसे संकट जो ऐसे महसूस हो और

बरखा तजे होनी तो बड़ी पर हुई है और या फिर होंगी नहीं, जंगलों की ऐसे विकास की वजह से कटाई हो रही और जरा जनसंख्या दबाव आ इसी वजह से जो ऐसे संकट जो ऐसे महसूस हुई हैं। और सारे जाने हैं कि पानी जी ऐसे केवल हाँ सुविधा नहीं बल्कि हर एक जीवन का आधार है। पानी बगैर जी ऐसे अहें कुछ दिन जो जिंदा नहीं रह सकते, अगर पानी नहीं होगा तो आदमी का रहना जी ऐसे बड़ा मुश्किल है। और गाँव चाहे देखा है कि अगर नलकिया पानी नहीं आओ तो बड़े दूर तक जी ऐसे पानी लाने पवा, जो प्राकृतिक स्रोत आ रहे चाहे ऐसे बाइया बौड़ियाँ चश्मे या नहाने मतलब सेहत ना बजे ऐसे तेनारा पानी सुकन लगी हाँ, और जे ऐसे फिर पानी की कमी होना शुरू हुई है। और इसी तरह जो खेती होगी और पशु पालन खातर या रोज़मर्रा खातर जो ऐसे पानी की ज़्यादा जरूरत होने की वजह से पानी जो ऐसे कम जी ऐसे मिलना शुरू हुई है। तो इस मौसम जहाँ जो जो ऐसे पानी का सदुपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करने अभी थोड़ा किफायत ने जी ऐसे हाँ जो पानी का बर्ताव करना चाहिए और नलके हाँ अगर पानी आए भी करा अच्छा तो हाँ जो ऐसे तो ज़्यादा व्यर्थ नहीं जो ऐसे गुआना चाहिए। नलके खुले छड़ने पाइपों ने जो ऐसे अंगना जो या गड्डिया जी ऐसी सफाई नहीं करनी आई और जरूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल जो ऐसे करना है सब बर्बादी हुई। तो छोटे छोटे प्रयास करने तीन जे बई मतलब पानी का बचत करनी हाँ बाल्टिया ने नहाना मतलब बर्तन धोने खातर कपड़े धोने खातर जो ऐसे घट पानी लगाना और अगर हमारी पाइपा से जो ऐसे पानी रिसाव हो रहा तो इसको रोकना एडे अहम छोटे छोटे प्रयास जो ऐसे करें बचत पानी की करी सकते हैं। हमारा देश जैसे खेती प्रधान देश है तो इतनी जी ऐसे फल सब्जी खातर भी अहम जी ऐसे फसल लगाए तो तिथि भी पानी जरूरत हुई तो खेतों भी पानी यहोजे ऐसे व्यर्थ नहीं गुआना चाहिए। ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकल जी तकनीक इतने माध्यम से जी ऐसे अहें कम पानी देने भी जी ऐसे अच्छी सिंचाई करी सकते हैं। और बरखा का पानी आ ये यहाँ जो बचाना इस खातर जो ऐसे रेन वाटर हारवेस्टिंग टैंक हुए हैं से जरूर जो ऐसे यहाँ जो बनाने। और इसके अलावा एक बड़े स्तर पर जो ऐसे यहाँ जो जंगल का कने पेड़ का संरक्षण करना, क्योंकि इस नाते जो ऐसे अच्छी खासी बरखा जी ऐसे वहीं और जमीन जो ऐसे नमी भी ऐसे बनाए रखा है तो जंगल की रक्षा करनी और इसते जो ऐसे हमारा पानी स्रोत जो ऐसे सुरक्षित रहने। अज जरूरत है गल्ला रही कि पानी अहें जी ऐसे पानी की इक्की की बूंदा का महत्व समझिए स्कूलों च पंचायती च या फिर समाज के स्तर पर जी ऐसे जल संरक्षण के प्रति जागरूकता जो ऐसे हाँ जो फैलानी। अगर अहें अज पानी बचाएंगे तो जी हमारी आने वाली पीढ़ियां आई हैं तिना जो जी एक सुरक्षित भविष्य जी ऐसे मिलना बोला भाई अगर जल आ ताई जी ऐसे कल आ तो अगर अहें जल सुरक्षित करके सुरक्षित रखिए ताई जो हमारे भविष्य से सुरक्षित जैसे रहना। ये छोटी एक गलबात थी जी खबरें सिविल लगानी हाँ तुम्हारा खबर है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जैसे आज 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया। इस साल जो ऐसे बोर्ड परीक्षा च 93,176 विद्यार्थियों जी ऐसे परीक्षा दी थी। इन्हों चाहते 78,150 विद्यार्थी जी ऐसे पास यानी उत्तीर्ण हुए। 8,433 विद्यार्थियों जो जैसे कंपार्टमेंट आई जबकि 6,598 विद्यार्थी जैसे इस बार असफल रहे। इस तरह ये बोर्ड का परिणाम आ ये 83.87% रहा। इस बार जी ऐसे मेरिट सूची च 107 विद्यार्थियों अपना स्थान बनाया। इन्हें 83 लड़कियां कने 24 जी ऐसे छात्र लड़के हैं। कांगड़ा जिले निजी स्कूल पारारी छात्रा अनमोल ने जी ऐसे 600 च 699 अंक लेने जी ऐसे प्रदेश च पहला स्थान जी ऐसे हासिल किया। ये खबर थी खास तो चलते चलते एक लोक गीत और लगाना तो सुने ये लोक गीत।

लोकगीत सुने हैं, गायक रहे हैं अभिलाषा शर्मा और तो इस लोकगीत सो की जरा बिलासपुरी कार्यक्रम इस रवि होना समय भी करा तो सब ने सुनने इजाजत लेंदे नमस्कार।

दी आकाशवाणियों शिमला केंद्र शु स्वंगलो प्रोग्राम रेजा के नर भत्ते दी मोड़े दी बाड़े दी ऐके नर सेहना दी केंदी भत्ते दी गी प्रोमलो तरफे राम राम जुले जी सादी रे तोगल स्वंगलो प्रोग्राम अरी स्वंगलो रूठे रूठे गीत गुरेर केंजी रेटो नी दीरा सादे इमिना खास खास खबर लकेंदा सादे शपोग त इफोगल गप्पा अनुशासनो पाठी छरिकु जी हिंज भत्तेज ने निकी भई जिंदगी रि दुए मी सफल छु बितार छा दुए मी एनो जिंदगी रि त्रक्यू आमरी तूखनी ई बितार छा औजी अनुशासनो अहमियत छू जा त दी ए गप्पा की भई दी पाठी गलगप्पा केंदा सादे जरूर शपोग दीरा सादे सादे विज्ञानो पाठी ल गलगप्पा शाजी एर तो की वक्त रि आईने जरूरी तो छरिकु जी विज्ञान तो की वक्त रि हे नरमीदु जिंदगी अहम हिस्सा बने गिल जितो दी आधुनिक युग भत्ते बे मोड़े बरदान हेंजी माने छदनी तांत तो की दी खर को युग अभी हेंजी विज्ञानो युग ल कुर्दनी छरिकु जी हे नरमीदु जिंदगी रि इच्चल ध्यान रो क्षेत्र बचेगी माँ आवर्तिक विज्ञानो असर मशूरी विज्ञान है नरमीदु जिंदगी योजी बणाठी रा सादे रूठे बणांगी केश्ता दो दिगा पल हेल्ले की भई दि विज्ञानो पाठी सफल नतीजा ल हे नरमीदुए तंगन्यू ए तर्को कमाल छू त दि पाठी ल गलगप्पा प्रोग्रामो विजा केंदा सादे जरूर शपोग सादी रे दीरा सादे सादे केंज बातिज ने निछाना तोक्षु मातृ दिवस त बत्ते दीदी आईने बधाई रंजी जुम्बोग छरिकु जी दी आईने खास ध्याड़ा शु हिंदू भत्ते दुथल जी या भी आदरे दारंजिम ध्याड़ा शु छप्पन गुडले मी ध्याड़ा शु हर म्यू जिंदगी रि हेनर भत्ते मी दु जिंदगी रि या कुछ मना अमा दुशु औंजी एनो कड़ू दु हर खरी बरदोरिये सुखरी दुखरी हमेशा दुई साथ रन रातो एनो छा गर्ज में सेवाल हजा तो दुई दा ले रसा दे रूठे टेहल हजा तो रूठे संस्कार रन रातो या ही हमेशा कड़ू दी सही आम कांडी रसा दे जिंदगी री हमेशा तूखनी बड़े पिम प्रेरणा रन रातो तांत तो की दी खास दयाड़ई हिंदी हिंदू आमाऊ या उत्यागे दाव ही दिलाचा हेल्लेरी हिंदू आऊ या तो दुर हिंदू आमा तो छरिकु जी या दू शब्द शु छरी कुरी रसा दे हिंदी इत शादे छो दाव भावना हिंदू सेमरियां जातो तन हेल्लेरी की भई या उठारी दी दुनिया बातें बेजरंगी शुभी तांत हिंदी बातें दी पूरे जिंदगी हिंदू याओ आदर ले जूं शिशु अमाओ आदर ले जूं शु छरिकु जी हिंदू याओ दा जिंदगी हिंदू जिंदगी भत्ते बे मोड़े हिंदी ताकत माने चनी त छन गलगप्पा प्रोग्राम बीजा शुआ लहदो सादी रे तो प्रोग्राम मुंडरी हिंज रेजोनी पालमो सादित सक्सी दी गीत

जी, स्वंग लोता धरती हो देवता तु देशाशु। आई ने रूठे रेरा जिन जी गीत केंजरेश तनी विज्ञान हो गप्पा के दसा दे शज लिखते साधी रे छना गप्पा कुड रे लिख तो कि भाई आऊ विज्ञान हो पाठी सफल नतीजा दु गप्पा हैं जिला दनी तदी हे नर मी दुए तंग नि हुए तर को कमाल छू दिल्ले हेले गप्पा कि भाई तो कि वक्त हे नर मी दु जिंदगी उदी इच अहम हिस्सा बने गिल जी तो आऊ गड़ी हैं जी हैं दू मी दो तंग न्यू कमाल कुर्दन चाहे त छाना के जे खाने की भाई कुदरत ए दी धरती बना के दे सदमा ए दी धरती बना के दे तो मी देरती एनो ब्रे मिथाल जी घर बार अर बना दो सड़क अर बना दो री दंग रे बना गी अन्न पैदल हतो सदमा ए तू मेरी ती रन दो तो मी दू ती रनी री दंग रे तीजी में कम ला जी एनो थल जी फसल पैदा लही मी कम ले लतो दी ए ती रनी लाइटे छाना आऊँ ती तो धीर ने लाइट बना गिते उद्योगो क्षेत्र रे क्रांति हंदो सद मई इत रूप लंदुलो बनाएक दे त मी दुए आऊँ लन तो लाइटो जीरे घर बारो आऊँ पूरी तो दो आंद्रे हंजी दो आनंद लेपच दो सद मई हेंदी खुला तींगी सर्ग रंदो एगे लाजाएं कर्जे रंदो पर नेस लसीगा पमी उपेरी छान धरती उबरेई दो विज्ञानो दलते हेलीकॉप्टर जहाज नोर बनागी सरगरी जोई ठारे शैल जा तात हेन जी तो की दिखर को युग अभी विज्ञान युग कुर्दानी दिगप्पा हफ्सी मस्त छरी कुछ तो की ध्याड़ अरे विज्ञान हेन्दु जिंदगी थल जी धोन जरूरी शुजील जा कि भई दिमे त हेन्दु मी दु शी मी हफ्सी गप्पा उठो शुजुआ हेन जी विज्ञानो दलते तेया पाठी सुखो चीज अर बना गी केशता दानी दी हेन्दु जिंदगी।

जी गीत के जरिए तनी तीन नन से शू जाना हो मेरा सांगा डोलुमा। इमिना खास खास खबरर प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड तोकसाऊ परीक्षा नतीजा हुंजिके तो दिसाल पिनीजो शशुम हजार राउटो शुमनीजो सत्री पढ़े चाकड़ुस दी पेपर अंदिर त दी दुबीजा शुमनीजो सारे हजार राउटो नींजो सा कड़ुर पास चुतुर रे हजार पीराउटो आऊँ कुजमा निजो शाशुम काड़ू दू कंपार्टमेंट अंजा छान कांड्रे लेक तो दो रे हजार पीराउटोई निजो शाशुम काड़ू दू कंपार्टमेंट अंजा त त्रुई हजार गाराउटोई निंजो सस्कू काड़ूर फेल चुतुर ध्यारी परीक्षा नतीजा पिनीजो शुम दशमलव रे निज प्रतिशत ब्रंत आऊँ इल्जा साल यंग बेजी रूठे बेहतर माने साई भी लेगी तो बोर्डो अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा मुताबिक परीक्षा प्रणाली रीति फिगीते या मोड़े बदलाव वर्षुते ध्यारी नतीजा री सुधार खंडिर खोसित दीपिगी साउ कक्षा मेरिट सूची री राउटोई निज काड़ूरान दुर त दीरी पिनीजो शुम पढ़े चा मेजिम काड़ू रे निजो पी गंग काड़ूर शामिल तो दुर कांगड़ा जिलाऊ निजी सकुल पहराव पढ़े चा मेजिम काड़ू अनमोले नीरा नीछन आऊ नीरा अंक तो दुर्चिनी त्रु राउटोई पिनीजो सस्कू नंबर लेप ची प्रदेश दुई मुंडो ठारे रिदू ब्रैत ता छन प्रदेश पंचायत चुनाव आऊँ तो दो थल जी नामांकन दाखिल लेमी मुदा लास्ट जाशु निजे रे मायरी नामांकन दाखिल लेमी प्रक्रिया री पूरे प्रदेश नी निंजो जुड़ हजार गरा उटोई शुम निजो जुड़ उम्मीदवार अजते या कुर्मा शादी शादी ठारी थल जे ना दू नामांकन पिंग दोर त नामांकन पत्र जाँच संग मायरी शोदो त दिए ध्याड़ा में ती चुनावो चिन्ह कुर्मना सुनाल फासा योदो पंचायत चुनाव थल जी बोट निजो त्रुई निजो रे आई तुरा निजो सा मायरी शुम चरण रिशोदो बोट मुंजे सात बजे नी चू साते नीर तीन बजे तचे चालेप दो त गप्पा शाज देख के दसादे दा अनुशासन ओ पाठिल शाज जुम बोग चेरकुज अनुशासन शु हिंदू देशो जान अनुशासन अरि ब्रेम परमा शु भी देशो कल्याण दिम्यु जिंदगी रा सादे कुर्मा गुड़े गुड़ डाफ्राते चाले पी हिंदू जिंदगी रि अनुशासन आईने जरूरी शु दिवजा जी हेनार हिंदू जिंदगी रि तू खनी भी तरसदनी दीदु धन छू छई मी आईने सुखी बनाट्रा आऊँ मी एनो कुर्मा पूरा जिंदगी अनुशासन ब्रवाते एनो ध्याड़ा कड़ेट्रा दोषी मी आईने रूठे सफल बने गया अनुशासन हिंदी हर पाठी रूठे सही फैसला ले मी ताकत रन रहा दोई हिंदी इज्जतो जिंदगी शी मिमल अमकन रहा छन गप पाए तो कि भाई दी शुची हर ठारी हर संस्थाए सबाद भत्ते नियम अदू टोज चालिपी हिंदी अनुशासन कुर्जन छरिकू जी अनुशासन हर कम योज बना के दी हिंदू सेम ले हिंदू वशर तजिम कमला त ने लसी गप्पा दी आईने जरूरी शुभी छन गप्पा लहादन की बया अनुशासन टोयजी चाले पी मी त मुंडु मुंड त दीव टोयज चाले पी खरे चेसी पर सूले सूले दी हिंदू जिंदगी इच हिस्सा बनेगी भी दीव पालन लज्जे हिंदी हिंदू दिहाड़ा रूठे रसा दे कड़े तरसी हिंदू कम ले मी पाठी लाई ने सेम ले बिठारे शाही भी सा दे दी हिंदी हिंदू कर्तव्य हक कोल ज्ञान रन जी अनुशासन इच मी उम्मीद भेगिल बना के रचर कुछ दियू टोज चाले पे परमा इच मी उम्मीद नजर रूठे सजे मी बने गया अनुशासन हिंदू जिंदगी री रस पैदा लहा घरों टबर दी तेनी शाह से छिक प्रदेरा नि बचाचा तात अनुशासन हिंदू जिंदगी शु दियू भत्ते बे मोड़े दुश्मन हेंजी शप्पा दुगा पल्ला दिन सहित हिंदू मी दू सेम चंचल शु बिशु रे मी जी उई दू कुशी गप्पाओ आ रेल लेखा मके जातु दूर दो दू दीव टोय सोच शू जातो कि भाई दी एनो मना ता आईने चेस्ता दो ग्यू टोयज रोब चलासा गी दी काम ता आ रेल मल हो दोस्त चे जातो दुर कि भाई दोई दो टोयज रोब झाड़े चा दुद्धप काच लेगी तो पर दी हिंदी दीव अहमियत शू जी आईने जरूरी तो छरिकू जी आवर्ती अनुशासन मा शुई दौर तिक छाल माओ बरबर छरिकू रे फिगी मी दू सेम दिगा पान जातो कि भाई गीत दीव गुलाम शुजील ता दीव हिसाब शी मिले बा दी रूठेगा पा मस्त छेरिकू जी आवर्तिक अनुशासन शुई दौरती गे तू खनी इबी मी आम एन्ने हुंजा अनुशासन मशुर से दौरतिक मी हमेशा है थलका निकेशाई भी तुग हिंदू समाज जुड़ पाठी मीर तो दुर त इच मी जी कुर्मा उदू जी हु जूरी लही चेज दुर अनुशासन आई मी जी दीऊ अहमियत शूजा त दी कौन की भाई गप्पा कौन की भाई आवर्तिक अनुशासन शुई दौरती गे जिंदगी शु पढ़े चाकाड़ू रो मुंशीर राजा शुई या दुर प्रजा इच आम

और चीनी लेकर सत्ता और हाकी दी तचे अनुशासनारी ब्रेंगे लेवी देरतिक तच की प्रकृति ल अनुशासनारी बंधेक ते चले पी कुशी लता दौर साधी रे की भई आऊं घड़ी लाउनी केंजी व शर के दुसेम ताय सीखे पितरफुन केंजी सही अनुशासन ती ये गलगप्पा रसादे सुशीला ए सादित सक्सी आई तु गीत हेंजरे जोनी।

जी गीत के जरिए तनी सोई सोई लाना चलिक पियो स्वंगलंग दिए गीत आ रसा दे तो की स्वंगलो प्रोग्राम वक्त लियो सही जा लेपोगी इजाजत राम राम जुले।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को हमारा नमस्कार। आज के इस अंक में मैं हूं गुलवंत
1: और मैं हूं लेखराम शर्मा।
0: लेखराम जी, कैसे हालचाल है?
1: बहुत बढ़िया है गुलवंत जी, और उम्मीद करते हैं कि आप भी तंदुरुस्त होंगे और हमारे सभी किसान और बागवान भाई बहन भी स्वस्थ होंगे और अपने खेती बाड़ी और बागवानी के कामकाज को भी सही तरीके से निपटा रहे होंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो देखिए गुलवंत जी, जहां तक बात है आज के कार्यक्रम की, तो आज

0: कार्यक्रम में आप किसान भाइयों के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं?
1: देखिए, आज हम अपने किसान भाइयों को काम की बातों के तहत जानकारी देंगे सिंचाई की विभिन्न विधियों के बारे में, और साथ ही पहाड़ी लोकगीतों से मनोरंजन करेंगे और एक जानकारी पूर्ण रिकॉर्डेड कार्यक्रम के तहत बातचीत सुनेंगे जिसका विषय रहेगा मौन पालन में स्वरोजगार की संभावनाएं।
0: अच्छा जी,
1: और बातचीत में भाग लेंगे डॉक्टर ज्ञान वर्मा और उनसे जानकारी हासिल करेंगे निशा। और कार्यक्रम के अंत में हम अपने किसान भाइयों को कल के मुख्य आकर्षणों की जानकारी भी देंगे।
0: जी बहुत बढ़िया, तो देखिए काफी अधिक जानकारी से भरपूर आज का ये कार्यक्रम है किसान भाइयों, तो आप इस कार्यक्रम में निरंतर जुड़े रहें।
1: बिल्कुल।
0: तो गुलवन जी, जैसा कि आपने किसान भाइयों से जिक्र किया कि काम की बातों के तहत आज जो हमारा विषय है वो है सिंचाई की विभिन्न विधियां कौन कौन सी रहती है उसके बारे में।
1: बिल्कुल,
0: जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए गुलवन जी, हमारा जो किसान है वो सफल किसान वही माना जाता है जिसके पास अपना जो पानी की सिंचाई की व्यवस्था है वो सही है।
1: बिल्कुल, देखिए वैसे आजकल मई महीना प्रगति पर है, कई जगह बारिशें खूब हो रही हैं तो कई जगह सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे मौसम में हमें अपने खेतों में जो लगी फसलें हैं उसके लिए सिंचाई का प्रबंध करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल जी, तो देखो अगर हम अपने प्रदेश की बात करें गुलवन जी, तो हमारा जो अधिकतर क्षेत्र है हमारे प्रदेश का वो ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरह से वर्षा पर ही निर्भर है।
1: बिल्कुल,
0: और जहाँ पर तो किसान भाइयों के पास अपनी सिंचाई की व्यवस्था है वो तो समय पर अपनी जो सब्जियां हैं, बागवानी का काम है वो निपटा लेते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन जो क्षेत्र ऐसे हैं असिंचित क्षेत्र हैं जहां पर सिंचाई की सुविधा हमारे किसान भाइयों के पास नहीं है, तो उनको तो पूरे तरीके से देखो जी वर्षा पर निर्भर रहना पड़ेगा। और इस बार तो देखो भगवान जी की ऐसी कृपा है, समय पर यानी हम कहें कि बेमौसमी भी बारिश हो रही है, तो हमारे किसान भाइयों के सामने ऐसी दिक्कत परेशानियां भी आ रही है क्योंकि देखो गेहूं की फसल एक तरफ तो तैयार होने वाली है, तो अगर बेमौसमी बारिश हो जाए तो हमारे किसान भाइयों गेहूं की घाई का काम है, थ्रेश कटाई का काम है, उसको निपटाने में दिक्कत परेशानी हो रही है।
1: बिल्कुल।
0: और जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है तो वहां तो हमारे किसान भाइयों के लिए फायदा है जी।
1: देखिए आजकल हमारे जो किसान भाई हैं कई तरह की पनीरी अपने खेतों में लगाई है, तो सुबह शाम तो सिंचाई का प्रबंध करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: ताकि जो पौधों की बढ़वार है वो समय पर पूरी हो जाती है और फसल भी अच्छी होती है।
0: बिल्कुल जी।
1: लेकिन कई जगह ओला और जो बारिश हो रही है वो काम खराब कर रही है।
0: बिल्कुल। तो गुरुवंश जी देखिए, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है।
1: बिल्कुल।
0: कृषि उत्पादन में जल सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है, टिकाऊ उत्पादन के लिए जल का विवेकपूर्ण प्रयोग करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है
1: जी।
0: और इतना ही नहीं, किसान भाइयों की बढ़ती हुई आबादी और घटती प्रति व्यक्ति भूमि और जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की जो जरूरत है और भी बढ़ जाती है। हमारे देश में जल संसाधनों की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, फिर भी सिंचाई और जल उपयोग की मात्रा कम है। वर्तमान विकसित जल संसाधनों के दुरुपयोग के कारण जल की कमी और बढ़ती हुई चुनौतियां हमारे सामने निरंतर बढ़ती जा रही है
1: जी। और किसान भाइयों, कृषि योग्य क्षेत्र वर्षा पर आधारित है, बहुमूल्य वर्षा जल को परिस्थिति के अनुसार फसल में ही नमी संग्रहण विधियों द्वारा अथवा अतिरिक्त फालतू बह रहे जल को संग्रह कर पुनः फसल में अधिक उत्पादन हेतु जीवनदायिनी सिंचाई के रूप में उपयोग करना चाहिए
0: जी।
1: और जलवायु की विषमता और प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंध न होने के कारण इन क्षेत्रों की उत्पादकता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और इन क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि की उन्नत तकनीकें अपनाने की अति आवश्यकता है।
0: बिल्कुल जी। और देखिए इसके साथ किसान भाइयों के सिंचाई के समय के अंतराल को निर्धारण करना एक जटिल कार्य माना जाता है
1: जी।
0: और सिंचाई के लिए उचित कार्यक्रम और समय सूची प्रत्येक कृषि जलवायु क्षेत्र और मृदा यानी मिट्टी की किस्म के लिए खेत में व्यापक प्रयोग करने के बाद बनाई जाती है
1: जी।
0: शुष्क ढलानदार क्षेत्रों में मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक और चिकनी मिट्टी की मात्रा अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम होती है
1: जी।
0: जिससे फसलों के लिए मिट्टी की नमी धारण क्षमता कम होती है, और शुष्क क्षेत्रों में ऐसी स्थिति में मृदा नमी संरक्षण की आवश्यकता होती है। इन क्षेत्रों में भूमि को समतल बनाकर भूमि में जल प्रवेश की गति में वृद्धि लाकर और फालतू बह रहे पानी का नुकसान कम कर भूमि में ही नमी संरक्षण करना होगा
1: जी।
0: भूमि को संतृप्त करने के लिए अतिरिक्त वर्षा जल को उपयुक्त और उपयोगी जल संरचनाओं में इकट्ठा कर वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित आवश्यकता के अनुसार इस संचित जल का प्रयोग फसल, फल, सब्जी, फूल और पशुपालन के लिए हम कर सकते हैं
1: जी। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं सिंचाई की विधियों के बारे में, जिसमें आप सतही सिंचाई, फुहारक यानी कि स्प्रिंकलर छिड़काव और बूंद बूंद या टपक सिंचाई योजना अपना सकते हैं।
0: बिल्कुल, जो देखो सभी महत्वपूर्ण है आज की।

0: इट्स वैज्ञानिक तौर तरीकों में।
1: बिल्कुल, देखिए सतही सिंचाई की अगर बात करें, जिसको हम भूतल सिंचाई भी कहते हैं, सिंचाई भूमि की सतह पर पानी को अवरुद्ध करके या पानी को सतह पर बढ़ाकर की जाती है। प्रत्येक मामले में पानी को नियंत्रण में रखने के लिए कुछ साधन उपलब्ध करवाने चाहिए, ताकि फसल की पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पानी समुचित गहराई तक प्रवेश कर सके और अंतः गहन और रिसन द्वारा पानी की अत्यधिक क्षति भी एक प्रभावी और दक्ष सिंचाई प्रणाली में बाधा है। मेड़ों पर लगाई गई फसलों जैसे कि आलू को एक नाली छोड़कर 3/4 नाली पानी से भरकर सिंचाई देने से फसल की पैदावार जो है वो अच्छी मिलती है और आलू के खेतों को कभी पूरा पानी से ना भरें।
0: अच्छा जी, तो ये ध्यान हमारे किसान भाई रख सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो देखो गुलमन जी, आपने बताया किसान भाइयों को कि सतह सिंचाई यानी भूतल सिंचाई क्या होती है। अब बात करते हैं कि जो फुहारक यानी स्प्रिंकलर सिंचाई है, ये क्या तरीका होता है
1: जी?
0: किसान भाइयों, इस विधि द्वारा पानी फवारे के रूप में भूमि की सतह के ऊपर दिया जाता है, जो कुछ कुछ वर्षा से मिलता जुलता होता है। ये विधि उन क्षेत्रों के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है जिनकी स्थलाकृति ऊंची नीची हो और जहां भूमि कटाव का खतरा रहता हो। ये पानी के एक समान वितरण को सुनिश्चित करती है और मृदा की अधिकांश किस्मों के लिए अनुकूल होती है
1: जी।
0: किसान भाइयों, इतना ही नहीं कि फार्म उपकरणों के प्रयोग में कोई बाधा नहीं करती है। इसकी मूल लागत अधिक होती है और ये विधि केवल ऊंचे मूल्य वाली फसलों के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है। इसमें पानी की क्षमता सतही सिंचाई की तुलना में दुगुनी होती है, जिसमें इस विधि द्वारा अपेक्षाकृत अधिक भूमि की सिंचाई की जा सकती है और भूमि को समतल बनाने के लिए काम आवश्यक नहीं होता है।
1: जी बिल्कुल। और किसान भाइयों, बात कर लेते हैं बूंद बूंद यानी कि टपक सिंचाई योजना के बारे में। किसान भाइयों, ये विधि सबसे दक्ष पाई गई है, क्योंकि इस विधि द्वारा मात्र 10% पानी ही व्यर्थ जाता है, जबकि सतही सिंचाई में इसकी मात्रा 60% व फुहारक विधि में 20% रहती है।
0: अच्छा जी,
1: और इसे टपक सिंचाई भी कहते हैं। सिंचाई छोटे व्यास वाली पीवीसी ट्यूबों का प्रयोग करके की जाती है, जिनमें संयंत्रों के आधार के पास चुने हुए स्थानों पर टपककारी नामक युक्तियां व उपकरण लगे होते हैं। किसान भाइयों, सिंचाई की दक्षता बढ़ाने हेतु भी कुछ एक सुझाव हैं, उसकी बात भी कर लेते हैं।
0: बिल्कुल जी, तो देखिए किसान भाइयों, कुछ एक जो सुझाव हैं, कुछ एक बातें आपको ध्यान में रखनी है वो आपको बता देते हैं। गुलवंत जी, पहली बात तो ये हमारे किसान भाइयों को ध्यान में रखनी है कि भूमि को उनकी श्रेणी के अनुसार समुचित रूप में समतल करना होता है।
1: बिल्कुल,
0: और भूमि में जैविक खादें डालकर जीवांश को बढ़ाएं, और किस्मों का जो चुनाव है वो आपको सही तरीके से करना है, यानी क्षेत्र विशेष के अनुसार ही करना है
1: जी।
0: जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए महकमा जिन किस्मों की सिफारिश करता है वहां पर वही किस्में लगनी चाहिए, और जो मध्यवर्ती है, निचले क्षेत्र हैं, वहां पर क्षेत्र विशेष के अनुसार ही फसलों को लगाया जाना चाहिए।
1: और किसान भाइयों, सिंचाई के स्रोत के अनुसार प्लाट का उचित आकार दें, यानी कि जो आपकी भूमि है उसको उसी तरीके से आपको उपयोग में लाना है।
0: अच्छा जी,
1: और सिंचाई के पानी को सही मात्रा का प्रयोग करना है और सिंचाई के पानी की समुचित विधि का प्रयोग करें।
0: अच्छा जी,
1: इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और खेत का अच्छा प्रबंधन, जैसे सही समय पर बुआई और पौधों की समुचित संख्या को बनाए रखें, कीटाणुओं व रोग के नियंत्रण के लिए पौधों को उचित सुरक्षा करें।
0: अच्छा,
1: इस बात का आपको ध्यान रखना।
0: बिल्कुल जी, और साथ ही ये ध्यान भी रखना है किसान भाइयों आपने, कि सिंचाई जल की क्षमता को बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि मृदा के प्रबंध और सिंचाई के स्रोत, उसका तरीका, उसको ध्यान में रखकर ही आपको खेत में उपयुक्त आकार के प्लाट बनाने होते हैं
1: जी।
0: हल्की प्रकार की मृदा में प्लाट छोटे आकार के होने चाहिए, ताकि उनमें पानी की गति तीव्र हो, और बड़े प्लाटों में पानी की गति आगे की क्षमता नीचे की और अधिक होगी और सिंचाई की क्षमता कम होगी। सिंचाई फसलों में क्रांतिक अवस्थाओं पर जल उपलब्धता के आधार पर ही आपको देना होता है। किसान भाइयों, पॉलीहाउस में उगने वाली फसलों, सब्जियों और फूलों को जल तनाव माफी की सहायता से ही सिंचाई देने की प्रक्रिया को संचालित करके आप अधिक से अधिक फायदा उठा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो किसान भाई, ये थी कार्यक्रम में कुछ एक जानकारी सिंचाई की विभिन्न विधियों के बारे में। तो अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। तो गुरबंश जी, कार्यक्रम में क्या विचार है?
1: देखिए, अब तो हमारे किसान भाइयों को इंतजार रहता है लोकगीत का, तो सुनते हैं जितेंद्र और मुनीश की आवाज में ये लोकगीत
0: जी।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना कार्यक्रम में जितेंद्र और मुनीश की आवाज में ये लोकगीत। तो किसान भाइयों, अब बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। आज का हमारा विषय है मौन पालन में स्वरोजगार की संभावनाएं। डॉक्टर ज्ञान वर्मा से जानकारी हासिल कर रही हैं निशा। तो किसान भाइयों, आइए मिलजुल कर सुनते हैं इस जानकारी का पुनः प्रसारण।
1: किसान भाइयों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जानकारी पूर्ण बातचीत, जिसका विषय है मधुमक्खी पालन में रोजगार की संभावनाएं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित

0: हैं डॉक्टर ज्ञान वर्मा। ज्ञान वर्मा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो ये मधुमक्खी पालन है क्या और इसकी उपयोगिता क्या है?
1: मधुमक्खी पालन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मधुमक्खियों का बहुत प्राचीन समय से लेकर जो है मनुष्यों के साथ इसकी एसोसिएशन रही है
0: जी।
1: मौन पालन जो है एक कृषि और बागवानी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनका योगदान रहता है। मौन पालन को बी कीपिंग भी कहा जाता है, एपी कल्चर भी कहा जाता है। एपी कल्चर का मतलब है एपिस जमा कल्चर, ये दो शब्द से बना है
0: जी।
1: एपिस का मतलब होता है मौन और कल्चर का मतलब होता है पालन। तो जब हम

0: कृषि और बागवानी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनका योगदान रहता है। मौन पालन को बी कीपिंग भी कहा जाता है, एपी कल्चर भी कहा जाता है। एपी कल्चर का मतलब है एपिस जमा कल्चर, ये दो शब्द से बना है
1: जी।
0: एपिस का मतलब होता है मौन और कल्चर का मतलब होता है पालन। तो जब हम आधुनिक ढंग से और वैज्ञानिक ढंग से मधुमक्खियों का पालन पोषण करते हैं तो उसे मौन पालन या मधुमक्खी पालन भी कहा जाता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, मधुमक्खियों की प्रजातियां कितनी हैं और कौन कौन से उत्पाद जो हैं वो हम मधुमक्खियों से प्राप्त कर सकते हैं?
0: हमारे देश में मधुमक्खियों की चार प्रजातियां पाई जाती है जो जिनसे हमें शहद और अन्य उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। पहली जो इसकी प्रजाति है वो है इंडियन हनी बी, जिसे कि एपिस सेराना इंडिका भी कहा जाता है। ये हमारे देश की अपनी मक्खी है नेटिव, जो यहाँ इसका ओरिजिन हुआ है। तो इस मधुमक्खी से हमें 5 से 7 किलोग्राम शहद प्रति वर्ष प्राप्त होता है
1: जी।
0: दूसरी प्रकार की जो मधुमक्खी की प्रजाति है वो एपिस डॉर्सेटा है, जिसे रॉक बी भी कहते हैं। इस मधुमक्खी से हम शहद उत्पादन तो काफी होता है, लेकिन इस मधुमक्खी को पालना असंभव है क्योंकि ये काफी एग्रेसिव और गुस्से वाली होती है और इसे बी हाइव में या मौन ग्रहों में नहीं पाला जा सकता है। शहद उत्पादन इससे 50 से 60 किलो तक प्राप्त होता है
1: जी।
0: तीसरे प्रकार की जो मधुमक्खी की प्रजाति है वो एपिस फ्लोरिया है, जिसे लिटिल बी कहा जाता है। इससे हमें 1 से 2 किलोग्राम शहद उत्पादन प्राप्त होता है और ये हमारे निचले जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर ये मधुमक्खी पाई जाती है। चौथी प्रकार की जो मधुमक्खी की प्रजाति है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति है, उसे इटालियन हनी बी कहा जाता है, एपिस मेलिफेरा इसका नाम है। यह मधुमक्खी हमने विदेशों से आयात की है। सबसे पहले 1961 में हिमाचल प्रदेश में ही इस मधुमक्खी को लाया गया था और हमारे जो मौन पालक है, मधुमक्खी पालक है, वो भी व्यावसायिक रूप से इसी मधुमक्खी की प्रजाति का को पाल रहे हैं डब्बों में। इससे शहद उत्पादन जो है, अगर हम माइग्रेटरी कंडीशन में जब हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो इससे 20 से 25 किलोग्राम शहद उत्पादन प्रतिवर्ष प्राप्त हो जाता है
1: जी।
0: इसके अतिरिक्त मधुमक्खियों से हमें बहुत से, जैसे कि आपने कहा है कि इससे हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो मधुमक्खियों से हमें शहद मुख्यतः एक इसका मुख्य उत्पाद है। इसके अलावा जैसे मोम है, जिसे वैक्स भी कहा जाता है, वो भी हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पादन जिसे रॉयल जेली कहा जाता है, जिसका कि बाहर विदेशों में भी काफी उत्पादन हो रहा है, वो भी हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। मधुमक्खियों की जो वर्कर बीज होती है, इससे हमें एक जो इनका जहर होता है, डंक जिसे कहते हैं, उससे हमें एक उत्पाद प्राप्त होता है जिसे हम बी वेनम कहते हैं। इसका भी बहुत ही औषधीय उपयोग इसका काफी है। इसके अतिरिक्त एक और मधुमक्खियों से हमें उत्पाद प्राप्त होता है जिसे प्रोपोलिस कहा जाता है, जिसके के बहुत से दवाइयों और अन्य चीजों में बनाने में काम आता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, देखिए, हमारे जो रोजगार की दृष्टि से अपनाना चाहते हैं इस व्यवसाय को, तो उन्होंने शुरुआत कैसे करनी है? जैसे वो मधुमक्खी पालना चाहते हैं तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं?
0: ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि मधुमक्खी पालन जो है, अभी तक जो हमारे ट्रेडिशनल परंपरागत तरीकों से ही मधुमक्खी पालन हो रहा था, जैसे मधुमक्खियां घरों में भी लोग उसका पालन पोषण करते थे, जिसे जिन्हें हम वाल हाइव्स कहते हैं, तो कुछ एक जंगलों में भी मधुमक्खियां पाई जाती है जो कि पेड़ों के खोखलों या उसमें बड़े वृक्षों पे रहती है, जिन्हें लॉग हाइव्स कहते हैं। तो आधुनिक ढंग से जो मौन पालन है वो मौन ग्रहों में किया जा रहा है। ये जो हमारी इंडिका मक्खी है, इसको भी हम मौन ग्रहों में पाल सकते हैं। इसके मौन ग्रह को हम जॉलीकॉट बी हाइव कहते हैं। और ये जो हमारी इटालियन मधुमक्खी है, इसे भी हम मौन ग्रह में पाल सकते हैं। इसके जो मौन ग्रह को हम मेलिफेरा बी हाइव्स कहते हैं, मौन ग्रह कहते हैं। बाद जो है मधुमक्खियां जो है वो मधुमक्खी पालन का काम करना चाहता है, उसे मधुमक्खियां खरीद के जो है मधुमक्खियों की जो कॉलोनीज है वो कम से कम, अगर व्यावसायिक रूप से मधुमक्खी पालन व्यवसाय करना है तो इसके लिए कम से कम 50 कॉलोनीज खरीदना आवश्यक रहता है, तभी इसमें जो है आगे बढ़ोतरी भी होगी और इसमें मौन पालन व्यवसाय से फायदा भी हो सकता है। तो मधुमक्खी पालन के लिए सबसे पहले प्रशिक्षण, उसके बाद जो है मधुमक्खियों से संबंधित जो भी सामग्री है उसे प्राप्त करना अनिवार्य होता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, मौन पालन एवं मधुमक्खियों का पर्यावरण संतुलन में क्या योगदान है?
0: मधुमक्खियों का फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के अलावा, जैसा कि आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कहा, मधुमक्खियों को यदि हम सेब, नाशपाती, चेरी या इन बगीचों में रखते हैं तो इसमें फसल की जो उत्पादकता है वो 20 से 25% उत्पादकता बढ़ जाती है। फलों की गुणवत्ता, फलों की क्वालिटी और फलों की जो शेल्फ लाइफ है उसमें भी सुधार होता है। इसके अलावा जो हमारी दूसरी फसलें हैं जैसे सरसों हैं, तोरिया है, सूरजमुखी है और दूसरी सब्जियों वाली फसलें हैं जैसे प्याज है, मूली है, इनमें भी यदि हम मधुमक्खियों के बॉक्सेस को अपने खेतों में रखते हैं तो इसमें उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। तेल वाली फसलों में तेल की जो मात्रा है उसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है। इसके अलावा पर्यावरण संतुलन

0: में भी इकोलॉजिकल बैलेंस में भी मधुमक्खियों का बहुत सा योगदान है, क्योंकि मधुमक्खियां जो है एक फूल से दूसरे फूल पर जब भ्रमण करती है तो वो परागकणों को एक पौधे से दूसरे पौधे पर ले जाती है, जिससे कि पौधों में जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, परपरागण भी होता है। इसके अलावा जो है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है और मधुमक्खियों का पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है।
1: जी, और किसान और बागवानों की हम बात करें तो फसलों की उपयोगिता जो है वो मधुमक्खी बढ़ा सकती है, इसमें इनका क्या योगदान रहता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं।
0: इस विषय में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जैसे कि हमारे सेब उत्पादक क्षेत्रों के जो बागवान है, जब सेब में फ्लावरिंग शुरू होती है मार्च अप्रैल के महीने में, तो जब 10 या 15% फ्लावरिंग हो जाती है तो बागवानों को चाहिए कि वो अपने बगीचों में जो है मौन वंशों को, मधुमक्खियों के कॉलोनीज को रखें, तो 1 एकड़ के लिए जो है वो 2 से 3 कॉलोनीज काफी रहती है। और मधुमक्खियों को बगीचे में जो है निचले या मध्य स्थान पे रखना चाहिए, और मधुमक्खियों का जो मुंह है वो पूर्व की दिशा की ओर होना चाहिए, जहां से सुबह सूरज निकलता है। इसके अलावा जो है मधुमक्खियों को जब पॉलिनेशन के लिए बगीचों में रखते हैं तो उस टाइम जो है बागवान किसी भी कीटनाशक या दूसरे कोई फफूंदनाशक का छिड़काव ना करें, क्योंकि इससे मधुमक्खियों को काफी नुकसान होता है। पॉलिनेशन परागण क्रिया संपन्न करवाने में मधुमक्खियों का बहुत ही योगदान रहता है, क्योंकि मधुमक्खियों की पिछली टांगों में एक पोलन बास्केट होती है, जिसमें ये अपनी टांगों में पोलन फ्लावर से कलेक्ट करके अपने कॉलोनीज में लाती है, और ये अपने जो परिवार होता है इनका, मधुमक्खियों का परिवार छोटे बच्चे होते हैं उनको पोलन प्लस नेक्टर ये फीड करवाती है। तो जिससे को ये तो अपने लिए अपने परिवार के पालन पोषण के लिए नेक्टर और पोलन कलेक्ट करती है, लेकिन बागवान को जो है इससे काफी फायदा होता है, क्योंकि जब ये एक फूल से दूसरे फूल पे भ्रमण करती है तो उसमें फसल की उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होती है और बागवानों को जो है इससे अच्छी आमदनी प्राप्त होती है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब देखिए, हमारी हिमाचल प्रदेश की जिस तरह की जलवायु है, तो यहाँ कौन सी प्रजाति है जो अच्छी तरह से उत्पाद दे सकती है, या जिससे हमारे किसान बागवान या हमारे जो रोजगार की दृष्टि से इसे अपना रहे हैं तो किस तरह से वो लाभ उठा सकते हैं?
0: हिमाचल प्रदेश की जलवायु जो है मौन पालन के लिए काफी अनुकूल है। यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से हमारा जोन जो है सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल, सब टेम्परेट्स और ऊपर ड्राई टेम्परेट जोन तक, हमारे प्रदेश में अलग अलग तरह के पुष्प पौधे पाए जाते हैं जो कि मधुमक्खियों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो जो हमारे मौन पालक हैं वो अतिरिक्त शहद उत्पादन इनसे कर सकते हैं, जैसे कि हमारे प्रदेश में छिछड़ी है, एक इसका भी बहुत अच्छा हनी निकलता है, ओगला है, खैर है, लीची है, जामुन है, यूकेलिप्टस है, बहुत तरह के पुष्प पौधे जो हैं हमारे प्रदेश में पाए जाते हैं। और हमारे प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है मौन पालन व्यवसाय को अपनाकर अपनी आमदनी में काफी इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा मौन वंशों को हम प्रदेश या दूसरे प्रदेशों में भी प्रवर्जित करते हैं, माइग्रेट करते हैं, वहाँ पर भी बागवानों को काफ़ी अच्छा पुष्प पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें मुख्यतः सरसों हैं, तोरिया है, लीची है, और भी अन्य काफ़ी फसलें हैं हमारे मैदानी क्षेत्रों में। तो वहाँ सर्दियों के मौसम में हमारे जो मौन पालक है वो मौन वंशों को वहाँ प्रवर्जित करते हैं और काफ़ी शहद उत्पादन प्राप्त करते हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब देखिए, अंत में आप हमारे किसान बागवान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: प्रदेश के किसान और बागवान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि मौन पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए आप लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको कोई भी जो बेरोजगार युवा है, जिसके पास की अपनी जमीन भी नहीं है, वो भी मौन पालन का व्यवसाय शुरू कर सकता है, क्योंकि जो हमारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड और एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए हमें जमीन की आवश्यकता रहती है, क्योंकि जमीन पे ही हमारी खेती होगी, पौधे भी लगने हैं। लेकिन मौन पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको के जिसके पास जमीन भी नहीं है, कृषि योग्य भूमि भी नहीं है, जो हमारे शहर के भी बेरोजगार युवा हैं वो भी इस व्यवसाय को अपना सकते हैं। मौन पालन के लिए बहुत ज़्यादा स्थान आवश्यकता भी नहीं होती है, बहुत ज्यादा लेबर की आवश्यकता भी नहीं होती है, और बहुत ज्यादा इसमें थोड़ा सा स्किल की जरूरत होती है जो कि आप एक ट्रेनिंग द्वारा जो है इसको पूरा कर सकते हैं, और इसमें ज्यादा लेबर इंटेंसिव भी नहीं है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है। यदि हम 50 कॉलोनीज को रखते हैं तो एक मौन पालक का जो है उसमें 2-1 लाख रुपया खर्च आता है
1: जी।
0: और साल में जो है इतनी ही 1.5 से 2 लाख रुपए उसकी आय भी वो इससे प्राप्त कर सकता है। तो मेरी किसानों और बागवान भाई बहनों से ये अनुरोध रहेगा कि वो मौन पालन की उपयोगिता को समझते हुए मौन पालन व्यवसाय को जरूर अपनाएं, और जो हमारे बागवान और किसान गाँव में भी अपने जो वाल हाइव्स में भी जो उन्होंने मधुमक्खियां पाल रखी है

0: उसको भी वैज्ञानिक ढंग से वो अपने मौन ग्रहों में पाले और शहद के साथ साथ फसलों की उत्पादकता तथा पर्यावरण संतुलन में भी अपना योगदान दे।
1: जी, तो डॉक्टर ज्ञान वर्मा जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी हमारे किसान, बागवान और बेरोजगार भाई बहनों को मधुमक्खी पालन में रोजगार की संभावना के बारे में। तो इन सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: किसान भाई और बहनों, ये तो सुनी आपने जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण। विषय था मौन पालन में स्वरोजगार की संभावनाएं। बातचीत में भाग ले रहे थे डॉक्टर ज्ञान वर्मा और उनसे जानकारी हासिल कर रही थी निशा
3: जी।
2: तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे।
3: जी बिल्कुल, और देखिए अब जानकारी भी होगी गुलबन जी कार्यक्रम में। तो किसान भाइयों को आज भी कार्यक्रम में इंतजार होगा एक और लोकगीत का। तो आइए किसान भाइयों, आपके साथ साथ हम भी सुनते हैं लेखराम पाल और रमेश चंद की आवाज में ये मधुर सा लोकगीत।

0: किसान भाइयों, लोकगीत तो सुन लिया, चलते चलते कल के मुख्य आकर्षणों की जानकारी भी आपको दे देते हैं। कल हम आपको काम की बातों के तहत जानकारी देंगे जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव
1: जी,
0: साथ ही पहाड़ी लोकगीत से मनोरंजन करेंगे और साथ ही साथ एक जानकारीपूर्ण बातचीत सुनेंगे जिसका विषय रहेगा वनों को आग से कैसे बचाएं।
1: जी बिल्कुल, तो गुलबन जी ये था आज का कृषि जगत कार्यक्रम। तो इसी के साथ किसान भाइयों, आज के हमारे इस कार्यक्रम का समय यहीं पर संपन्न होता है। आप सभी से कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।
2: कृषि जगत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी FM शिमला ट्यून किया है आपने। शाम के 7:45 होने को हैं। आप कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जाएगा।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारे ना
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना,
3: और ये
4: मेरी गुड़िया के नाम।
5: पर दादी,
2: हाँ,
5: आपके नाम?
6: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
5: क्या
6: आरबीआई कहता है?
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम, मेरिट सूची में बेटियों का दबदबा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से काम करने का लगाया आरोप। पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन, 26, 28 व 30 मई को तीन चरणों में होगा मतदान। और प्रदेश में कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार, 15 मई तक अधिकांश स्थानों पर वर्षा व ओलावृष्टि का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष 93,176 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी, जिनमें से 78,150 उत्तीर्ण

0: उत्तीर्ण हुए हैं। 8,433 विद्यार्थियों के कंपार्टमेंट आई है, जबकि 6,559 असफल घोषित किए गए हैं। परीक्षा परिणाम 83.87% रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट।
1: प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की मेरिट सूची में एक बार फिर छात्राओं का दबदबा देखने को मिला है। मेरिट सूची में कुल 107 विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है, जिनमें 83 छात्राएं और 24 छात्र शामिल हैं। कांगड़ा जिले के निजी स्कूल पहाड़ा की छात्रा अनमोल ने 700 में से 699 अंक लेकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। बोर्ड के अध्यक्ष राजेश शर्मा के अनुसार परीक्षा प्रणाली में इस बार कई बड़े बदलाव किए गए थे, जिसके चलते परिणाम में सुधार देखने को मिला है।
2: इस बार जो बोर्ड की पास परसेंटेज है वो है 83.87%, जो पिछले वर्षों के मुकाबले ग्रेजुअल इंक्रीज है। ये दर्शाता है कि बोर्ड पिछले कुछ वर्षों से लगातार एफर्ट कर रहा है, जिसके रिजल्ट आज देखने को मिल रहे हैं। ये अचानक नहीं है। बोर्ड की जो कार्यशैली है, कार्यशाला लगाने, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, बच्चों के पेपर का स्टाइल CBSE के मुताबिक करने के लिए, साथ के साथ जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाले, जैसे बच्चों को नीट में चाहिए होते हैं, JEE में चाहिए होते हैं, UPSC में चाहिए होते हैं, वैसे हमने पैटर्न भी चेंज करा और कुछ उनके मस्तिष्क में था, मानसिक तौर पर तैयार थे कि हमारे हक को चुराया नहीं जाएगा, नकल पे रोक लगेगी, इसलिए वो बेटर परफॉर्म कर पाए।
1: स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रदेश भर में 2,384 केंद्र बनाए थे। पहली बार परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग भी की गई। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि आगामी सत्र से परीक्षा केंद्रों में ऑडियो वीडियो कैमरों के माध्यम से निगरानी रखने की भी योजना है। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं सुरेश शर्मा।
0: इस बीच प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल करने वाले कांगड़ा जिले की छात्रा अनमोल ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और अध्यापकों को दिया है। अनमोल ने बताया कि उनका सपना भविष्य में अध्यापिका बनना है।
3: मेरा नाम अनमोल है और आज 10th बोर्ड का रिजल्ट निकला है। मैंने फर्स्ट रैंक हासिल की है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं रोज़ 5 से 6 घंटे पढ़ने बैठती थी और इसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स, मेरे सभी टीचर्स और स्पेशली हमारे स्कूल के MD मैम, प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल सर को जाता है।
0: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 10वीं की परीक्षा में सफल होने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। मेधावी विद्यार्थियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये परिणाम उनकी कड़ी मेहनत और पढ़ाई के प्रति समर्पण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने इस परीक्षा में असफल विद्यार्थियों को निराश न होने और नए संकल्प व कड़ी मेहनत के साथ दोबारा तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार जनता में अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनावी वायदों को पूरा नहीं किया है और केवल झूठे आश्वासन दिए हैं। पालमपुर में आज कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भाजपा पालमपुर नगर निगम के लिए स्पष्ट विजन लेकर आई है और इसे आदर्श नगर निगम बनाया जाएगा। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पालमपुर को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी व गवर्नेंस विभाग को ई गवर्नेंस की दिशा में किए गए नवाचारों और नागरिक केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। विभाग के सचिव आशीष सिंघमार और निदेशक निपुण जिंदल ने शिमला में मुख्यमंत्री को ये पुरस्कार भेंट किए। मुख्यमंत्री ने लोगों को पारदर्शी, त्वरित और सुरक्षित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए विभाग की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तकनीक और नवाचार का उपयोग कर लोगों को प्रभावी, पारदर्शी व सुलभ सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद, कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने बेसहारा पशुओं, पार्किंग और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। पालमपुर में एक चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से पालमपुर शहर का विकास ठप है और केंद्र द्वारा स्वीकृत सीवरेज योजना में भी बड़ा घोटाला किया गया है।
4: विधायक यहाँ वर्षों से कांग्रेस पार्टी

0: के हैं, लेकिन पालमपुर जैसा चल रहा है वैसा चल, लेकिन हट करके कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, बड़ी सोच के साथ करना चाहिए। वो स्थिति 15 वर्षों में आ नहीं सकी। हमारा विधायक ना तो नहीं था, हमारी सरकार थी। हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का जो है हमारा कोर्ट होना चाहिए, हमने वो कोर्ट आपको दिया। पालमपुर में आकर के आप लोगों ने कहा कि बीडीओ का ऑफिस यहाँ पर खुलना चाहिए, बीडीओ का दफ्तर आपको पालमपुर में हमने खोला, लेकिन कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने के बाद उसको भी डीनोटिफाई करके चले गई।
1: जयराम ठाकुर ने धर्मशाला के दाड़ी में भी चुनाव प्रचार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार केवल बदले की भावना से काम कर रही है और जनहित की योजनाओं को रोक रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करने का आह्वान किया। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। 7 और 8 मई को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान प्रदेश भर में 42,562 उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन भरे। अभी तक कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 7,396 नामांकन भरे गए हैं। नामांकन पत्रों की जाँच 15 मई को की जाएगी और इसी दिन चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। पंचायत चुनावों के लिए मतदान 26, 28 व 30 मई को 3 चरणों में करवाया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा। ऊना जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में 3,79,459 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि ऊना जिले की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिले में 1,88,945 पुरुष जबकि 1,84,724 महिला मतदाता है। भाजपा ने सोलन नगर निगम चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 4 कार्यकर्ताओं की प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दी है। भाजपा ने स्पष्ट किया कि पार्टी संगठन विचारधारा और अनुशासन के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं करेगी। पार्टी ने उम्मीद जताई कि सोलन की जनता विकास, पारदर्शिता व मजबूत नेतृत्व के पक्ष में मतदान करेगी और भाजपा को भारी जनसमर्थन प्राप्त होगा। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए रहे। राज्य में मई महीने के दूसरे सप्ताह में भी ठंड बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार कल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का अनुमान है। विभाग के अनुसार मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने कल 11 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए येलो अलर्ट, जबकि 12 और 13 मई को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए ऑरेंज व अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री आज शिमला में उनसे मिलने आए हिमाचल प्रदेश साइंस मास्टर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में पुरानी पेंशन योजना को बहाल रखेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। मेरिट सूची में बेटियों का दबदबा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से काम करने का लगाया आरोप। पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन। 26, 28 व 30 मई को 3 चरणों में होगा मतदान। और प्रदेश में कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार। 15 मई तक अधिकांश स्थानों पर वर्षा व ओलावृष्टि का अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: बंधू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुद्धू।
4: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
6: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए गए, जिन्हें

आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी शिमला है, लीजिए प्रस्तुत है देशगान।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे देशगान। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आप ट्यूनिंग है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।

नमस्कार आदाब, वेरी गुड इवनिंग। तो आइए लिए चलते हैं आपको उस सुनहरे दौर में जहां सुरों में सादगी थी, शब्दों में मोहब्बत थी और हर धुन दिल को छू जाती थी। चांदनी रातों में उन भूले बिसरे गीतों की मधुर आवाज़ और जादू आज भी अगर हम सुन लें तो हमें वो उस समय का दौर याद करवा जाता है जहां मोहब्बत शब्दों और धुनों के साथ बयां होती थी। तो बने रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपको लिए चलते हैं उस सुनहरे दौर के सफ़र पर।

इस सफर पर मैं निभाऊंगी आपका साथ, रीटा पामा बने रहिए हमारे साथ। और ये वायदा है हमारा आपसे कि हम आपको बोर बिल्कुल भी नहीं होने देंगे अब से लेकर ठीक रात्रि 11 बजे तक। चलिए आगाज बहुत ही बेहतरीन गीत के साथ करने वाले हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म दिल्ली का ठग से। आवाज किशोर कुमार आशा भोसले की है। अब बने रहिए फिल्म शिमला के साथ और इंजॉय करते रहिए बेहतरीन गीत।

इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला पर भूले बिसरे गीत प्रोग्राम। 8:05 हुए हैं और उन सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिन है, ये शादी की सालगिरह है। एफएम परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका आने वाला समय बहुत खुशनुमा हो और आप यूं ही एफएम शिमला के साथ बने रहें और एक से बढ़कर एक नगमे एंजॉय करते रहें। चलिए अगला नगमा तुमसा नहीं देखा फिल्म से सुनवाते हैं आपको, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

तो जी FM शिमला पर एंजॉय कर रहे हैं आप इस वक्त भूले बिस्तरे गीत प्रोग्राम, और 8:10 एग्जैक्टली हमारी घड़ी में हो चुके हैं। तो आज कल जो है रिजल्ट्स का दौर है, और पिछले कुछ समय से बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आ रहे हैं, और आप सब एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर

के साथ अपने आप को प्रूव भी कर रहे हैं, आपने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश भी की है। बहुत से बच्चों के जो है बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स में जो है वो नंबर भी आए हैं। तो आने वाले फ्यूचर के लिए आप सभी को पूरे FM परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका फ्यूचर ब्राइट हो, यही शुभकामनाएं हमारे पूरे FM परिवार की ओर से आप सभी के लिए। तो चलिए कार्यक्रम का अगला नगमा सुनते हैं छाया फिल्म से लता मंगेशकर, तलत महमूद की आवाज़ में।

तो जी संगीत का आनंद आप FM शिमला पर ले रहे हैं। सिर्फ संगीत जो है सुनना ही नहीं बल्कि महसूस करना होता है, तो चलिए हम सब मिलकर आज इस संगीत में सफ़र को एंजॉय करते हैं, क्योंकि हर धड़कन में छुपा है एक सुर और हर सुर सुनाता है अपनी ही एक कहानी। तो चलिए कार्यक्रम का अगला नगमा एंजॉय करते हैं।

प्रोफेसर फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की आवाज़ में एंजॉय किया आपने। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला ट्यून किया है आपने और इस वक्त भूले बिसरे गीत प्रोग्राम सुन रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त रोज़ाना हम प्रोग्राम में आपको सुनवाते हैं एक से बढ़कर एक नगमे जिसे हमने बॉलीवुड हिंदी मूवीज से लेते हैं हम इन्हें और आपको हम सुनवाने की कोशिश करते हैं और आपको हम एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी के पसंद के गाने हम प्रोग्राम्स में शामिल करें और आपकी शाम को बेहतरीन बनाएँ। चलिए कार्यक्रम का अगला नगमा सुनवाते हैं आपको, दिल ही तो है फिल्म से मन्ना डे की आवाज़ में।

तो चलिए जी, इसी नगमे के साथ अभी के लिए भूले बिसरे गीत प्रोग्राम को देते हैं यहीं पर विराम। अब 8:30 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में फिल्म संगीत लेकर हाजिर होते हैं। तब तक बने रहिए FM शिमला के साथ।

0: इस वक्त आप ट्यूनिन हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:30 होने वाले हैं। समय रहता है फिल्म संगीत का। जी हाँ, जहाँ सुरों का संगम हो और दिलों को सुकून मिले, वहीं से शुरू होता है संगीत का असली सफ़र। क्योंकि संगीत सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, दिलों को जोड़ने वाली सबसे प्यारी भाषा है। तो आइए कुछ पल दुनिया की भागदौड़ से दूर होकर खो जाते हैं मधुर गीतों की दुनिया में, और आगाज़ करते हैं इस नगमे के साथ।
1: राख के ढेर में चलते हुए शोलों को हाथ मत लगा, चल जाएगी।
2: नाम मेरा शबनम है, पर आग तो मैं भी हूं शाखा।
3: दिल जले, दिल जले, ओ लाले, यहां तो सभी दिल जले हैं।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

बनाती हो तुम रेत के ये महल, जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम था।

देखिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, तो दुनिया के हर इंसान को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मिलती है, इसलिए ज़िंदगी को खूबसूरती से जिए। जैसे इंद्रधनुष के बिना जो है, रंगों के बिना इंद्रधनुष का कोई भी महत्व नहीं है, ऐसे ही अगर ज़िंदगी में जो भी हमारे पड़ाव आते हैं उन्हें हंसकर झेलिए, हंसकर उनका स्वागत कीजिए। देखिए, सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बनती है। ज़िंदगी को खूबसूरत इंद्रधनुषी रंगों के साथ, इंद्रधनुषी रूपी रंगों के साथ आप जिए और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। फिल्म संकेत सुनिए और हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए जी, ज़िंदगी को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाते हैं इस नगमे के साथ। बने रहिए आप FM शिमला के साथ, सुन रहे हैं आप इस वक्त फिल्म संकेत।

तो चलिए जी, फिलहाल इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत प्रोग्राम को देते हैं अभी के लिए यहीं पर विराम। 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला ट्यून किया है आपने। इस वक्त रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार संध्या और न्यूज़ एट 9 के लिए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो। हमारी आपसे मुलाकात होगी ठीक 9:15 पर। तब तक बने रहिए FM शिमला के साथ और कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतज़ार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयम उपयोग आज

0: समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबिल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए

0: तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा

0: योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used.

दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम एक फिल्म से में। जी हाँ, 9:15 हो चुके हैं एग्जैक्टली और अपने वायदे के मुताबिक हाजिर हैं हम प्रोग्राम एक फिल्म से लेकर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं हिंदी सिनेमा की उस सुनहरी दुनिया में जिसमें बसती है यादें, भावनाएं और सदाबहार गीतों की मिठास। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने अपने गीतों, कहानी और कलाकारों से लाखों दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। और ये फिल्म वो है जो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं चली, बल्कि वो एहसास है जो कभी हंसाती थी तो कभी रुलाती थी और इसके साथ ज़िंदगी जीना भी सिखाती थी। तो आप तैयार हो जाइए उस खूबसूरत सफ़र के लिए और आगाज़ तो हम गीत से ही करेंगे। तब तक आप अंदाज़ा लगाइए कि कौन सी है हमारी आज की फ़िल्म जिसके गाने भी हम सुनवाएंगे और स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे।

तो आप इस गाने से पहचान ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे 1996 में बनी फिल्म बाल ब्रह्मचारी की। जी हाँ, ये फिल्म 1996 में ए बनी थी, जो एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा। प्रोड्यूसर भी थे इस फिल्म के प्रकाश मेहरा ही। फिल्म को लिखा था प्रकाश मेहरा और उनके साथ अनवर खान और रवि कपूर ने। म्यूज़िक की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक दिया था इस फिल्म में बप्पी लहरी ने। बप्पी लहरी के द्वारा इस फिल्म के सारे गानों का म्यूज़िक तैयार किया गया। ये फिल्म मशहूर एक्टर राजकुमार के बेटे पूरू राजकुमार की डबिंग फिल्म थी। इनके अलावा इस फिल्म में मशहूर अदाकारा करिश्मा कपूर और दीपक तिजोरी, आसिफ शेख और सिमरन ने भी अपने अभिनय से इस फिल्म में चार चांद लगाए। और अगर बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो लगभग हिट साबित हुई ये 1996 में ये फिल्म।

के गाने जो है वो कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, साधना सरगम, आशा भोसले, उदित नारायण, अभिजीत, विनोद राठौर और भप्पी लहरी ने गाए। तो ये फिल्म 1996 की बेहतरीन फिल्मों में से एक थी, जिसकी स्टोरी के साथ साथ इस फिल्म के म्यूजिक और स्टार कास्ट ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। तो चलिए जी, जब बात हो रही है बाल ब्रह्मचारी फिल्म की, तो इस फिल्म का सुपरहिट गाना सुनवाते हैं आपको।

तो हमारी आज की एक फिल्म थी ब्रह्मचारी, जो 1996 में आई थी। उम्मीद करते हैं इस फिल्म के गाने आपने इंजॉय किए होंगे और स्टोरी भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए जी, इसी गीत के साथ फिल्म एक फिल्म से प्रोग्राम को देते हैं यहीं पर विराम। अब 9:30 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम दिल की आवाज़ भी सुन प्रोग्राम लेकर हाजिर होते हैं, जो रहेगा फिल्म संगीत पर आधारित। तो बने रहिए FM शिमला के साथ। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत लीजिए। एग्जैक्टली हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हो चुके हैं और समय है दिल की आवाज़ भी सुन प्रोग्राम का। तो आज हम इस प्रोग्राम में आपको सुनवाएंगे उस दौर के नगमे, जब गाने सिर्फ गाने ही नहीं बल्कि एहसास था रिश्तों का, संगीत का और हर उस पल का जो दिल से जिया जाता था। तो चलिए जी, आगाज़ करेंगे हम बहुत ही बेहतरीन नगमे के साथ। पतीता फिल्म से हमने लिया है किशोर कुमार की आवाज़ में। इन्जॉय कीजिए प्रोग्राम का पहला नगमा।

तो जी, इस वक्त आप दिल की आवाज़ भी सुन प्रोग्राम सुन रहे हैं जो फिल्म संगीत पर है आधारित। देखिए, अगर आप शिमला में रह रहे हैं इस वक्त, तो एक बार फिर कुछ कारणों के कारण हम सबको जो है ट्रैफिक जैसी प्रॉब्लम से जूझना पड़ सकता है। तो ऐसे में थोड़ा सा पेशेंस और टाइम को मैनेज करके ही इस प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। अदरवाइज़ कई बार तो इतना ट्रैफिक होता है कि कहीं भी टाइम से पहुँचना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में प्रॉब्लम की जगह सोल्यूशन पर फोकस करना चाहिए हमें। तो टाइम से थोड़ा पहले घर से निकलें और प्रॉब्लम की जगह सल्यूशन पर फोकस कीजिए। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम सुन रहे हैं। कॉलेज कल फिल्म से अगला गाना।

देखिए ज़िंदगी प्रेम से जीने का नाम है, इसलिए दिल खोल कर जीने का आनंद लीजिए, संगीत सुनिए, घूमिए फिरिए, ज़िंदगी में हर रंग का एहसास कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार हमारे हाथ में है, इसलिए हमेशा खुश रहिए और फिल्म संगीत सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ FM शिमला पर।

ज़रूरी है। जब भी उदास अगर आप हो तो जीवन में आसमां को नहीं बल्कि ज़मीन को देखिए, क्योंकि ज़मीन को देखने वालों को कभी भी ठोकर नहीं लगती। और आप जीवन में आपके पल कैसे भी हों लेकिन जीवन में कभी भी निराश मत हों, हमेशा अपने से नीचे देखें और ज़िंदगी के आनंद को लें, जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहें, खुश रहें। और साथ के साथ आप फिल्म संगीत तो ज़रूर सुनिए। चलिए कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनवाते हैं आपको।

तो लीजिए, इस वक्त एग्जैक्टली हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। महफिल गज़ल में आपका दिल से स्वागत है, जहां अल्फाज भी मुस्कुराते हैं और सुर भी। तो बैठ जाइए सुकून के साथ, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है एहसासों का सफ़र। चलिए जी, गज़लों के कार्यक्रम में आगाज़ नूरजहां की गाई गज़ल के साथ करते हैं।

नूरजहाँ की आवाज़ में ये गज़ल का आनंद लिया आपने और गज़लें सुन रहे हैं आप एफएम शिमला पर। कभी मोहब्बत की खुशबू, कभी जुदाई का दर्द, गज़लों में छुपा होता है ज़िंदगी का हर रंग। तो चलिए जी, फिर कुछ पुराने एहसासों को सुरों के साथ महसूस करते हैं। राजकुमार रिजवी की आवाज़ में कार्यक्रम की अगली गज़ल सुनवाते हैं आपको।

गज़लों का आनंद ले रहे हैं आप और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में इस गज़ल का आनंद लिया। तो चलिए जी, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम की आखिरी गज़ल सुनवाई जाए आपको। अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में सुनवाते हैं कार्यक्रम की आखिरी गज़ल।

तो चलिए जी, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आई इसी गज़ल के साथ गज़लों को अभी के लिए हम देते हैं यहीं पर विराम। 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला सुन रहे हैं आप। इस वक्त 10:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में बस सदाबहार नगमे लेकर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए FM शिमला के साथ।

लीजिए एग्जैक्टली 10:30 और ये समय है सदाबहार नगमे प्रोग्राम का। ऐसे नगमे जो कभी पुराने होते ही नहीं, ये खास होते हैं और जब भी आप इन्हें सुने आपको ये तरोताज़ा कर देते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप के हों, आप किसी भी मूड में हों, आप कहीं पर भी हों, जब भी आप ये नगमे सुनते हैं आपको थिरकने पर ये नगमे कर दे मजबूर। ऐसे ही ख़ास नगमे हमारे इस प्रोग्राम की जो है वो पहचान है। ऐसे ही नगमे हम रोज़ाना सुनवाते हैं आपको। तो चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करने वाले और कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे बेहतरीन गीत के साथ।

ping-pong.

तो देखिए, कभी रेडियो की धीमी आवाज़ और ये मधुर नगमे, बस वही पुराने दिन याद आ जाते हैं। इन गीतों के साथ जैसे ज़िंदगी के कई खूबसूरत पल हम जी उठते हैं। ये सदाबहार गीत दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। हर धुन में बसी है एक मासूमियत जो आज भी दिलों को सकून देती है।

देखिए, संगीत वो जादू है जो बिना शब्दों के दिल की हर बात कह देता है, और संगीत के साथ खूबसूरत शब्दों का भी मिलन हो तो क्या ही बात है। सुर और शब्द दोनों ही खूबसूरत हों तो एक बेहतरीन गीत को रूप देते हैं। ऐसे ही गीत सदाबहार नगमे प्रोग्राम की है खासियत। तो चलिए एक और नगमा सुनते हैं।

0: है मेरी हमरक्स, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

देखिए, हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी को अपने बेशक अपनी शर्तों पर जीना चाहिए। अपनी शर्तों पर जीने का नाम ही ज़िंदगी है। पर तब तक हमारी शर्तें हैं जब तक ये किसी के लिए परेशानी का सबब ना बने। बेशक अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिए, पर याद रखिए अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत से लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हैं, जो आपकी परवाह करते हैं, और आपके नुकसान का या आपके फ़ायदे का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो जब भी आप कोई फ़ैसला लें अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने की कोशिश करें, याद रखें कि बहुत से लोग हैं आपकी ज़िंदगी को बनाने वाले। बहरहाल, इस वक्त आप इंजॉय कर रहे हैं FM शिमला पर सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनवाते हैं आपको।

देखिए, अगर आप किसी की ज़िंदगी में रंग भरते हैं प्यार के, तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद रंगीन होती जाती है। तो हमेशा दूसरों की ज़िंदगी में खुशियों का रंग भर दीजिए और फिर देखिए कि नेचर का रूल आप पर भी लागू होता है। आप किसी की ज़िंदगी में प्यार बोएंगे तो आप दुगना प्यार काटेंगे, और अगर आप इज़्ज़त बोएंगे तो दुगनी इज़्ज़त काटेंगे। तो बहरहाल, आप लोगों की ज़िंदगी में वही बो दीजिए जो आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। बहरहाल, आज के संगीत में इस सफ़र को इसी के साथ हम यहाँ पर विराम देते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुनते रहें FM शिमला। अब मैं रीटा पामा आपसे इजाजत चाहती हूं। एक 103.7 MHz पर आकाशवाणी FM शिमला ट्यून किया है आपने। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब हिंदी अंग्रेजी समाचारों के लिए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो। आप कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एम के स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।